के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

स्वाभाविक है, सब जानते हैं। कोई बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है, और उसके रोने की आवाज सुनते ही सब खुशी मनाने लगते हैं। भक्त कबीर ने इतनी गहराई से सोचा इस बात को और एक महान संदेश दे दिया है।

ने जन्म लिया रंगरेज गुरु, गुरु के पास इस चादर को भेजा शिक्षा का।

से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद हमारा जीवन आरंभ होता है। और ऐसे समय पर कबीर ने एक चेतावनी दी है, एक शिक्षा दी है कि ये जो शरीर है इसे अपना ना समझ लेना, ये ना समझ लेना कि ये हमेशा के लिए हमें मिल गया।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि तदानुसार 31 मई 2026 सुबह के 5:53 13 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। आइए श्रोताओं, अब आपको बताते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 6:05 पर आप सुनेंगे हमारा स्पॉन्सर कार्यक्रम समर्पण, 7 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का, 7:05 पर आप सुनेंगे वर्ल्ड नो टोबैको डे पर कार्यक्रम, 8 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की एक पीठी सरगम, 9 बजे का समय रहेगा दिल के तराने गाने नए पुराने। दस बजे होंगे हिंदी में समाचार, 10:05 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रेनबो चैनल पर वेस्टर्न म्यूजिक, 10:55 पर आप सुनेंगे मन की बात कार्यक्रम, 12 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचार का, 12:05 पर आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक कार्यक्रम प्ले इट कूल, 1 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का, 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मेरे वाला सॉन्ग, 2 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आशियाना, 3 बजे का समय रहेगा रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम का, जिसमें कि आज आप सुनेंगे नो टोबैको डे पर एक विशेष कार्यक्रम, 4 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 4:05 पर स्पॉन्सर प्रोग्राम रहेगा लम्हे, 5:05 पर आप सुनेंगे सिटी लाइट्स। ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है, 6 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधि

0: करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्रैम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल और आपका अपना कार्यक्रम सुप्रभात शुरू हो चुका है। मैं हूं आपकी दोस्त गीतांजलि। नई सुबह की ताजगी, चाय की खुशबू और अपनों की मुस्कान के साथ हम लेकर आए हैं कुछ प्यारी बातें, छोटी छोटी कहानियां और दिल को छू लेने वाले गीत। तो जहां भी हैं, थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा सा गुनगुनाइए और इस खूबसूरत सुबह का स्वागत कीजिए, क्योंकि हर सुबह जिंदगी हमें एक नया मौका देती है मुस्कुराने का।
2: उठ सबके कदम, देखो रम पम

0: सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम चल रहा है सुप्रभात। और दोस्तों, हमारे कार्यक्रम का एक हिस्सा जो है वो कहानियों से जुड़ा होता है। तो आज कहानी है एक माँ और बेटे की। जी हाँ, एक लड़का जो था वो रोज़ अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि उसे अपने घर वालों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था। एक दिन उसकी माँ ने सिर्फ इतना कहा कि बेटा जो है, आप पैसे कमाना सीखिए, आप मेहनत कीजिए, पर रिश्ते कमाना भी सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग साथ छोड़ दें तो ये जो पैसा है वो भी खाली खाली सा लगता है, उसकी कोई कीमत महसूस नहीं होती। उस दिन के बाद लड़के ने रोज़ कुछ समय अपने परिवार के लिए निकालना शुरू किया और ज़िंदगी वाकई में खुशनुमा सी लगने लगी। ज़िंदगी की असली खुशी दोस्तों अपनों के लिए बिताए गए समय में होती है। सच में आज के समय में सबसे बड़ी कमी यही है कि हमें कुछ पल नहीं मिल पाते अपनों के लिए। तो दिन में ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 5 से 10 मिनट फ़ोन को एक तरफ रखेंगे और सिर्फ सिर्फ फैमिली टाइम बिताएंगे। और सच बताएं तो FM रेनबो पर आकर आपसे बातें करके अपने आकाशवाणी के रेनबो परिवार के साथ समय बिताने में हमें भी बहुत सुकून मिलता है। और इसी सुकून के लिए तो हम चले आते हैं बार बार आपके पास। तो अपने परिवार के लिए भी, अपने परिवार के साथ बिताए गए समय के सुकून के लिए भी थोड़ा सा समय हम निकालेंगे।
2: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक बम।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 FM रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल कार्यक्रम सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि, और एक और कहानी आपके साथ यहां पर मैं साझा करना चाहूंगी। एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे। लोग बहुत जल्दी में थे, कोई भी नहीं रुक रहा था उस व्यक्ति को सड़क पार कराने के लिए। तभी एक छोटा सा बच्चा आया और उनका हाथ पकड़कर आराम से सड़क पार करवा दी। बुजुर्ग मुस्कुराए और आशीर्वाद देते हुए बोले कि बेटा, आज तुमने सिर्फ मेरी मदद नहीं की बल्कि इंसानियत को जिंदा रखा है। दोस्तों, कभी कभी छोटी सी मदद किसी के दिन को खूबसूरत बना देती है। एक छोटी सी तारीफ किसी को हंसा देती है, और जब कोई हमारी वजह से मुस्कुराता है तो समझिए कि ईश्वर ने जीवन का हर सुख हमें दे दिया, और हमारा जो आज का दिन का क्रेडिट था ना, वो हमें मिल गया। तो बस हमेशा कोशिश कीजिए कि हमारी वजह से किसी ना किसी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे।

बहुत ही प्यारा सा गीत। और वाकई में कोई आपसे रूठा है, किसी को मनाना है, तो बस पास जाकर हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, सारे गिले शिकवे जो हैं वो दूर हो जाते हैं, और प्यार से गले लगा लीजिए अपने अपनों को। दोस्तों, सुबह का समय हमें ये याद दिलाता है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई रोशनी जो है वो ज़रूर आती है ज़िंदगी में। अगर कल अच्छा नहीं था, कोई आपके साथ नहीं था, तो आज का दिन उसे बेहतर बनाने के लिए बना है, उसे बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी खुशियां ही जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं, और खूबसूरत जिंदगी किसे अच्छी नहीं लगती। तो दोस्तों, अब समय है आपसे विदा लेने का। फिलहाल के लिए उम्मीद है आज की ये सुबह, ये बातें, ये कहानियां आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर जरूर आई होंगी। बताइएगा जरूर। याद रखिए, खुश रहना भी एक आदत है और इसे रोज अपनाइए। मैं हूं आपकी दोस्त गीतांजलि। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, और हर सुबह का स्वागत दिल से कीजिए।

0: श्रोताओं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण।
1: कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेमधारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय में शौनक जी की वाणी, जहां पर सूत जी से वो यही विनती कर रहे हैं कि उन्हें महाराज परीक्षित और सुखदेव जी के बीच जो संवाद हुआ वो सुनाया जाए, क्योंकि उस संवाद में अवश्य ही अनेक भगवत कथाएं प्राप्त होंगी। और भगवत कथा सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगवत कथाओं को सुनने से ही जो हृदय है वो भगवान के लिए अतिशय प्रेम से भर उठता है, भगवत महिमा का ज्ञान प्राप्त होता है, भक्तों की महिमा का ज्ञान प्राप्त होता है, भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। तो उन्होंने आश्चर्य भी व्यक्त किया कि जो कोई भगवान की कथा नहीं सुनता है, या भगवान का गुणगान नहीं करता है, या भगवत चरण में अर्पित तुलसी की गंध नहीं लेता, या वो भगवत भक्तों के चरण की धूलि को अपने अंगों पर नहीं लगाता, तो इस तरह के जो लोग हैं वो जी ही क्यों रहे हैं? क्योंकि वो तो जितना जी रहे हैं कर्म का बोझा ही बढ़ा रहे हैं, और इन कर्मों का फल अतिशय भयानक ही होगा। क्योंकि अगर कोई भगवान से विमुख होगा तो इसका अर्थ है वो माया के सम्मुख होगा, और माया तो दया नहीं करती, भगवान में तो फिर भी दया है, माया के अंदर कोई दया नहीं है, है ना? तो भगवान तो फिर भी चाहेंगे कि भक्त मेरा हो जा और तुम्हें मैं पार उतार दूंगा, अपना दास अनुदास बनाकर अपने पास तुम्हें सेवा देकर धन्य करूंगा। लेकिन माया जो है वो तो बहुत कठिन है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल हमें भोगना पड़ेगा ही। भगवान तो समस्त कर्मों को ही जला देते हैं, लेकिन माया के पास ऐसा न्याय नहीं है। यहाँ हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा फल मिलेगा, और फल के अनुसार कभी नरक जाएंगे, कभी पशु योनि में जाएंगे, कभी वृक्ष योनि में जाएंगे। खैर, 24वां श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है आज जिस पर हम चर्चा करेंगे। तदश्म सारम

हृदयं बतेदं यद् गृह्यमाणेर हरि नाम धेयः ना विक्रियेतात् यदा विकारो नेत्रे जलं गात्र रुहेषु हर्षः। कह रहे हैं शौनक जी कि हे सूत जी, वो हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघल कर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। देखिए बहुत सुंदर श्लोक है और हमारे गोस्वामियों ने, विशेषतया हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने इस श्लोक पर बहुत सुंदर टीका की है, आचार्यों के आनुगत्य में टीका की है। तो इस टीका का हम आस्वादन करेंगे क्योंकि शौनक जी ने तो समस्त बाहरी अंगों की निंदा की और बाद में हृदय की भी निंदा कर रहे हैं कि वो हृदय ही लोहा है, वो हृदय ही लोहा है जो भगवान के नाम को सुनकर या नाम का जाप करके या संकीर्तन करके विगलित नहीं होता, द्रवित नहीं होता है, नयन से जल उसके नहीं बहते, उसके गात्र यानी उसका शरीर पुलकित नहीं होता है। तो बहुत बार अगर कोई भगवान का नाम ग्रहण करता है पर चित्त द्रवीभूत ही नहीं होता, इसका अर्थ यह है कि उसने श्री नाम के प्रति अपराध किया है, अपराध। लेकिन अगर कोई कहे कि अश्रु और पुलक ही क्या चित्त के द्रवित होने का चिन्ह है, तो यहां हमारे शिला विष्णु चक्रतिपाद जी कह रहे हैं देखिए ऐसा कहा नहीं जा सकता है क्योंकि श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु में कुछ कहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा निसर्ग पिच्छल स्वांते, यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका हृदय तो बहुत कठिन होता है पर वो बाहर बड़े कोमल दिखते हैं। ऐसे लोगों का जो चित्त है वो पिच्छल होता है, वो रोने के अभ्यास में बड़े ही कुशल होते हैं। तो वो साधारण कोई दुख की खबर सुनते हैं तो भी उनका अश्रुपुलक दिखता है, वो साधारण सुख की खबर सुनते हैं तो भी रोने लगते हैं, लेकिन भगवान के प्रति उनका हृदय कठोर होता है। लेकिन रोने का इतना अभ्यास होता है कि वो कहीं भी कभी भी किसी भी मौके पर रो सकते हैं, है ना। और इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि कोई भगवान का बड़ा गंभीर भक्त है, बड़ा ही गंभीर, बहुत ही अच्छा उत्तम भक्त है, पर वो भगवान के नाम को सुनने से द्रवित हुआ भी, उसका चित्त द्रवित हुआ भी, पर बाहर में आंसू और पुलक दिखाई नहीं दिए। तो इसका मतलब यह है कि जिस हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है वो विकारग्रस्त नहीं होता है। विकार क्या है? तो यहां तो कहा कि नयन जल, नयन में जल आना चाहिए, आंसू हो और पुलक हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो लोहे के समान ही वो हृदय बड़ा कठिन है, लोहा हृदय है, है ना। परंतु यहां पर कहा कि देखिए ये तो श्लोक का अर्थ है, परंतु हमारा हृदय भगवान का नाम सुनकर द्रवित तो होता है कि नहीं होता है, इसके कुछ लक्षण हैं। अगर वो लक्षण किसी भक्त में मौजूद हैं तो चाहे हरिनाम संकीर्तन सुनते हुए उसके आंसू ना भी बहें, वो पुलकित ना भी हो, तो भी वो भगवान का परम भक्त है क्योंकि उसका हृदय अवश्य ही द्रवित होता है पर बाहर वो प्रकाशित नहीं करता। तो वो लक्षण क्या है? तो देखिए जिसके हृदय में भगवान के प्रति भाव अंकुरित हो गए हैं उनके पास कुछ लक्षण दिखेंगे। पहला है शांति, शांति अवश्य ही दिखेगा, अवश्य ही दिखेगा। शांति का अर्थ क्या है? शांति का अर्थ यह है कि कोई दुख का कारण आ गया लेकिन चित्त विकृत नहीं हुआ। जैसे महाराज परीक्षित को पता चल गया कि मुझे तो तक्षक नाक काटेगा, अब तो ऐसा भी हो सकता था कि सब छोड़कर वो एकदम

घबरा जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तो चल दिए, सब कुछ छोड़कर भगवान की शरणागति लिए और कहा कि आप सब मुझे शरणागत जान करके बताइए मैं क्या करूं। मैंने भगवान के श्री चरणों में अपना चित्त लगा दिया है और गंगा देवी जी जहां जिनके तट पर मैं आया हूं वो भी ये जान ले। अब ऋषि कुमार ने जो तक्षक भेजा है वो मुझे दंशन करे, लेकिन तो भी आप कृष्ण गाथा कीर्तन से विरक्त मत होइएगा, सुनाते रहिएगा। दूसरा लक्षण है अव्यर्थ कालत्व, यानी प्रति मुहूर्त भगवत सेवा से युक्त वो व्यक्ति रहेगा जिसका हृदय भगवान का नाम सुनके द्रवित होता है। यानी कुछ ना कुछ भगवान से संबंधित वो करेगा ही, चाहे भगवान की सेवा कर रहा है, चाहे भगवान के बारे में कुछ कह रहा है, चाहे हरि नाम कर रहा है, कुछ ना कुछ होगा ही। तीसरा है विरक्ति। विरक्ति यानी ये शब्द स्पर्श रूप गंध, ये जो कुछ है जिसके लिए इंसान भागता है, उसकी इंद्रियां दौड़ती हैं, ललचाती हैं, उन सब विषयों के प्रति उसके हृदय में स्वाभाविक ही अरोचकता होगी। जैसे कि महाराज भरत, भाई कौन अपनी सुंदर स्त्री पुत्र अपने राज्य को त्याग सकता है, लेकिन उन्होंने युवा काल में ही सब भगवान कृष्ण की सेवा को प्राप्त करने की लालसा में मलवत त्याग दिया था। तो विरक्ति ये जरूर जरूर होगी उस भक्त में। चौथा है मान शून्यता। वो बहुत उत्तम होता है ऐसा भक्त, लेकिन स्वयं को तृणाधम समझता है। तृणाधम जैसे महाराज भगीरथ थे, वो समस्त राजाओं के शिरोमणि थे, तो भी जब उन्हें भगवान से प्रेम हुआ तो वो भिक्षा मांगने के लिए अपने शत्रुओं के घर तक में जाते थे और चंडालों को भी प्रणाम करते थे। अपने मान की कहीं कोई अपेक्षा उनमें नहीं थी। ये मान शून्यता लक्षण अवश्य होगा ऐसे भक्त में जिसका चित्त वास्तव में भगवान का नाम सुनकर के द्रवित होता है, है ना। वो कभी किसी को कपटी है ऐसा बोल नहीं पाएगा। पांचवा है आशाबंध, यानी उसे ये आशा हमेशा ही रहेगी कि मुझे इसी जन्म में भगवान की सेवा मिलेगी ही, ये आशा अवश्य रहेगी। फिर समुत्कंठा है छठा, यानी अपने अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए उसके हृदय में बहुत अधिक लोभ होगा। उसकी स्थिति ऐसी होगी, कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं मुरली बदन, कहाँ जाऊं, कहाँ मिलेंगे मुझे मेरे राधे श्याम। और सातवां लक्षण है कि नाम गान में उसकी सदा रुचि रहेगी। एक मुहूर्त काल के लिए भी नाम रसास्वादन के बगैर वो रह नहीं पाएगा। जैसे अगर मछली को जल से बाहर निकाल दो वैसी उसकी अवस्था हो जाएगी। वो हमेशा भगवान के नाम रसास्वादन में लिप्त रहेगा। आठवां लक्षण उसमें रहेगा तदवसति स्थले प्रीति, यानी भगवान ने जहाँ लीलाएं की हैं, जहाँ भगवान वास करते हैं, जैसे अयोध्या धाम, नीला जल धाम, वृंदावन धाम, ऐसे धाम क्या है, निर्गुण है। निर्गुण क्योंकि भगवान ने स्वयं उद्धव जी को भागवत जी में कहा है, वनंतु सात्विको वासो ग्रामो राजसा उच्यते तामसम द्युत सदनम मन निकेतन तो निर्गुणम। अर्थात वन में वास सात्विक है, ग्राम में वास राजसिक है, और जहां पर जुआ खेला जाता है वो तो तामसिक जगह है। नाना प्रकार के वैशिक ग्राम में कथा, ऐसे घर में भी अगर कोई रहता है तो तामसिक वास है, यानी इधर उधर की बातें हो रही हैं, भगवान की बात ही नहीं हो रही है, तामसिक है। लेकिन कोई अगर मेरे मंदिर में रहता है, तो फिर वो शुद्ध भक्तों के साथ ही रहता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है, हरि कथा होती है, तो वो जो वास है वो निर्गुण वास है। तो जिनके हृदय में भाव भक्ति का अंकुर उद्गम हुआ है उनमें ये सारे गुण मुख्य रूप से प्रकाशित होंगे। अश्रुपुलक आदि तो साधारण या गौण लक्षण मात्र हैं, है ना। लेकिन अगर किसी के अंदर ये मुख्य लक्षण ना दिखे, केवल आंसू पुलक दिख रहे हैं, तो ये सब कृत्रिम लक्षण हैं, ये जानना होगा, जानना होगा। क्योंकि जो गंभीर महानुभाव हैं, कई बार वो बाहरी लक्षण प्रकाशित नहीं करते, पर ये मुख्य लक्षण उनमें अवश्य ही रहता है। और वो लोग असलियत में प्रेमिक भक्त हैं, प्रेमिक भक्त, क्योंकि

0: ऐसे तो बहुत भक्त हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो रुपया, पैसा, स्त्री, प्रतिष्ठा को पाने के लिए कपट आंसुओं का सहारा लेते हैं, कपट अष्ट सात्विक विकार के लक्षणों को दिखाते हैं। और जो दुर्बल चित्त लोग हैं, अनभिज्ञ लोग हैं, वो सोचते हैं अरे वाह ये तो कितने बड़े भक्त हैं, तो उनके झूठे जाल में वो फंस जाते हैं और बहुत दुख पाते हैं। तो इसलिए जो कनिष्ठ अधिकारी प्राकृत भक्तगण, अगर उसके अंदर नाम अपराध है, यानी अभी किसी ने भक्ति की शुरुआत की है पर उसके अंदर बहुत नाम अपराध है, तो वो भगवान के माधुर्य का अनुभव कर नहीं सकता, वो नाम का माधुर्य भी अनुभव नहीं कर सकता, इसलिए उसका चित्त द्रवित नहीं हो पाता है, द्रवित नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो ऐसा व्यक्ति है कि जिसके हृदय में बहुत नाम अपराध हैं भगवान के नामों के प्रति, और उसका हृदय द्रवित होता भी नहीं है, पर बाहर अश्रुपुलक बहुत दिखते हैं, जब देखो तब वो हा राधे हा निताई ऐसा कहता है, हैं? लेकिन उसकी भक्तों में कोई सुंदर बुद्धि नहीं होती है, भक्तों में दोष दिखता है। तो ऐसा व्यक्ति दिखाता अवश्य है कि वो बहुत प्रेमिक भक्त है, परंतु उसके अंदर ये लक्षण नहीं होते हैं। ये जो लक्षण बताए गए वो लक्षण चूंकि नहीं होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत आवश्यक है, ये यहाँ पर बता रहे हैं श्री विश्वनाथ चक्रतिपाद जी। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि चित्त तो द्रवित हुआ, वो भगवान के लीला स्थल में भी वास कर रहे हैं, नामगान में भी रुचि है, भगवान की सेवा भी कर रहे हैं, सब कुछ है, और चित्त भी द्रवित हो रहा है, तो भी उनका चित्त द्रवित होने के बावजूद उनका चित्त कठोर भी है, द्रवित भी होता है और कठोरता भी है। तो इसका मतलब यह है कि उनकी जो बीमारी है वो कभी भी हटाई नहीं जा सकती, वो हमेशा बीमार ही रहेंगे। द्रवित हुआ, भगवान के लिए आंसू भी निकले, सब कुछ हुआ, लेकिन भक्तों के प्रति कठोर हो गया। तो उनकी बीमारी को दूर करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। ऐसे ही कुछ कर्मी होते हैं, कुछ ऐसे योगी होते हैं जो मोक्ष पाना चाहते हैं, कुछ ज्ञानी हैं, वो भगवान का नाम सुनते हैं तो बाहर बड़ी रति का लक्षण दिखता है कि ये तो रो रहे हैं, आहा ये तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उनसे भी सावधान रहना होगा, क्योंकि वो भगवान में रति नहीं करते हैं, ना वो भगवान की नित्य सेवा में उनकी कोई रति है, वो तो भगवान से मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष में ही उनकी रति है ना। तो वो तो प्राकृतिक तृष्णा से मुक्त हैं, लेकिन तो भी श्री कृष्ण में उनकी रति नहीं है, वो तो भुक्ति मुक्ति काम की पूर्ति बस यही उनका लक्ष्य है, इसलिए उनके अंदर भगवती रति पैदा ही नहीं हो सकती। हालांकि उनमें ये सब चिन्ह दिख सकते हैं, परंतु जो बच्चे हैं या अनभिज्ञ व्यक्ति है वो तो चमत्कृत हो जाएंगे और वो फिर उन्हीं की तरफ भागने लगेंगे, लेकिन वो रति नहीं, रति का आभास है, रति का छाया है, ये हमारे शास्त्र बता रहे हैं कि ये रति की छाया है, हमारे शास्त्र बता रहे हैं। तो बाह्य अश्रुपुलक आदि जो है वो हृदय के विकार के लक्षण नहीं है। तो जो लोग निष्किंचन हैं, वो शुद्ध भागवत यानी शुद्ध, बहुत ही शुद्ध भक्त, जिसके हृदय में स्वसुख की कामना नहीं है, भगवान के सुख के लिए वो जीता है, ऐसे गुरुदेव की कृपा लाभ करके उनके अनुगत्य में भजन करते करते द्वितीय अभिनिवेश से दूर हो जाते हैं, शरीर के अभिनिवेश से दूर हो जाते हैं, देहात्म बुद्धि से दूर हो जाते हैं, हृदय की दुर्बलता आदि अनर्थ से मुक्त हो जाते हैं, धीरे धीरे उन्हें निष्ठा रुचि आसक्ति भाव की प्राप्ति होती है और बाद में परम प्रयोजन कृष्ण प्रेम भी उन्हें प्राप्त होता है। तो बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है हमारी, जिसे जारी रखेंगे हम, सुनते रहिए समर्पण।
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर

0: 9350530528 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com।
1: कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेमधारा, और हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही सुंदर श्लोक पर जहाँ ये बताया गया है कि ऐसे लोग जो भगवान के नाम का श्रवण कर लेते हैं या कीर्तन करते हैं, उनका हृदय अगर द्रवीभूत नहीं होता, नेत्र अश्रुपूर्ण नहीं होते, रोम समूह आनंद से पुलकित नहीं होते, तो उनका हृदय पाषाण जैसा कठिन है, कठोर है, पत्थर है, वो पत्थर दिल। तो हमने बहुत विस्तार से चर्चा की कि ये आवश्यक नहीं है कि किसी के आंसू दिखे, पुलक दिखा तो लगा कि ओहो ये तो कितने बड़े भक्त हैं। अगर उनमें वो लक्षण नहीं होते जिनके बारे में चर्चा हुई, तो इसका अर्थ ये है कि उनका हृदय भगवान के लिए कभी भी द्रवित नहीं होता है। उन्हें अभ्यास है रोने का, हाहाकार करने का, तमाशा दिखाने का। ऐसे अनेक लोग होते हैं जो हरि कथा सुनते हैं कई बार, और हरि कथा के बीच में इस तरह का अभिनय करते हैं कि उनको बड़ा भाव आ गया है, छाती पीटने लगते हैं, हाहाकार करने लगते हैं, लेट जाते हैं, इधर उधर लौटते पोटते हैं, हाथ पैर फेंकने लगते हैं। तो ऐसे लोग कथा के प्रति, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति अपराधी बन जाते हैं, क्योंकि वो सब ड्रामा होता है। तो ये ड्रामा है कि नहीं है, ये नाटकबाजी है कि नहीं है, कैसे जाना जाएगा? तो जो लक्षण आपको बताए गए, बस वही एकमात्र लक्षण है जिनसे ये जाना जाएगा कि इस व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हुआ या भाव उत्पन्न नहीं हुआ, है ना? तो देखिए, हमारे श्री चैतन्य चरितामृत में भी बताया गया है कि कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार, कृष्ण बोली ले अपराधेर ना होय विकार। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करेन प्रकाश। जो श्री कृष्ण का नाम है ना, वो अपराध का विचार करते हैं। श्री कृष्ण और कृष्ण नाम एक ही है। अगर हम कृष्ण बोलते हैं और हृदय द्रवित नहीं होता उनके लिए, तो इसका अर्थ है कहीं अपराध है, क्योंकि एक कृष्ण नाम कोई ले ले तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्ति प्रकाशित हो जाती है। प्रेमेर उदय होए, प्रेमेर विकार, स्वेद कंप पुलक आदि गदगद अश्रुधार, अनयासे भव खय कृष्णेर सेवन, एक कृष्ण नामेर फल पाई एतो धन। यानी प्रेम का उदय हो जाता है, प्रेम का विकार उत्पन्न हो जाता है, स्वेद कंप पुलक आदि गदगद आंसुओं की धार बहने लगती है, तुरंत भव बंधन कट जाते हैं, श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त हो जाती है एक कृष्ण नाम से। किंतु हैनो कृष्ण नाम जोदी लोए बहु बार, तभु जोदी प्रेम रहे नहे अश्रुधार, तबे जानी ताहते अपराध प्रचुर, कृष्ण नाम बीज ताहे ना करे अंकुर। पर ऐसे ही कृष्ण नाम यदि कोई लाखों बार लेता है पर प्रेम नहीं है उसके अंदर, उत्पन्न ही नहीं होता, ना आंसू बहते हैं, ना हृदय द्रवित होता है, तो समझना होगा उसने बहुत अपराध किए हैं। कृष्ण नाम बीज भी उसमें अंकुरित नहीं हुआ है। अंकुरित ही नहीं हुआ है तब वो कैसे लता बनेगा, कैसे भगवान के चरणों में लिपटेगा, कैसे प्रेम रूपी फल उत्पन्न होंगे? अभी तो अंकुरित ही नहीं हुआ है, अनंत बार कृष्ण नाम लिया हमने तो भी, है ना? इसलिए कहा गया कि कृष्ण नाम क्या है, कृष्ण नामेर फल प्रेमा सर्वशास्त्रे कोय, प्रेमेर स्वभाव करे चित्त तनु खोब, कृष्णेर चरण प्राप्ते उपजय लोभ, स्वेद कंप रोमांच अश्रु गदगद वैवर्ण्य, उन्माद विषाद धैर्य गर्व हर्ष दैन्य, एतो भावे प्रेमा भक्त गणरे ना चाहे, कृष्णेर आनंद अमृत सागरे भासाए। श्री कृष्ण नाम का जो फल है वो समस्त शास्त्र ही कहते हैं कि चित्त भी तन भी क्षुब्ध हो जाएगा, श्री कृष्ण के चरणों को तुरंत प्राप्त कर लूं ऐसा लोभ उपजने लगेगा, स्वेद यानी

नहीं आएंगे, शरीर कांपने लगेगा, रोमांचित हो जाएंगे, आंसू आएंगे, कुछ कह नहीं पाएंगे, गदगद हो जाएगा व्यक्ति और उसके शरीर का रंग भी बदल जाएगा। कई बार बहुत सांवले लोग बहुत पीले हो जाते हैं, कई बार पीले लोग बहुत सफेद हो जाते हैं, है ना। उन्माद, विषाद, धैर्य, गर्व, हर्ष, दैन्य, ये सब आएगा। उन्माद, विषाद, धैर्य, गर्व, हर्ष, दैन्य, सब आएगा। दीनता तो अवश्य ही आएगी। इतने भाव उत्पन्न हो जाएंगे कि भक्त नाचने लगेगा भगवत प्रेम को पा करके, और श्री कृष्ण भी भक्त के इस प्रेम को पाकर आनंद अमृत सागर में बहने लगते हैं, है ना। जैसे गौर सुंदर ये प्रकट करते ही थे, जब वो भगवान का नाम लेते थे तो क्या होता था उनके साथ। नयनम गलदश्चुधारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकै निचितम वपुः कदा, तव नाम ग्रहणे भविष्यति। वो तो प्रेम की ही मूर्ति है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, सदा सर्वदा अनंत अनंत भावों से युक्त रहते, तो भी वो यही कहते कि हे प्रभु, आपका नाम लेकर कब मुझ में विकार प्रकट होंगे। क्योंकि तरीका ही यही है, यही करना होगा, ये मांगने के लिए रोना होगा कि मेरे नयन आंसुओं से युक्त हो जाएं, आंसू ऐसे बहें कि वो गले तक बहते बहते हृदय तक, और हृदय से बहते बहते चरणों तक गिरने लगे, और वाणी कुछ कह ना पाए, इतना गदगद कंठ हो जाए, अवरुद्ध हो जाए कंठ भावों से, और पूरा शरीर पुलक से भर जाए। ऐसा कब होगा आपका नाम लेते हुए, हे प्रभु कृपा कीजिए, है ना। तो देखिए कितनी बड़ी बात कही गई कि अगर ऐसा नहीं होता तो भाई हम नाम अपराधी हैं, नाम अपराधी। और अगर किसी बहुत बड़े भक्त में ऐसा दिखने में नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नाम अपराधी है, इसका मतलब ये है कि देखना होगा कि उनके अंदर वो सारे लक्षण मौजूद हैं कि नहीं, जिन लक्षणों के बारे में हमने चर्चा की, 8 लक्षण मौजूद होने चाहिए, तब कहीं जा करके ये पता चलेगा कि उनके अंदर भाव है कि नहीं। क्योंकि जो महानुभव भक्त हैं उनके बाहरी लक्षण कई बार प्रकाशित नहीं होते हैं, पर मुख्य लक्षण उनमें अवश्य ही विद्यमान रहते हैं, तो वो फिर यथार्थ प्रेमिक भक्त हैं, यथार्थ। वो ना सोना चांदी चाहते हैं, ना कोई स्त्री पुरुष चाहते हैं, ना उन्हें प्रतिष्ठा की ही प्यास है, वो तो सिर्फ हर तरीके से भगवान को चाहते हैं, भगवान को। तो जो कपटी भक्त होते हैं, कपट जिनके अंदर होता है, दोष दृष्टि होती है, जो गुरु वर्ग में दोष देखते हैं, जो भक्तों में दोष देखते हैं, वो हाहाकार करते हुए दिखेंगे, हा राधे हा राधे, हा श्याम सुंदर, हा वृंदावन हा वृंदावन, ऐसे रोते हुए दिखेंगे अवश्य, परंतु वो नाम अपराधी हैं, भक्त अपराधी हैं, गुरु अपराधी हैं। तो इसलिए वो कभी भी भगवान को पा नहीं सकते। पर हाँ, यदि वो सत्संग में बैठे, भगवान के भक्तों का संग करें और उनमें दोष दृष्टि ना लाएं, तो धीरे धीरे वो भी आगे बढ़ सकते हैं। पर ऐसे लोग जिनमें भगवान के प्रति हृदय का द्रवीभूत होने का गुण भी है, कि यानी उनका हृदय द्रवित भी होता है और कठिन भी रहता है। भगवान के प्रति तो द्रवित हुआ, भक्तों के प्रति कठिन हो गया, भक्तों में दोष दृष्टि हो गई, तो फिर वो महारोगी है। और शास्त्र कहते हैं उसका रोग भला कौन मिटा सकता है, यानी कोई नहीं मिटा सकता है, वो असंभव है उसके रोग को मिटा पाना। तो ये बहुत सुंदर चर्चा हुई हमारी, और बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा हुई। हमारे श्री विश्वनाथ चक्रतिपाद जी ने श्री रूप गोस्वामी जी की भक्ति रसामृत सिंधु का आशय लेकर के हमें सब कुछ बताया। हम अनुग्रहित हुए, हम उनके चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करते हैं। क्योंकि अगर हम इस चिन्ह से ही किसी भक्त को नापने लग जाएंगे तो हम हो सकता है किसी महाभागवत के चरणों में अपराध कर बैठे कि अरे उसकी तो आंखों में आंसू ही नहीं आता, ये कैसा है। तो इसलिए चिन्ह पर नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए लक्षणों पर। बहुत सुंदर बात हुई, और आगे भी हमारे जो

नानक जी हैं वो यही कह रहे हैं कि सूत जी, अभक्तों के लिए जो सब कुछ व्यर्थ है वो हमारे लिए अनुकूल है, इसलिए आप हमें ये बताइए कि महाराज परीक्षित जी के साथ सुखदेव जी की क्या कथा वार्ता हुई ताकि हम भागवत कथा का आस्वादन ले सकें। तो इच्छा प्रकट कर रहे हैं और उनके साथ साथ हम भी ये आस्वादन ले सकें, प्रयास करेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण, और इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए प्रेम धारा को, कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार।

ये थी कृष्ण प्रेमधारा ट्रस्ट की प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देशों की अदालत में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने

नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। पहला मैच भारत ने जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: एब्सोल्युटली गुड मॉर्निंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी 102.6 और आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। 7:05:40 हैप्पी संडे, और संडे की सुबह आपको जल्दी उठाने के लिए गुस्ताख ही चाहता हूँ, लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे ना तो बिल्कुल आपको बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, कोई भी मायूसी नहीं होगी और खुशी और जरूर होगी आपको कि क्या सुबह मिली आपको, क्या खूबसूरत सुबह। ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं और इस हवा का आप हमारे साथ लुत्फ़ उठा रहे हैं, और फिलहाल बस आपको भी यही सोचना है कि जिस तरीके से उबलते हुए पानी में हम अपनी परछाई नहीं देख पाते ना, ठीक उसी तरीके से जब हमारा मन परेशान होता है तो हम किसी चीज़ का समाधान नहीं देख पाते, और बस आपको क्या करना है, शांत होकर देखिए आपकी सारी समस्याएं एकदम से सॉल्व हो जाएंगी और बिल्कुल आप एक बार फिर से हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे। यही हम कोशिश करते हैं आपके लिए कि आप हमेशा खुश रहें और ऐसे ही खुशी के साथ हमारा साथ ऐसे ही निभाते रहें। और आज है वर्ल्ड नो टोबैको डे बिल्कुल, और अक्सर हम देखते हैं कि लोग इस समस्या से बहुत बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं और इसको छोड़ नहीं पाते हैं। वो कुछ पल की राहत एक भ्रम देता है लेकिन धीरे धीरे ज़िंदगी की सांस से चुरा लेता है। और आज बिल्कुल पूरी दुनिया विश्व धूम्रपान निषेध दिवस मना रही है, और तंबाकू और धूम्रपान केवल एक आदत नहीं बल्कि कई बीमारी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है, और फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक और सांस संबंधी अनेक समस्याएं सीधे तौर पर तंबाकू सेवन से जुड़ी हुई हैं। इतना ही नहीं, धूम्रपान करने वाला व्यक्ति ही नहीं उसके आसपास मौजूद लोग भी इसके धुएं से प्रभावित होते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर वर्ष लाखों लोगों की जान तंबाकू जनित बीमारियों के कारण चली जाती है। इसलिए ये दिन हमें सिर्फ जागरूकता नहीं करता बल्कि एक संकल्प लेने का अवसर भी देता है कि स्वस्थ जीवन का, स्वच्छ वातावरण का और नशा मुक्त समाज का हमें बिल्कुल निर्माण करना चाहिए, और यही हमारी एक कर्तव्य हमारा होना चाहिए। और यदि आप और आपके आसपास कोई भी तंबाकू या सिगरेट का इस लत से जूझ रहा है, उसका सेवन करता है, तो आज ही पहला कदम उठाइए और याद रखिए कि हर छोटी सी एक शुरुआत जो होती है ना वो आगे चल के बड़ी उम्मीद की एक नई किरण बन जाती है और जीवन में नई उम्मीद और नई सांसें जोड़ देती है सभी के साथ। तो बिल्कुल

ये संकल्प लेते हैं आज मिलकर कि धूम्रपान को ना कहें और स्वस्थ जीवन को हाँ कहें। बिल्कुल, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बहुत अमेजिंग है, इसको आपको एंजॉय करना है, इसको आपको बिल्कुल फील करके एक आगे सबको एक नई डेस्टिनेशन दिखानी है। और इसको अगर आप एंजॉय करते हैं ना, छुट्टी वाले दिन हम आपके साथ एक मधुर गीत के साथ शुरुआत कर रहे हैं इस दिन की। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका।

हाँ, क्या बात है, इतना अमेजिंग सॉन्ग और लकी अली की आवाज़ हो जाए सुबह सुबह तो क्या बात है। और फिलहाल टेम्परेचर की बात करें तो बहुत ही सुहाना मौसम इस वक्त बना हुआ है। पीछे कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी, लेकिन कल अचानक से मौसम ने करवट ली और इतनी मतलब बादल बन गए, लेकिन बारिश नहीं हो पाई। थोड़ी हल्की फुल्की बरसात हुई है कहीं कहीं पर, लेकिन आज भी बादल बने रहेंगे और लुका छुपी चलती रहेगी सूर्य देवता और बादलों के बीच में। और आज बिल्कुल सूर्योदय चुका है 5:23 पर और सूर्यास्त होगा आज 7:14 पर। और जो टेम्परेचर है मैक्सिमम रहेगा 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल, लेकिन खास ख्याल रखना आपको कि इस

0: मौसम को आपको एंजॉय करना है, और गर्मी बढ़ते ही आपको खास ख्याल रखना है कि आप लगातार हाइड्रेटेड रहें, पानी लगातार पीते रहें, और अपने स्वास्थ्य का बहुत खास ख्याल रखना है, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहते हैं तो आपके आसपास के लोग भी बहुत खुश रहते हैं। और आज के दिन से जुड़ी कुछ बातें आपको बताते चले हिस्ट्री में क्या कुछ हुआ था। आज भारत में पहला डाक सेवा कार्यालय खोला गया था, आज के दिन 1774 में, और 1959 में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को तिब्बत से निर्वासन के बाद भारत में शरण दी गई थी, और 1964 में बम्बई में इलेक्ट्रिक ट्राम अंतिम बार चलाई गई थी आज के दिन, और 1996 में बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के नए प्रधानमंत्री चुने गए थे, और 2007 में सैफ ब्लैटर तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष बने थे, और 2010 की बात करें तो भारत में मान्यता प्राप्त हर प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने का कानून बनाया गया था। बिल्कुल, ये आज के दिन घटनाएं घटी थी। तो फिलहाल बस हाँ, क्या करना है आपको, बस हमारे साथ जुड़े रहना है और सुनते रहना है आपको आकाशवाणी रेनबो 102.6। और एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के ऊपर एक विशेष छोटा सा कार्यक्रम, एक आप बिल्कुल छोटा सा एक सेगमेंट है, वो आप सुन पाएंगे। फिलहाल ये एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक आपके लिए, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी एट 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। भारतीय रेडियो प्रसारण ने 1977 में एक नए युग में प्रवेश किया जिसने रेडियो सुनने के अनुभव को हमेशा के लिए बदल दिया। 23 जुलाई 1977 को चेन्नई से भारत में पहली बार FM यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सेवा का शुभारंभ हुआ। आकाशवाणी द्वारा शुरू की गई ये सेवा पारंपरिक AM प्रसारण के मुकाबले कहीं अधिक स्पष्ट और शोर रहित ध्वनि का अनुभव प्रदान करने वाली थी। समय के साथ ये सेवा अन्य महानगरों तक भी फैल गई और इसकी अनौपचारिक प्रस्तुति शैली ने विशेष रूप से युवाओं को आकर्षित किया। 1993 में FM रेनबो और 2001 में FM गोल्ड जैसे चैनलों की शुरुआत हुई, जहां फिल्म संगीत, रेडियो जॉकी की नई शैली और आधुनिक प्रस्तुति ने रेडियो को एक नया जीवंत रूप दिया। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा को और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एट 90 में। तो फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

एब्सोल्युटली, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और फिलहाल बिल्कुल आज हम याद कर रहे हैं विचित्र नारायण शर्मा जी को। बिल्कुल, और कुछ लोग राजनीति में सत्ता के लिए आते हैं और कुछ लोग सेवा के लिए, और कुछ लोग पद पाकर बदल जाते हैं और कुछ लोग पद पर रहते हुए अपने सिद्धांतों से नहीं हटते। ऐसे ही अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे विचित्र नारायण शर्मा जी, जिन्हें लोग प्यार से विचित्र भाई कहा करते थे। आज उनकी पुण्यतिथि है, और बिल्कुल 10 मई 1898 को उत्तराखंड के गढ़वाल के क्षेत्र में नवादा गांव में उनका जन्म हुआ था, और युवावस्था से ही वे राष्ट्र सेवा के मार्ग पर चल पड़े थे। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पढ़ाई छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम की राह पर निकल पड़े। आचार्य जे बी कृपलानी के सहयोगी के रूप में उन्होंने गांधी आश्रम की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और खादी, ग्रामोद्योग और स्वावलंबन में गांधीवादी विचारक उनके जीवन का आधार बन गए। साथ ही साथ स्वतंत्रता आंदोलन का शायद ही कोई ऐसा चरण रहा हो जिसमें विचित्र जी ने भाग न लिया हो। हर आंदोलन में वे गिरफ्तार हुए, लेकिन उनके हौसले कभी गिरफ्तार नहीं हो सके। स्वतंत्रता के बाद भी उनकी सेवा यात्रा रुकी नहीं, और वर्ष 1952, 1957 और 1962 में जब वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए, और गोविंद बल्लभ पंत और डॉक्टर संपूर्णानंद और चंद्रभानु गुप्त जैसे दिग्गज नेता के मंत्रिमंडलों में उन्होंने जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान सत्ता नहीं बल्कि सादगी रही। और पूर्व विधायक और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मिलने वाली पूरी पेंशन भी गांधी आश्रम को समर्पित कर देते थे, और उनके जीवन यापन के लिए वे आश्रम से मिलने वाली मामूली राशि पर ही निर्भर रहा करते थे। और उनके आजीवन रचनात्मक और सामाजिक योगदान को सम्मानित करते हुए वर्ष 1993 में उन्हें प्रतिष्ठित जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और आज के दिन 1998 को विचित्र भाई ने इस दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन त्याग, सेवा और सादगी की जो मिसाल उन्होंने कायम की, वो आज भी प्रेरणा देती है। और विचित्र नारायण शर्मा एक ऐसा नाम है जिसने हमें सिखाया है कि सच्ची राजनीति सत्ता नहीं सेवा होती है, और सच्चा सम्मान पद से नहीं अपने सिद्धांतों से मिलता है। तो बस आप भी यूं ही जुड़े रहिए, और अपने जो भी आपके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करते जाइए, और अपने कर्तव्य को बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि कर्तव्य अगर आप अच्छे से निभाते हैं ना, तो समाज बहुत अच्छा बन जाता है अपने आप। फिलहाल

और जब आपके जैसे साथी हमें मिल जाए तो बिल्कुल हमें भी ऐसा ही सुकून मिलता है जैसा कि इस गीत को सुनने के बाद आपको मिला। और हिंदी फिल्म संगीत का इतिहास जब भी लिखा जाएगा एक नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज मिलेगा। जी हाँ, हम बात करें अनिल बिस्वास की। और बिल्कुल, वो एक ऐसे संगीतकार जिसने सिर्फ धुनें नहीं बनाई बल्कि भारतीय संगीत की दिशा और दशा दोनों ही बदल डाली थी।

तलत महमूद की मखमली आवाज़ हो, लता मंगेशकर का शुरुआती सफ़र हो या फिर किशोर कुमार का संजीदा अंदाज, अनिल विश्वास ने अनेक प्रतिभाओं को निखार कर संगीत के आकाश का सितारा बना दिया था। और साल 1943 को देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तभी फिल्म किस्मत का एक गीत पूरे देश की आवाज़ बन गया था कि दूर हटो वे दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। और कवि प्रदीप के शब्द और अनिल दा के जोशीले संगीत ने इस गीत को स्वतंत्रता आंदोलन की धड़कन बना दिया था। हिंदी फिल्म संगीत में पहली बार ऑर्केस्ट्रा के प्रतिभा प्रभावी प्रयोग का श्रेय भी अनिल विश्वास को ही जाता है। और शास्त्रीय संगीत और लोक धुनों को ऐसा बिल्कुल सुंदर तरीके से उन्होंने संजोया कि बिल्कुल रचनाएं उनकी जब सुनते हैं तो एक अलग ही आप सुर में पहुंच जाते हैं, अलग ही मंत्रमुग्ध आप हो जाते हैं उसको सुनते ही। और मुंबई छोड़ने के बाद उन्होंने दिल्ली का अपना घर बनाया अपना, और आकाशवाणी से जुड़कर नई पीढ़ियों को प्रेरणा दी। और हम होंगे कामयाब जैसे अमर गीतों को लोकप्रिय बनाने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1986 में उन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और आज के दिन 2003 को वो सुरसाधक दुनिया को अलविदा कह गया। लेकिन उनकी धुनें आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। और अनिल विश्वास केवल एक संगीतकार नहीं थे, वे इस स्वर्णिम युग के शिल्पकार थे जिसने भारतीय फिल्म संगीत को उसकी आत्मा दी थी। फिलहाल उन्हीं की फिल्म किस्मत से ये वाला गीत हम निकाल रहे हैं खास आपके लिए। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

बादल तू नजर न लगा, तू नजर न लगा ओ बादल तू नजर न लगा मेरा बुलबुल।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: आए हाय,
3: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

एब्सोल्युटली, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, 7:40 और 58 सेकंड्स हो चुके हैं। और बिल्कुल इतिहास के पन्नों में कुछ नाम सिर्फ शासक के रूप में नहीं बल्कि जन सेवा और लोक कल्याण की मिसाल बनकर दर्ज होते हैं। और ऐसा ही एक नाम है महारानी अहिल्याबाई होलकर का, और आज उनकी जयंती है। और 1725 में महाराष्ट्र के चौहड़ी गाँव में उनका जन्म हुआ था। और एक बिल्कुल उनके नाम में सिद्ध कर दिया कि सच्चा नेतृत्व जो शक्ति होती है ना, वो बिल्कुल एक समर्पण के साथ जन्म लेती है। और एक साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ था और उनका विवाह इंदौर राज्य के युवराज खांडेराव होलकर से हुआ। लेकिन जीवन में उन्हें कम उम्र में ही कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा और पति का निधन हो गया, पुत्र का वियोग और परिवार के अन्य सदस्यों की असमय मृत्यु, और इन सबके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और जब राज्य में अशांति और अराजकता थी, तब अहिल्या होलकर ने शासन की बागडोर संभाली और अपने शासन में बिल्कुल दूरदर्शिता और न्यायप्रियता के एक आदर्श राज्य की स्थापना उन्होंने की। और उन्हें केवल एक रानी कहना पर्याप्त नहीं होगा, वे एक कुशल प्रशासक, समाज सुधारक और लोक माता थी। और उन्होंने पूरे भारत में मंदिरों, धर्मशालाओं, घाटों, कुओं और बिल्कुल बावड़ियों का निर्माण किया। और काशी विश्वनाथ जो मंदिर है उसके पुनर्निर्माण से लेकर अयोध्या, मथुरा, द्वारका, हरिद्वार, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी जैसे तीर्थ स्थलों के विकास में उनका योगदान आज भी अमिट है। और भगवान शिव की अन्य भक्त अहिल्याबाई होलकर स्वयं को राज्य की स्वामिनी नहीं बल्कि ईश्वर की सेविका माना करती थी। और उनकी राजाज्ञाओं में भी उनके नाम की जगह केवल लिखा होता था श्री शंकर। और उनका जीवन सादगी का प्रतीक था, बिल्कुल सरल जीवन और जन कल्याण के लिए समर्पित वो हर पल रहा करती थी। और महिला सशक्तिकरण की बात आज होती है, लेकिन अहिल्या बाई होलकर ने इसे 250 साल पहले अपने शासन में लागू कर दिखाया था। और उन्होंने विधवाओं को संपत्ति का अधिकार दिया, महिलाओं को सुरक्षा सुनिश्चित की और उन्हें सामाजिक बिल्कुल एक जीवन दिया, सम्मानजनक जीवन दिया और उसका अवसर प्रदान किया। और उनके शासन में न्याय सभी के लिए सुलभ था और प्रजा की समस्याएं सीधे महारानी तक पहुंचा करती थी। 13 अगस्त 1795 को अहिल्याबाई होलकर इस संसार से विदा हुई, लेकिन उनका आदर्श शासन, उनकी जीवन जो शैली थी, उनका सेवा भाव था और दूरदृष्टिता थी, वो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। और इसी सम्मान में इंदौर के हवाई अड्डे का नाम देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा रखा गया और विश्वविद्यालय का नाम देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय रखा गया। बिल्कुल आज हम उनको नमन कर रहे हैं। और इतिहास के पन्नों में जब भी हम पलटकर देखते हैं तो सेवा से जीते गए दिल हमेशा बिल्कुल अमर होते हैं और वो हमेशा एक हमें अमिट छाप छोड़ देते हैं। हमारी विरासत बिल्कुल आज भी, उनकी जो विरासत है आज भी भारत की आत्मा में जीवित है, उनको हम आज नमन कर रहे हैं। और आप भी हमारे साथ बस यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। वक्त मिला लीजिए 7:44 और 12 सेकंड हो चुके हैं। हैप्पी संडे, एंजॉय करते रहिए हमारे साथ।

गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हिंदी सिनेमा की बात करें तो कुछ निर्देशक सिर्फ फिल्म नहीं बनाते थे, वो नया अंदाज खड़ा करते थे और रहस्य, रोमांस और भावनाओं और संगीत को पर्दे पर जीवंत कर देने वाले एक ऐसे ही जादूगर थे राज खोसला जी। और आज उनकी जयंती है। 1925 में पंजाब के लुधियाना में उनका जन्म हुआ था और उनका सपना था एक्टर बनने का और या फिर निर्देशक बनने का, बट बिल्कुल वो गायक बनना चाहते थे और संगीत में

बिल्कुल संगीत से प्रेम उन्हें मुंबई की तरफ खींच लाया और मुंबई से उनकी जो जो जो जर्नी थी वो शुरू हुई, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कैमरे के पीछे की दुनिया चुनी थी और आकाशवाणी में वो अनाउंसर के तौर पर काम किया करते थे और पार्श्व गायक के रूप में भी उन्होंने काम किया और उसके बाद वे मुंबई पहुँचे। यहाँ संघर्ष के दिनों में उन्हें गुरुदत्त का साथ मिला और गुरुदत्त के मार्गदर्शन में उन्होंने फिल्म निर्माण की बारीकियाँ सीखी और फिर शुरू हुआ एक शानदार सफर। राज खोसला ने ऐसी फिल्म दी जिन्होंने दर्शकों को सीट से बांधे रखा, बिल्कुल उठने भी नहीं दिया, बिल्कुल हल्का सा भी। सीआईडी की बात करें, वो कौन थी, मेरा साया, काला पानी, एक मुसाफिर एक हसीना, दो रास्ते जैसी फिल्में, बिल्कुल उन्होंने हिंदी सिनेमा के सबसे सफल निर्देशकों की श्रेणी में ला खड़ा किया था। राज खोसला को अक्सर हिंदी सिनेमा का अल्फ्रेड हिचकॉक कहा जाता था और बिल्कुल वजह थी कि उनके रहस्य और सस्पेंस से भरी फिल्मों को प्रस्तुत करने की अनोखी शैली, लग जा गले, नैना बरसे, रिम झिम और झुमका गिरा रे जैसे बिल्कुल कालजयी गीत आज भी उनकी फिल्मों की पहचान बने हुए हैं और सिर्फ रहस्य नहीं पारिवारिक और भावनात्मक कहानियों को भी उन्होंने बखूबी पर्दे पर उतारा था। 1978 को ये फिल्म आई थी मैं तुलसी थे रेयागन की और उन्हें फिल्म फेयर का सबसे फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और बिल्कुल उनकी संवेदनशील निर्देशक क्षमता का भी ये प्रमाण देती है फिल्म। चार दशकों तक उन्होंने हिंदी सिनेमा को नई ऊंचाइयां दी और उनके निर्देशक में संगीत, कहानी और अभिनय का एक ऐसा संगम देखने को मिला जो आज भी फिल्मकारों के लिए प्रेरणा है। 8 जून 1991 को बिल्कुल राज खोसला जी इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी फिल्में का जादू आज भी बरकरार है और जब भी हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर की बात होगी राज खोसला का नाम उन कलाकारों में गिना जाएगा जिन्होंने सपनों को पर्दों पर और कहानियों को दिलों में बसाया था। उनकी फिल्म वो कौन थी से लता मंगेशकर जी की आवाज़ में ये खास बहुत ही बेहतरीन गीत।

और कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनाई नहीं देती, वो हमारे जीवन के हर दौर का हिस्सा बन जाती हैं। दोस्ती हो, प्यार हो, जुदाई हो या फिर उम्मीद हो, हर एहसास को अपनी आवाज़ देने वाले गायक कृष्ण कुमार कुन्नत यानी कि के और 23 अगस्त 1968 को उनका जन्म हुआ था। और बचपन उनका दिल्ली में भी था, माउंट सेंट मैरी स्कूल और किरोड़ीमल कॉलेज में उनकी पढ़ाई हुई। और बिल्कुल इस युवक का सपना था कि कभी डॉक्टर बनने का, लेकिन किस्मत उनके लिए शुरू की दुनिया चुनकर लेकर आई। और बॉलीवुड के में कदम रखने से पहले के करीब 35,000 विज्ञापन जिंगल गा चुके थे और उनकी आवाज़ में एक ऐसी सादगी और सच्चाई थी जो कि सीधा दिलों में उतर जाया करती थी। फिल्म माचिस के गीत छोड़ आए हम वो गलियां, बिल्कुल इसी गीत के माध्यम से उन्होंने बॉलीवुड में पहचान बनी उनकी। और लेकिन तड़प तड़प के इस दिल से सच कह रहा है दीवाना, तू ही है मेरी शब और मतलब क्या मुझे प्यार है, एक से बढ़कर एक उनके गीत अगर आप सुनेंगे तो बहुत ही उनकी जो एक गायकी में एक गहराई थी वो आप महसूस कर पाएंगे। और साल 1999 में जो उनका पहला एल्बम आया पल, बिल्कुल दोस्ती और यारी के ऊपर, यादों के ऊपर एक खूबसूरत संगीत उन्होंने प्रस्तुत किया। और बिल्कुल यारो दोस्ती बड़ी ही हंसी है, आज भी अनगिनत दोस्तों की जिंदगी का एक एंथम बन चुका है। और बिल्कुल उनकी खासियत थी कि उन्होंने कभी शोर नहीं किया, कभी सुर्खियों का पीछा नहीं किया, सिर्फ अपनी आवाज़ से दिलों में एक पहचान बनाते चले गए। और आज के दिन 2022 को कोलकाता के नजरूल मंच पर एक लाइव प्रस्तुति के बाद अचानक उनको दिल का दौरा पड़ा और इस दुनिया से वो अलविदा कह गए और हमेशा के लिए खामोश हो गए। लेकिन कलाकार कभी विदा नहीं होते, वे अपने गीतों से, अपनी यादों से अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा जीवित रहते हैं। और कुछ पल ऐसे होते हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होते, और कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो कभी खामोश नहीं होती। और के की आवाज़ भी उन्हीं में से एक है। बिल्कुल उनकी यारी, उनकी दोस्ती बिल्कुल बहुत ही हसीन है, आज भी हम उनको याद कर रहे हैं। और आज हम हमारे साथ जो हमारे लिसनर्स हैं वो भी जुड़े हैं, राजकुमार संतानी अकोला महाराष्ट्र से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, थैंक यू सो मच। डॉली इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन करमाकर भी इस वक्त हमारे साथ असम से जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनीता नेगी सोलन हिमाचल प्रदेश से हमारे प्रोग्राम का एंजॉय कर रही हैं, और साथ ही साथ पंकज अमरावती महाराष्ट्र से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, और राजेश बल्ला जी भी मेरठ से इस वक्त हमें सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और फिलहाल चलते चलते बस अब के की ही आवाज़ में उनका ये गीत बहुत याद दिलाता है उनकी हमें। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और सुनते रहिए गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, लगातार ऐसे ही हमारे साथ गीतांजलि आएंगी अगले घंटे आपके साथ जुड़ेंगी। स्टे ट्यून्ड।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और अब आपके साथ मैं जुड़ चुकी हूँ, आपकी दोस्त गीतांजलि। सुबह की ताज़ी हवा, चाय की खुशबू और नई उम्मीदों के साथ हम फिर से हाजिर हैं आपके दिन को खूबसूरत बनाने के लिए। तो मुस्कुराइए, क्योंकि एक नई सुबह सिर्फ घड़ी में नहीं सोच में भी उजाला लेकर आती है। घर से निकल रहे हैं, ऑफिस की तैयारी कर रहे हैं या अभी अभी नींद खुली है, अगले कुछ समय तक बने रहिएगा एफएम रेनबो के साथ। कुछ समय तक नहीं, सारे दिन के लिए बने रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके मनोरंजन के लिए बहुत कुछ है। जब बातें होंगी अपने शहर की, अपने मौसम की, दिल से जुड़ी छोटी छोटी खुशियों की, तो मुस्कान अपने आप ही चेहरे पर आ जाएगी, है ना? क्योंकि दिल्ली तभी चमकती है जब उसके लोग मुस्कुराते हैं दोस्तों। तो बस हंसते रहिए, जुड़े रहिए, सुनते रहिए गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर कार्यक्रम मेरे साथ।

दोस्तों अब बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर के आज के मौसम की। और आज सुबह मौसम थोड़ा सा गर्म जरूर है, लेकिन हल्की हवाएं राहत का एहसास करा सकती हैं। आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। शाम के समय मौसम थोड़ा सा बेहतर महसूस होगा और कुछ इलाकों में हल्के बादल भी नजर आ सकते हैं। तो ध्यान रखिए, अपना हाइड्रेट रखिए अपने आप को। मौसम चाहे जैसा भी हो, दिल का मौसम जो है हमेशा खुशनुमा बनाए रखिए। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर एफएम रेनबो पर गीतांजलि के साथ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतांजलि। और दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं जो समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं। मानव सेवा चैरिटेबल सोसाइटी अपने सेवा कार्यों के 21 वर्ष पूरे कर रही है और साथ ही पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी कर रही है। इस विषय पर

0: तार से बात करने के लिए हमारे साथ हैं मानव सेवा चैरिटेबल सोसाइटी के सीईओ श्रीमान दलजीत लूथरा जी। आपका एफएम रेनबो पर हार्दिक स्वागत है सर।
1: हाँ जी,
0: हाँ जी सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप मानव सेवा चैरिटेबल सोसाइटी के बारे में बताइए, इसकी स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी और आज ये किन किन क्षेत्रों में कार्य कर रही है?
1: मानव सेवा चैरिटेबल सोसाइटी की शुरुआत हुई थी 2005 में। आई वॉज ए क्रिकेटर, तो मैं एक इसलिए आया था कि मानव की सेवा करेंगे, पर जो हालात देखे उसमें बहुत ही ज्यादा संतुष्टि नहीं हुई अभी तक। बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया।
0: बहुत अच्छी सर। सर ये 21 वर्ष पूरे कर रही है आपकी संस्था, तो इस यात्रा को आप किस प्रकार देखते हैं, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या क्या रही?
1: इसमें उपलब्धि ये है कि एक हमारे पास में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है हमारा करनाल के अंदर, गोंदर के अंदर, वहां से ये डायरेक्ट रिले इस वक्त हो रहा है और वो बहुत अच्छे लेवल पे हमारा सिस्टम बना हुआ है। और इसमें हम लोग कई बातों में थे, जैसे अभी होलकर जी का हमें आया सामने आया, इससे पहले एपीजे अब्दुल कलाम जी के ऊपर हमने काफी बड़ा प्रोग्राम किया। लाइक दिस वी आर डूइंग रेगुलरली डूइंग।
0: बहुत अच्छी बात है सर कि आपने इस विशेष समारोह को पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती को समर्पित किया है। उनके व्यक्तित्व और कार्यों से हमारी आज की पीढ़ी क्या सीख सकती है सर, आपको क्या लगता है?
1: जी हाँ
0: जी सर, मैं बात करूंगी आज होने वाले इस कार्यक्रम की जो आप कर रहे हैं, इसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं, इस कार्यक्रम में क्या रहने वाला है?
1: आज की विशेषता ये है, एक तो हम उनके नाम के केक काटेंगे 2:30 बजे के करीब। सेकेंडली हमारे बीच में संजय मलिक जी हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री और इवेंट इंडस्ट्री के माहिर आदमी हैं। हमारे पास 15 कलाकार होंगे, तो एक बहुत बड़ा एक बैंड एक हमारे बीच में आ रहा है
0: जी।
1: हम लोग इन ऑल वी आर डूइंग अ वेरी बिग थिंग इन 3-4 आवर्स।
0: ओके सर। सर अगर जो भी श्रोता या नागरिक इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
1: हम ये कहेंगे कि आप अपने आके देखिए इसको और इसको खूबसूरती इसको बनाए। हम लोग अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं, पर आपकी प्रेजेंस जो होगी वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए।
0: बिल्कुल सर, इसके लिए कहाँ आना होगा सर, एक बार जानकारी हमारे?
1: ये हमारा जो है टेक्निया ऑडिटोरियम है मधुबन चौक रोहिणी के में, 1 से लेके 5 बजे तक।
0: ओके सर, इसके लिए कोई एंट्री पास वगैरह?
1: नहीं, इसमें कोई अभी एंट्री पासेस हमने नहीं रखे हैं, बट फिर भी इफ एनीबडी कॉल्स मी आई विल उनको हम लोग एंटर करने देंगे।
0: ओके सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा किए। हमें विश्वास है कि मानव सेवा चैरिटेबल सोसाइटी का ये जो आयोजन आज होने वाला है वो समाज में सेवा, संस्कार और प्रेरणा का बहुत बड़ा संदेश लेकर आएगा। आपकी पूरी टीम को इस विशेष अवसर के लिए हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं सर। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया हमें, धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये थे मानव सेवा चैरिटेबल सोसाइटी के सीईओ श्री दलजीत लूथरा जी, जिन्होंने एक बहुत अच्छी संस्था के साथ जुड़कर हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम जो है कर रहे हैं।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल।

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतांजलि। और अब बात एक ऐसी पहल की जो हमारे देश के नन्हे सितारों को देती है बड़ा मंच। जी हां, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए दोस्तों नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। ये सम्मान उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने कम उम्र में ही अपने हुनर और मेहनत से एक खास पहचान बनाई हो, चाहे बात हो वीरता की, खेलों की, समाज सेवा की, विज्ञान और तकनीक की, पर्यावरण संरक्षण की, या फिर कला और संस्कृति की। अगर किसी भी बच्चे ने इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, मतलब कुछ बहुत अच्छा किया है, तो उनका नामांकन किया जा सकता है। 5 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चे इसके लिए पात्र हैं और आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 31 जुलाई 2026 है। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा बच्चा है जिसकी कहानी आपको प्रेरणा देती है, आपको लगता है कि उसका नाम आगे जाना चाहिए, उसे ऊंचाई को छूना चाहिए, तो उसकी प्रतिभा को देश तक पहुंचाइए, क्योंकि छोटे कदम ही आगे चलकर बड़े बदलाव लाते हैं। इसी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि आपको ये नामांकन कहां पर जाकर करना है, आप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की वेबसाइट पर जाकर इससे जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो एक कदम बढ़ाइए अपने बच्चों के भविष्य की ओर। सुनते रहिए गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

बहारा बहारा कुछ ऐसा ही जो है आजकल बच्चों के मन में भी चल रहा होगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं छुट्टियों की, जिसका इंतज़ार बच्चों को पूरे साल रहता है, समर वेकेशंस। जी हाँ, छुट्टियाँ कुछ लोगों की शुरू हो गई हैं, कुछ लोगों की कल से शुरू हो गई होंगी। तो बस जब छुट्टियाँ होती हैं तो किसी का बैग नानी के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है, कोई दोस्तों के साथ क्रिकेट प्लान कर रहा होता है, और कोई बस ये सोचकर बच्चा खुश होता है कि भाई कल सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा क्योंकि हमारे समर वेकेशन चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, छुट्टियां सिर्फ समय बिताने के लिए नहीं होती हैं, ये खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने का मौका देती हैं। तो चलिए जल्दी से कुछ समर वेकेशन टिप्स भी नोट कर लीजिए। जी हाँ मेरे नन्हे दोस्तों, कुछ चीज़ें आपने बहुत ध्यान रखनी है समर वेकेशन के दौरान, कि आपने खूब सारा पानी पीना है क्योंकि गर्मी है, धूप में निकलते समय आपको कैप या अम्ब्रेला ज़रूर रखना है अपने पास, कोशिश करनी है दोपहर के समय धूप में बाहर ना खेलें ना निकलें, हर दिन थोड़ा सा पढ़ने की आदत को बनाए रखिएगा ताकि पढ़ाई से आपका जुड़ाव बना रहे, क्योंकि एक महीने बाद फिर से स्कूल जाना है। कोई नई हॉबी सीखिए, आपको जो भी अच्छा लगता है, पेंटिंग, म्यूज़िक, कुकिंग, गार्डनिंग, जो भी आपके दिल को खुशी देता है वो आप सीखिए। और जी हाँ, मोबाइल और स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा आपको कम रखना है, अपना सबसे ज़रूरी बात जो सबसे ज़्यादा करने वाले हैं आप, तो थोड़ा सा कम करेंगे उसे, फैमिली टाइम थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिलता है हमें ये समय, क्योंकि ज़्यादातर समय हम स्कूल में रहते हैं, आधा दिन हमारा वहाँ निकल जाता है, तो अब हमें फैमिली के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, अपनी जो है ब्रदर सिस्टर के साथ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा स्पेंड करना है। अपने आसपास पेड़ पौधे लगाने हैं और अपने आसपास जानवरों का भी हमें बहुत ध्यान रखना है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ हमें थोड़ी लगती है, उन्हें भी लगती है, क्योंकि असली छुट्टियां वही होती हैं जिसमें मस्ती भी हो, सीख भी हो, ढेर सारी यादें भी हो। और बच्चों, इन्जॉय योर वेकेशंस रिस्पॉन्सिबली, एंड पेरेंट्स, जी हाँ पेरेंट्स, बच्चों के साथ थोड़ा सा बचपन आप भी जी लीजिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है हमें ये समय। इसी प्यारी सी बात के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते रहिए गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर एफएम रेनबो पर मेरे साथ यानी गीतांजलि के साथ।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

हर घंटे आपके लिए मनोरंजन के लिए आपके कार्यक्रम आते रहते हैं। फिलहाल गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR कार्यक्रम चल रहा है, मैं हूँ आपके साथ गीतांजलि, और एक जरूरी अपडेट लेकर आई हूँ आपके लिए, उन सभी युवाओं के लिए जो रिसर्च लेक्चररशिप या फिर JRF का सपना देख रहे हैं। जी हाँ, CSIR UGC NET June 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख जो है वो 19 जून बताई गई है, जबकि फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 20 जून रात 11:50 तक रहेगी। और हाँ, अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाए तो घबराइएगा बिल्कुल मत, 22 और 23 जून को करेक्शन विंडो भी ओपन रहेगी। परीक्षा होगी 17 और 18 जुलाई को, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में ये परीक्षा ली जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपका सपना है रिसर्च की दुनिया में आगे बढ़ना या कॉलेज में पढ़ाने का, तो ये मौका आपके लिए बेहद खास हो सकता है। ये परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। फिलहाल एक छोटी सी मुस्कान के साथ बढ़ते हैं आगे, क्योंकि दिल्ली NCR की सुबह अभी और भी खूबसूरत होने वाली है। किसके साथ? FM रेनबो के साथ।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: What's your problem?
1: By the way, तुम्हें क्या करना है?
0: By the way, कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है, संग मरना है।
1: तो कर लो ना जो करना है, don't bother me.
0: Really?

दोस्तों, रविवार के इस खूबसूरत दिन पर पूरे दिन हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपके लिए लेकर आए हैं संगीत, जानकारी, मनोरंजन से भरे शानदार कार्यक्रम। दोस्तों आइए, आपको आज

प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बता दें। अब से कुछ ही देर में सुबह 9 बजे से 10 बजे तक आशुतोष भारद्वाज पेश करेंगे कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने गीतों का खूबसूरत संगम। 10:55 पर सुनिएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात। दोपहर 1:05 से 2 बजे तक संजीव श्रीवास्तव पेश करेंगे मेरा वाला सॉन्ग यानी आपके फरमाइशी गीत। दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक साइमा के साथ कार्यक्रम आशियाना में जुड़ जाइएगा। शाम 3 बजे से विनीता बेदी आपके साथ होंगी, कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर होगा जहां तंबाकू से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं पर विशेषज्ञ देंगे आपको महत्वपूर्ण जानकारी। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर विक्रांत मोहंती, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक डेंटिस्ट्री MAMC न्यू दिल्ली। शाम 4:05 से साइमा के साथ सुनिएगा कार्यक्रम अल्फा जैन। 5:05 से 6 बजे तक विनीता वेदी के साथ सिटी लाइट्स कार्यक्रम, शहर की रौनक, ट्रैफिक अपडेट्स और खास बातें होंगी। 6:05 पर भगवती लेकर आएंगी मैसेज मसाला मिक्स कार्यक्रम और रात 8 बजे मन की बात का अंग्रेजी संस्करण आप सुन सकते हैं। रात 9 बजे से खुर्शीद आलम के साथ आपकी याद आती रही कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए FM रेनबो 102.6 पर, क्योंकि यहाँ हर पल है संगीत, जानकारी और दिल से जुड़ाव।

दोस्तों अब इजाजत लेने का समय आ गया है। उम्मीद है आपकी सुबह में हमने थोड़ी सी मुस्कान, थोड़ी सी ऊर्जा और ढेर सारी अच्छी बातें जो हैं वो जोड़ दी होंगी। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी हर दिन एक नया मौका देती है कुछ अच्छा सोचने का, कुछ अच्छा करने का और साथ ही साथ किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का। मैं हूँ आपकी दोस्त गीतांजलि, फिर मुलाकात होगी एक नई सुबह, नई बातों, नए एहसासों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए FM रेनबो, रंगों भरी दुनिया अपनों के संग।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: एग्जैक्टली आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी रेडियो 102.6 पर। 9:17 और ये वक्त है दिल के तराने, गाने नए पुराने का लेटेस्ट ट्रैक्स होंगे आपके लिए, और उसके बाद होगा रेट्रो का फ्लेवर। बहुत ही अमेजिंग गाने आज के लिए आपके चुन के लेकर आए हम। राज खोसला साहब की जयंती है आज, तो बिल्कुल उनके बेहतरीन नगमों के साथ हम रेट्रो को आज सजाएंगे, उसकी महफिल सजाएंगे। फिलहाल ये पहला ट्रैक निकल रहा है, बिल्कुल एनर्जी से भरपूर, हैप्पी संडे, एंजॉय करते रहिए हमारे साथ।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: देखा दिल न तोड़ो
1: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
0: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे
1: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ।

0: किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

एग्जैक्टली और हमें बहुत मुश्किल होगी जब हम आपको छोड़ के जाते हैं, बट मन नहीं करता क्या करें, लेकिन समय हो जा रहा है हमारे चलने का। अब राजकुमार संतानी इस वक्त हमारा से हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग विजय, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं राजौनी जिला से, बुलंदशहर से इस वक्त उदय भान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल।

दिव्यांश बघेल और उनके परिवार, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं राजेश भल्ला जी, मेरठ से कनेक्टेड हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नूरैनी अंसारी, असना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और पंकज अमरावती महाराज से गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं, और साथ ही साथ होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। और सुनीता नेगी सोलन हिमाचल प्रदेश से हसीन वादियों से हमारा शो एंजॉय कर रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। यूं ही कनेक्ट रहिए हमारे साथ, बस आप रेनबो के साथ ऐसे ही कनेक्ट रहिएगा लगातार, और बस संडे को ऐसे एंजॉय करते रहिएगा, और आशुतोष बस लेता है आपसे अनुमति, हैप्पी संडे, और एंजॉय करते रहिए अपना पूरा कंप्लीट वीकेंड, बहुत ही अमेजिंग बनाइएगा, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डर कर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई थी।
0: नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को आज नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये पहली भारत यात्रा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक प्रयासों की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। श्री लाइन व्यापारिक मंच को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंट तथा अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपये और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपये प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होगा और 15 जून तक लागू रहेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। वे कोट्टायम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति कन्नूर में राज्यसभा सांसद C. सदानंद मास्टर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की मेधा, करुणा और जन कल्याण के प्रति अटूट समर्पण के लिए आदर और सम्मान के साथ याद करता है। IPL क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: As the heat outside builds on and on, it is my duty to remind you to drink water and stay safe from the heat. So grab yourself a glass while we return from a very short break.
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा
2: स्वस्थ रहने का फंडा रोज खाएं अंडा NECC द्वारा जनहित में जारी
3: मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया

0: Seeing as this year's theme for No Tobacco Day is Unmasking the Appeal, Countering Nicotine and Tobacco Addiction, I should warn you that the nicotine present in tobacco forces you to take more, only increasing the misery and bringing no joy. Think it over as we take a really short break.
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी।

0: तक
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: Direct exposure to the sun in high temperatures can cause dehydration, skin rashes, and several other problems. So spend your Sunday in the shade, preferably under a lush tree and, if possible, somewhere away from concrete. I also implore you to think of the less fortunate, those who will be spending their day in the heat for our sakes, and try to help them if and when possible. On that note, allow us a short break and we'll be right back.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
0: While we are all indoors, I'd like to remind you that we have a range of programs lined up for you in Hindi and English to listen to while you relax. And so, in the spirit of our approaching anniversary, near the end of this hour, I give you the program's last Hindi number, Ye Jeevan Hai, from the movie Piya Ka Ghar, sung by Kishore Kumar, lyrics by Anand Bakshi, and music by Lakshmikant Pyarelal.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय

0: भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैक चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किडबैक।
7: RBI कहता है
8: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
9: पर्सनल लोन ऑफर
10: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
9: फ्री ट्रिप टू दुबई
10: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
11: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
10: तो क्या करूं?
11: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
10: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
11: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
12: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
13: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल

0: अटल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
0: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूं एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूं। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड ख़त्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे, जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरी ने टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
0: वाह वाह वाह, बड़ी शानदार बात है भी आपकी तो।
3: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी। मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे भी मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को

0: वो मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूँगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
0: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना, एंड देखो सारी फैसिलिटीज, सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी, पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर भैया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है, एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
0: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था भी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
0: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है। आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से

ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी बालाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स
तेजी से लोकप्रिय

हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब या कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है।

बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

नमस्कार जी। हाँ भाई, अभी आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम मन की बात की 134वीं कड़ी का प्रसारण। और आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने इस कार्यक्रम में बहुत सारी विशेष विषयों के बहुत सारे विशेष विषयों पर चर्चा की, जिसमें सबसे पहले उन्होंने बात की 100 मीटर रेस की। बिल्कुल जी, महज 2 दिनों के भीतर ही मेंस की यानी पुरुषों की 100 मीटर की रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा और ये कमाल दिखाया गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर ने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरविंदर वीर और अनिमेश कुजूर से उनके इस बहुत ही शानदार जो उन्होंने जो एक कार्य किया देश की प्रगति के लिए और उस एक जो जिसे कहते हैं कि जो युवा है आज का उसके लिए एक नई प्रेरणा के तौर पर जो साहस दिया और जो काम किया है उसके लिए उन्होंने उनको बधाई दी। और बधाई देते हुए कहा कि ये जो कार्य उन्होंने किया है ये ना सिर्फ देश के युवाओं को एक नई शक्ति देगा बल्कि जो स्पर्धा में उन्होंने भाग लिया वो देश के भविष्य में इस जगह पर पहुंचने के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव स्प्रिट है। और उनका प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनका मानना है कि जो ये स्पोर्ट्समैन स्प्रिट होती है ये खेलना भी है और एक दूसरे को चुनौती देना भी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये एक अद्भुत काम जो आप दोनों ने किया, गुरविंदर सिंह जी ने और कुंजूर जी ने, अनिमेश कुंजूर ने, उसके लिए उन्होंने दोनों को बहुत बहुत बधाई दी और कहा कि आप देश का नाम यूं ही रोशन करते रहिए। जी हाँ, हम भी चाहते हैं कि हमारे देश का जो भविष्य है, हमारे देश की युवा पीढ़ी है, हमारे देश के एथलीट्स हैं, वो यूं ही देश का नाम रोशन करते रहें।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी रेनबो और आप सुन रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ से। जी हाँ, और यह है दिल से दिल तक और हम बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम की। प्रधानमंत्री जी ने आज अपने कार्यक्रम में एक बहुत ही विशेष बात की, जो इस वक्त मौसम चल रहा है। जी हाँ, गर्मी का मौसम, ज़बरदस्त गर्मी है। देश के ज़्यादातर हिस्सों में गर्मी पड़ रही है, तेज़ धूप, गर्म हवाएँ, और ऐसे में इस मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और एक अभिभावक की भांति, जैसा कि वो हमेशा करते हैं, एक बड़े घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो हमेशा जो घर के परिवार के लोग होते हैं, परिवारजन होते हैं, उनको सलाह देते हैं, ऐसे पूरे देश के लिए उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सलाह दी कि ये बड़ी तेज़ धूप है, गर्म हवाएं हैं, लू चल रही है, ऐसे में हम निरंतर पानी का सेवन करते रहें, पानी पीते रहें, धूप में अगर निकलना भी पड़े तो थोड़ा संभल कर निकलें। और इसके अलावा इस दिशा में सरकार के विभिन्न जो विभाग हैं, उन्होंने बहुत सारी गाइडलाइंस यानी दिशा निर्देश जारी किए हैं, उनको भी भूलना नहीं चाहिए, उनको देखना चाहिए कि भाई कौन कौन से दिशा निर्देश हैं और हम धूप से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। खास बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने गर्मी से बचने के लिए वो ये कही कि जब जैसे मौसम चेंज होता है, गर्मी आती है, तो हमारी रसोई का स्वाद भी बदल जाता है। बिल्कुल मुझे याद है, हमारे घर में भी गर्मी आती थी तो हमारी माँ दही जमाने लगती हैं, इसके अलावा आम को लाके आम का पन्ना बनाती हैं, तरह तरह के जो देसी पेय हैं उनका दौर शुरू हो जाता है। और ऐसे ही जो देसी पेय हैं पूरे देश भर में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो देसी पेय मिलते हैं, जो गर्मी में बड़ी राहत देते हैं और सेहत के लिए भी अच्छे हैं, उसका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। उन्होंने कहा कि अगर हम उत्तर भारत में जाएंगे तो हमें वहाँ आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत मिलने के लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ है ये। पंजाब, हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, वो भी बड़े ग्लास वाली लस्सी। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात में छाछ मिल जाएगा, और जो हर खाने में साथ ही होता है, मतलब छाछ को साथ

में खाने के साथ ले सकते हैं। बिहार में, झारखंड में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत शरबत मिलता है भाई, पेट में पेट तो भरता ही है उससे और शक्ति भी देता है, बिल्कुल सच बात है। कोंकण गोवा में कोकम शरबत, सोल कड़ी दक्षिण भारत में पानकम नीरमोर, और संबारम और उड़ीसा में बेलबना। मतलब ये सब जो पेय पदार्थ हैं बालक, वो भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा हैं और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना भी झलकती है। और सबसे बड़ी जो खास बात उन्होंने ये कही कि ये सारी जो चीज़ें हैं जो हमारी रसोई से निकली हैं, वो हमारे खेत खलियान से निकली हैं, इसकी कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है और ये पीढ़ियों का अनुभव इसमें समाया है। तो हम सब भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद ले सकते हैं। और बिल्कुल सुनते रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक, क्योंकि ये है हमारे देश की मिट्टी जिसके लिए हम हमेशा से समर्पित हैं, समर्पित रहेंगे।

जी हाँ, वेलकम बैक। ये है आकाशवाणी रेनबो और हम बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम के 134वें संस्करण की। भाई आम की बात करते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। सच में मुझे याद है, मैं अपने पिताजी के साथ बचपन में आम के बागों में जाया करता था। वो साथ में जाते थे और अपने मित्रों के उनके बाग थे, वहाँ से हम एक एक चुन के आम, डाली के जो आम होते थे उनको लेके आते। दिन भर उनको हम बाल्टी में भिगोते और भिगोने के बाद उसमें थोड़ी बर्फ़ भी डालते थे और शाम को बिल्कुल कहते हैं कि हमें बिठा दिया जाता था एक पंक्ति में और कपड़े हटा उतार के सिर्फ एक एक वस्त्र के साथ कि हम गंदे ना करें वो कपड़े, और फिर जी भर के हम आम खाते थे। सच में पेट भर जाता था लेकिन मन नहीं भरता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आम, मतलब कहते हैं ना गर्मी आते ही एक और चर्चा शुरू होती है हर घर में, वो है आम की, उसकी चर्चा की। बिल्कुल सच बात है, आम जो है एक, उन्होंने कहा कि एक ऐसा विषय है कि जिसकी बात शायद हर घर में होती होगी, हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, तो ये तो आम रस की जान है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का दशहरी, और उन्होंने कहा कि जो उनका उनका अपना संसदीय क्षेत्र है काशी, वहाँ का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात उन्होंने कही कि पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है, इसलिए लगता है कि शायद ये पका नहीं है, लेकिन बहुत ही मीठा होता है। और बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाती है। इसके अलावा चौसा, मालदा, दक्षिण भारत में जाएं तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा और बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की का सुवर्णरेखा, यानी जगह बदलती है आम का रंग रूप और उसका स्वाद बदल जाता है। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आम की यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक पहुंच हो रही है, और उन्होंने कहा कि मन की बात के प्रोग्राम के माध्यम से वो ये कहना चाहते हैं कि आम के पैदावार से जुड़े जो अपने किसान बहन भाई हैं उन सबकी उन्होंने प्रशंसा की और कहा कि वो सब देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं बल्कि विशेष हैं और ऐसे ही वो छाते रहें। बिल्कुल सच बात है भाई, मैं भी ये कहना चाहूँगा आपकी तरफ से कि जो हमारे आम की पैदावार करने वाले किसान हैं उनको हमारा सल्यूट, क्योंकि अगर वो नहीं आम को उगाएंगे तो वो हम स्वादिष्ट आम कहाँ से खाएंगे। फिलहाल तो जो हमारा देश है ना बहुत ही विशेष है, इसकी हर मिट्टी में अपना रंग है ना। तो चलिए देश को सल्यूट करते हैं।

जी हाँ, यह आकाशवाणी रेनबो और हम बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम मन की बात की। बिल्कुल, जिसके 134वें एपिसोड में यानी उसके संस्करण में उन्होंने बहुत सारी खास बात की। एक और बहुत ही विशेष बात उन्होंने बताई कि जब अभी हाल की उन्होंने जो यूरोप की नीदरलैंड की यात्रा की, वहाँ पर बहुत सारी मीटिंग्स में वो शामिल हुए, लेकिन एक क्षण उन्होंने बताया कि एक ऐसा क्षण वहाँ आया जिससे हर भारतीय को गौरवान्वित होने का अवसर मिला। जी हाँ, नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएँ भारत को सौंपी गईं। और ख़ास बात की थी, उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर बहुत सारे देश विदेश से उन्हें संदेश मिल रहे हैं और लोग बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। इसमें दुनिया भर के तमिल समुदाय भी शामिल हैं जो विशेष उत्साह से जुड़े हैं। बिल्कुल, ये जो ताम्र पट्टिकाएँ हैं, इनके बारे में उन्होंने बताया कि ये इसमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएँ हैं जो मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी हैं। और उन्होंने बताया कि इनमें आइन मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का भी उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोल वंश की उपलब्धियों का वर्णन है और इनसे पता चलता है कि चोल साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनसे मिलती है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि चोल साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को गर्व है और हमें अपनी इस गौरवशाली परंपरा पर और अपने इस महान देश भारत पर गर्व है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड सरकार ने चोलकालीन ताम्रपट्टियां भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ये पट्टियां चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने झारखंड के रांची में हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को विभिन्न स्पर्धाओं में 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान क्लब पूरे देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय का भी उल्लेख किया। इस विद्यालय ने पिछले साल अपनी 50वीं वर्षगांठ पूरी की। उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने में इस विद्यालय नेटवर्क की भूमिका सराहनीय है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान ले रहे हैं। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। घायलों में 3 की हालत गंभीर है, शेष 5 मरीजों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की आशंका है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी संभावना है, जबकि दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका व्यक्त की गई है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर अल्फयान से होगा। इधर आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Surely, we're not all too young to have played Ludo on a cardboard set with plastic pieces, or too old for a nail-biting round of Monopoly, are we? Very good to hear your stories of board games with your friends and family. So let us know as we take a very short break.
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: even if you are relaxing indoors, the temperature is hellish. So, stay hydrated and eat plenty of fruits, all right? If you have any messages for the listeners, once again, reach out to us at 9868107070 while we take a really short break.
1: Mangal Bhavan, Mangal Hari, Dravahu Sudarshan.
2: Shri Ram Katha Marmagya Dr. Kumar Vishwas Ji ke saath, Shri Ram Charitmanas ki bhav, ras, sangeet yatra, sampoorn Shri Ram Charitmanas. सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
9: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
0: Studies have shown that board games improve mental aptitude, help in managing attention and hyperactivity disorders, and may help against the early onset of cognitive decline. So the next time you play, remember, it is an investment in your future. On that note, here's Survive by Lewis Capaldi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी

शंकर देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले एक वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत करने पर बल दिया। सिलीगुड़ी में श्री बोस ने बताया कि पर्याप्त बाड़ न लगाए जाने के कारण भारत बांग्लादेश सीमा का एक संवेदनशील हिस्सा असुरक्षित बना हुआ है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण हो रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमताओं से लैस किया जाएगा। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक चार मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा और ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

जी हाँ, शानदार से प्रोमो के साथ हम हाजिर हैं रविवार की दोपहर को प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग में। जी हाँ, 1:07 और मैं आपके साथ संजीव श्रीवास्तव संजू, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। तो प्रोग्राम है आपके लिए, सॉन्ग है आपके लिए, आपकी पसंद के नगमे हम इस प्रोग्राम में बजाते हैं और ढेर सारी फरमाइशें भी देखिए मेरे पास आनी शुरू हो गई। लेकिन पहले कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं, शुभारंभ करते हैं एक बहुत ही शानदार से इस गीत के साथ।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

जी हाँ, ये है आकाशवाणी रेनबो, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश ने हमें बहुत प्यारा सा मैसेज किया और एक बहुत ही खूबसूरत गीत की फरमाइश भेजी। बिल्कुल, जो है फिल्म बताएंगे आपको। गीत के बोल हैं, सूरज हुआ मध्यम, कभी खुशी कभी गम, जिंदगी में ये सब चलता रहता है। तो बिल्कुल ये गीत आपको अभी सुनाएंगे हम, लेकिन और भी लोगों के नाम हैं जिन्होंने हमें मैसेज किए हैं, बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं जी। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, राजेश, संजीव जी, संजीव श्रीवास्तव, संजू जी, तेरे नाम फिल्म का गीत सुना दीजिए। और अमरदीप कुमार जलाकंडा पुरम सेलम तमिलनाडु से आपको सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हम कोशिश करेंगे कि आपको गीत सुनाएं। फिलहाल हम ये वाला जो नगमा हमने आपसे कहा था, कभी खुशी कभी गम, सुना देते हैं आपको, क्योंकि बहुत ही प्यारा सॉन्ग। और हमें मैसेज करते रहिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको आपकी पसंद के नगमे सुना दें।

जी हाँ, ये आकाशवाणी रेनबो, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग। जी हाँ, आपके साथ मैं हूँ आपका अपना संजीव सासु संजू। आज विश्व तोता दिवस है और ये जानकारी हमें भेज रहे हैं प्रणव शिंदे साहब मुंबई से, और लिखते हैं बहुत प्यारी सी लाइनें, कुदरत ने तो बख्शे थे पंख, उसे खुले आसमान के लिए लोगों ने पिंजरा सजा दिया बस अपने मनोरंजन के लिए। मत छीनो उससे उसकी उड़ान, मत काटो उसके पर, आज़ाद रखो इस तोते को हरे भरे आसमान के लिए। पिंजरे की दीवारों में उसकी सांसें घुट जाती हैं, जब कैद हो मासूम परिंदा तो खुशियां रूठ जाती हैं। आओ मिलकर कसम ये खाएं, तोते को आज़ाद करेंगे, क्योंकि खुले गगन में ही इसकी महफिलें सज पाती हैं। बहुत ही सही और बहुत ही, जैसे कहते हैं, इमोशनल बात आपने कही है। हम उस प्यारे से पंछी को पिंजरे में अपने मनोरंजन के लिए बंद कर देते हैं। अगर कोई हमें उस पिंजरे में बंद कर दे तो हमारे साथ क्या बीतेगी, ये हम सोच सकते हैं। इसलिए आज ही ये संकल्प लीजिए कि हम किसी भी पक्षी को पिंजरे में कैद नहीं करेंगे, खुला आसमान उनके लिए है, उड़ने दीजिए।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

जी हाँ, ये आकाशवाणी रेनबो, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग जी, और मैं आपके साथ संजीव श्रीवास्तव, संजू अनिल ठाकुर साहब सराय काले खां दिल्ली से, नमस्कार। नमस्कार अनिल जी। और अगला मैसेज मेरे पास भेजा गुड्डू धाकड़ साहब ने, क्या बात है धाकड़ साहब, उज्जैन जिला के बेडावन गांव से आप लिखते हैं कि आप कोई भी बढ़िया सा गाना हमारे सुना दीजिए। गाने की फरमाइश करके मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। अरे नहीं भाई, आपने मैसेज किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अगला मैसेज मेरे पास किसने भेजा, होली चौक उत्तम नगर से, जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल जी ने, इनको ये कहते हैं कि हमें बड़ा पसंद आ रहा है प्रोग्राम, लेकिन आपको हमारा भेजा गीत क्या पसंद नहीं आया। धनौरी तेली वाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, ऐसा ये मैसेज करते हैं और कहते हैं आप कोई भी गीत हमें सुना दीजिए। जी हाँ, अब जो मैं गीत अगला आपको सुनाने जा रहा हूँ उसको बहुत सारे लोगों ने उसकी फरमाइश की है, मैं बताऊँ आपको। ये है पहले योगेश देहरादून से, उसके अलावा मोहम्मद रागिव रेजा, दानिश खान साहब और अररिया बिहार से, इसके अलावा इसको भेजा है प्रदीप लखनपाल, सीमा लखनपाल, लुधियाना पंजाब से, धामपुर जिला बिजनौर से, इसमें इसे लिखा है सरिता राज और राजेश राज जी ने। तो चलिए, ये बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपको सुना देते हैं आपकी पसंद का।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी रेनबो, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग। विपुल क्षेत्री साहब लिखते हैं दार्जिलिंग से, बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने किया, और लेकिन आपने कोई फरमाइश अपनी नहीं भेजी कि आपको कौन सा गीत सुनाना। चलिए हम आपको एक बहुत प्यारा सा गीत ज़रूर सुनाएंगे आप ही के लिए, बिल्कुल आप टेंशन मत कीजिएगा कि हमने आपको नगमा नहीं सुनाया, आपको यकीनन पसंद आएगा। अगला मैसेज मेरे पास कहाँ से आया साहब, ये हमारा

हमारे पास आया भवन कुमार दास और रोनोनिया गया बिहार से। और अगला मैसेज जी हमारे पास ये है ग्राम दुल्हापुर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तनवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। किसी भी गीत को आप सुना दीजिए। बिल्कुल जी। तो चलिए हम किसी भी गीत को आपको ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन गीत यकीनन बहुत प्यारा होगा। और ये आदर्श कुमार साहब, मोस्ट हॉटेस्ट सिटी बांदा उत्तर प्रदेश से हमें मैसेज भेजते हैं और कहते हैं आप भी कोई भी नगमा आप सुना दीजिए। और ये हैं आई एम राहुल बुराड़ी नथुपुरा से, और कहते हैं प्लीज़ मेरा मैसेज पढ़ लीजिए। देखिए आपका मैसेज भी हमने पढ़ लिया। सुनीता शर्मा शालीमार बाग मू और लिखती है मूवी कहाँ। जी जी जी बिल्कुल, आपका भी सॉन्ग हमने सुन लिया है, समझ लिया है, उसको भी हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि समय रहते ही आपको बता दें। और कुछ नाम हमारे पास और भी हैं जिन्होंने हमें मैसेज किया है, बिल्कुल हम मायूस नहीं होने देंगे। मनोज कुमार यूपी हरदोई से, सवाजपुर दिल्ली रघुवीर नगर में सिलाई का काम कर रहे हैं और हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं। इनके साथ तीन लड़के हैं जिनको ये सिखा रहे हैं सिलाई, और जिनका नाम मैं बता दूं जल्दी से, इन्होंने कहा चलिए मैं खुश करता हूँ, राम जी शुक्ला, मनमोहन राठौर, आलोक राठौर साहब। तो चलिए ये अगला जो गीत है बहुत ही प्यारा सा, इसको फरमाइश की हमारे पास जिन लोगों ने, उन सब के नाम ये वाला गीत।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

जी हाँ, वक्त हो गया है 1:42 और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ आपका अपना संजीव श्रीवास्तव। संजू, उपदेश शर्मा, रोहित धीरज किश्तवाड़ जम्मू एंड कश्मीर से लिखते हैं ये हमारे पास मैसेज, बहुत ही प्यारा मैसेज है साहब। और ये हमारे पास कौन दोस्त हैं, ये हैं उत्तराखंड से कविता जी। प्लीज़ प्लीज़ मेरा संदेश भी शामिल कर लीजिए। कविता जी, आपका संदेश शामिल कर लिया है बिल्कुल, और सॉन्ग हम बिल्कुल अभी थोड़ी देर में सुनाएंगे। ये हैं भगवती न्यू दिल्ली से, इनका भी मैसेज हमने शामिल कर लिया है। संजू जी नमस्कार, अगर मैं कहूँ लक्ष्य मूवी का सॉन्ग आप मुझे सुना सकते हैं। थैंक्स इला एंड सौरभ जर्मनी से हमें ये मैसेज भेजते हैं। बिल्कुल इला एंड सौरभ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जर्मनी में भी हमें सुन रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका ये सॉन्ग लास्ट में सुना दें, अगर नहीं सुना पाए तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि कई सारे सॉन्ग्स की फरमाइश आपसे पहले हमारे पास आ चुकी है। और ये जो सॉन्ग है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, बहुत ही प्यारा सा नगमा जी। इस सॉन्ग को किसने सुनना चाहा मैं बिल्कुल आपको बता देता हूँ। जी हाँ, ये है हमारे पास स्वाति फ्रॉम पटना बिहार से। और इसके अलावा अगला जो ये जो मैसेज हम आपको सुना रहे हैं, ये जो सॉन्ग मैं सुनाने जा रहा हूँ, इसको मेरे वाले सॉन्ग में सुनना चाहा है किसने जी, पहले आपको सुना देते हैं ये नगमा और उसके बाद बताएंगे हम उनका नाम।

हरकिरण सिंह जी फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से हमें मैसेज करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रामू राठौर, राठौर रघुवीर नगर दिल्ली से, कोई भी अच्छा सॉन्ग सुनाइए।

मोहला ऊपरकोट से मोहम्मद सईद अब्बासी साहब, निगत प्रवीण जी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबानपुर अब्बासी परिवार, इसके अलावा कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान साहब, फैजी, फराज, फरहीन, फरान, फारिया और ताहिरा जी, आपने सहरा फिल्म से एक बहुत ही खूबसूरत नगमा सुनना चाहा है, हम बिल्कुल आपको सुनाएंगे, और लेकिन कुछ मैसेज पढ़ने के बाद जी। ये हैं महावीश सैफी अमरोहा से, और उसके बाद अगला मैसेज हमारे पास भेजा किसने साहब, मैं नबलू वरक मलपड़ गोवा से। बिल्कुल जी, तो नबलू वरक साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी दूर से हमें मैसेज भेजा और आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। और ये अगला मैसेज मेरे पास कहाँ से आया जी, नाम आपने नहीं लिखा, सिर्फ मैसेज भेजा। और अगला मैसेज हमारे पास किसने भेजा साहब, ये भेजा राजेश जी ने, और इसको भेजा है हमारे पास में कहाँ से, अमरोहा से, बिल्कुल उत्तर प्रदेश अमरोहा से। बिल्कुल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये हैं इस्लाम सलमानी साहब, ग्राम बाजितपुर, ज़िला बदायूं से, और कहते हैं कि अपने घर से हम प्रोग्राम सुन रहे हैं, बेटी मेरी बड़ी बेटी मंशा, छोटी बेटी मुस्कान और बड़ा बेटा अरमान और अमन अदनान, पूरा परिवार आपका प्रोग्राम सुन रहा है। तो चलिए एक और प्यारा नगमा जो हम सभी, बहुत सारे लोगों ने हमारे पास फरमाइश भेजी है, हम आपको सुना देते हैं।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

जी हाँ, यह है आकाशवाणी रेनबो और वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, क्योंकि साइमा आ गई है स्टूडियो में और प्रोग्राम बहुत प्यारा आशियाना अगले घंटे में आपके लिए लेके आने वाली हैं। और फिलहाल मुझे इस बहुत ही प्यारे से नगमे के साथ दीजिएगा इजाज़त अगली मुलाकात के लिए, जो ऊपर वाले ने चाहा तो शीघ्र होगी। गीत है लता जी की आवाज़ में और फिल्म है समाधि, और मैं हूँ आपका अपना संजीव श्रीवास्तव संजू। सो बाय बाय एंड टेक केयर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आपकी वाणी आकाशवाणी, आप सुन रहे हैं। मैं उसायम आपके साथ आज एक बार फिर लेकर आई हूँ आपके लिए प्रोग्राम आशियाना। और आशियाना में आज क्या है खास? छोटे उस्ताद। छोटे उस्ताद, आजकल क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि गर्मियों की छुट्टी, और गर्मियों की छुट्टी में क्या कुछ हो सकता है, बच्चों के लिए ख़ास बातें होंगी, और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं बड़े दो चार से होते रहते हैं, है ना। कहते हैं कि भैया बच्चों मान जाओ, होमवर्क कर लो, कुछ एक्टिविटीज़ कर लो। क्या कुछ है आज आशियाना में खास? बातें चलेंगी, लेकिन खूबसूरत गानों का सफर भी लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा, दिल से दिल तक।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना। बेहद खूबसूरत गाना भी आपने सुना मासूम फिल्म से, और वाकई में ये गाना ऐसा है कि जब छोटे बच्चों की बात आती है ना, तो कहीं ना कहीं लगता ज़रूर है कि छोटे बच्चे भाई शरारती तो होते हैं, लेकिन उनकी अदाओं में, उनकी मस्ती में और हंसने में, बोलने में, जो बात करने में मज़ा आता है ना उनसे बात करते हुए, वो वाकई में कितनी भी टेंशन हो, कुछ भी हो, वो दूर हो जाती है। लेकिन कई बार टेंशन कम होती है, अब जैसे गर्मी की छुट्टियां हैं, बच्चों का हॉलीडे होमवर्क है, बच्चों को किस तरीके से इन छुट्टियों में बिज़ी रखा जाए, बच्चों को कैसे उनके होमवर्क के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ करवाई जाएं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना कहीं बड़ा परेशानी का सबब बन जाती हैं। होता है ना, पेरेंट्स हमेशा सोचते रहते हैं कि भाई ऐसा क्या किया जाए जिससे बच्चे अपने, अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी की बात करें, मेंटली एक्टिविटी की बात करें, तो बच्चों को बिजी रखना बेहद ज़रूरी होता है। ऐसे में क्या किया जा सकता है? ऐसे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर बच्चों को हम आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क के साथ बिज़ी रखें, या बच्चों की एक्टिविटीज़ देखें, बच्चे किस चीज़ में इंटरेस्ट रख रहे हैं, अगर उनको

कार्टून मूवीज़ देखनी पसंद है, तो थोड़ा सा उनको एक कहते हैं ना कि ड्राइंग के साथ साथ उनको जो कार्टून करेक्टर पसंद है उसकी पिक्चर्स बनाना, उसकी ड्राइंग करना, और कुछ अगर वेस्ट मटेरियल है तो इस तरह की चीज़ों में बच्चों को इन्वॉल्व करना और अपने रूम को ऑर्गेनाइज करना सिखाया जा सकता है, इसमें उन्हें बिजी रखा जा सकता है। बच्चे बखूबी हर काम को जोश व खरोश के साथ करते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर भी पेशेंस हो और आप बच्चे को सिखाएं हंसी खुशी प्यार के साथ में, बिना डांटे। अगर बच्चों से प्यार प्यार में काम कराया जाए ना, तो वो उनकी एक्टिविटी के साथ साथ उनके अंदर कहते हैं ना कि एक चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना और बेहतर एजुकेशन। घर होता है एक ऐसी जगह जहाँ से बच्चों को पहली एजुकेशन मिलती है हर तरह की, तो आप इन चीज़ों को करके बच्चों को सिखा सकते हैं। फिलहाल छोटे बच्चों की बात हो रही है और कुछ क्या खास हो सकता है, इन छुट्टियों में बातें होती रहेंगी, लेकिन लगातार खूबसूरत गानों का सफ़र भी आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा, दिल से दिल तक।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, मैं हूँ सायमा आपके साथ और यहाँ पर हम कर रहे हैं छोटे बच्चों की बात आशियाना प्रोग्राम में। और बच्चे बच्चों की बात ना हो भला ऐसे कैसे हो सकता है। गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों की मौज मस्ती को बेहद ख़ास तौर से पेरेंट्स लेकर ध्यान में रखते हैं कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी हो जाए साथ साथ मस्ती भी हो जाए। और ऐसे में अगर हम बच्चों के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो या कहा जाए उनके ऊपर थोड़ा सा ख्याल ज़्यादा करके उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र ज़्यादा रखें और उनको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में बिज़ी करके रखें तो कहना ही क्या। फ़िलहाल बातें होती रहेंगी और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर आऊँगी, फिर करूँगी आपसे और बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइए, बने रहिए आकाशवाणी रेनबो पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी और मैं हूं सैम आपके साथ, और इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना आशियाना। और आशियाना आज में हम बात कर रहे हैं छोटे उस्ताद को लेकर के। छोटे उस्ताद यानी कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो इस गर्मी की छुट्टियों में क्या कुछ ख़ास कर रहे हैं और क्या कुछ ख़ास हो सकता है उनके लिए। फ़िलहाल अगर अभी तक आप नानी दादी के घर नहीं गए ना, तो बिल्कुल जाना मत भूलिएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि जब बच्चे अपने रिश्तों को समझते हैं, अपने नानी दादी के घर जाते हैं, अपने रिश्तों को समझते हैं, उनसे मिलते हैं, उन्हें कहते हैं ना कि जो अपनी संस्कृति होती है उसको समझने में, बड़ों की एक रिस्पेक्ट करने में, उनके साथ रहने में, उनसे जो बातें करने में, बच्चों का एक कहते हैं ना कि सोचने समझने की ताकत बढ़ती है। इसके साथ साथ रिश्ते की मजबूती बढ़ती है। इसके साथ साथ बच्चे समझ सकते हैं कि हाँ, बड़ों के साथ बैठकर भी कुछ मज़ा किया जा सकता है। क्योंकि नानी दादी, नाना दादा, ये कुछ ख़ास रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ वक्त बिताना और उनकी सुनी हुई या उनकी बताई हुई कहानियों को सुनना कितना मज़ेदार होता है ना। तो बच्चों को ये चीज़ों से बिल्कुल भी अलग नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल इन गर्मियों की छुट्टियों में नानी और दादी के घर तो जाना ना भूलें। इसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई के वक्त की अगर हम बात करें, तो पढ़ाई लिखाई का वक्त जो होता है ना बच्चों के लिए, वो तो हमेशा पेरेंट्स को पता ही होता है कि उनके बच्चे किस वक्त पढ़ते हैं, क्या होता है। तो गर्मी की छुट्टियों में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बच्चों को खेल कूद के साथ में उनका जो एक प्रॉपर टाइम टेबल है पढ़ाई का, वो हमेशा बना रहे। ये छोटी छोटी सी जो आदतें होती हैं ना, जो हम बच्चों को सिखाते हैं, ये बहुत हद तक जाके आगे उनके लिए ही कहते हैं ना कि वो एक प्रॉपर समझ के साथ, सोच के साथ जब अपनी ज़िंदगी को लेके चलते हैं, तो यही डिसिप्लिन उनके साथ आगे भी बना रहता है। और एक्टिविटीज़ की जहाँ तक बात की जाए, एक्टिविटीज़ बच्चों को जब हम कराते हैं ना, अलग अलग छोटी छोटी एक्टिविटीज़। अब अगर कुछ होता है कि स्कूल में अगर कहीं कोई कैंप लगा है, या फिर अगर आप स्कूल इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से भेजना नहीं चाहते किसी कैंप में, तो घर में ही कुछ इस तरह की ख़ास एक्टिविटीज़, उनसे गार्डनिंग करवा सकते हैं आप बच्चों के साथ मिल करके। कहते हैं ना कि प्लांट एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं अपने आप

में एक खुशी देने के लिए काफ़ी है। और बच्चों को मिट्टी में खेलना, कूदना, उनसे गार्डनिंग करवाना, उनसे आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क करवाना, ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो उनकी एक्टिविटी में शामिल की जा सकती हैं। फ़िलहाल ये बातें तो चलती ही रहेंगी, लेकिन खूबसूरत गानों का सफ़र भी लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा, दिल से दिल तक।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के रिगार्डिंग। बच्चे कहते हैं ना, गर्मियों की छुट्टियाँ हों और बच्चों के साथ मौज मस्ती ना की जाए, भला ऐसे कैसे? और क्या होता है, पेरेंट्स कई बार थक कर क्या करते हैं, होता है ना, आप लोगों के साथ भी करते होंगे ज़रूर। या तो बच्चों को ज़्यादातर स्क्रीन टाइम जिसे कहा जाए वो हम बढ़ा देते हैं, है ना, कि चलो घर में अब बच्चे हैं, हमें भी थोड़ा सा सुकून चाहिए, तो स्क्रीन टाइम इनका बढ़ा दिया जाए, मोबाइल दे दिया जाता है हाथ में, या टीवी बहुत देर तक देखने के लिए बिठा दिया जाता है, या फिर कार्टून मूवीज़ लगा करके छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है चलो इन्जॉय कर लो, हमें थोड़ा सा सुकून लेने दो। और ये जो की जाने वाली गलती होती है ना, इसको हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं। और होता क्या है, बच्चों की आईज़ के साथ साथ उनका जो एक कहते हैं ना सोच समझने की जो ताकत होती है, या उनका आईक्यू लेवल जो होता है, उस पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है। क्योंकि बहुत देर तक अगर बच्चे मोबाइल देखते हैं तो उससे कहा जाए ना तो चश्मा लगना, या फिर कहते हैं ना कि जो उनकी सोचने समझने की या कुछ एक्टिविटीज़ करने की जो उनकी एक सोच होती है वो बहुत हद तक रुक जाती है। तो इस चीज़ को ना किया जाए प्लीज़, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे बहुत हद तक सिमटे बैठे रहते हैं बहुत देर तक, और एक ही जगह बैठने के बाद में वो बस कहते हैं मोबाइल देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो बहुत हद तक बच्चों के ऊपर भी इफ़ेक्ट डालता है। तो इन चीज़ों को अगर आप लिमिटेड करते हैं तो इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर मोबाइल देखते देखते भूल जाते हैं कि हमें क्या कंटेंट देखना है क्या नहीं देखना, और वो स्क्रॉल करते चले जाते हैं। तो इन चीज़ों का भी ख़ास ध्यान देने पर पेरेंट्स को नज़र रखनी चाहिए, इन चीज़ों पर ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और जो स्क्रीन टाइम होता है उसको भी लिमिटेड करना चाहिए। जब तक स्क्रीन टाइम लिमिटेड नहीं होगा तब तक बच्चे पढ़ाई लिखाई क्या एक्टिविटीज़ में भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को बाहर लेकर जाइए, घुमाने के लिए कुछ ऐसी जगह लेकर के जाइए जहाँ पर उनको चीज़ें सीखने की, समझने की, देखने की, और चीज़ों को बताइए कि भाई ये अगर आप मॉन्यूमेंट्स सिखाने लेके जाते हैं बच्चों को इन छुट्टियों में तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो बच्चे सीखते हैं, समझते हैं, देखते हैं। तो चीज़ों को एक्सप्लोर कराना बहुत ज़रूरी होता है। फ़िलहाल इसी तरह आपसे बातें होती रहेंगी, खूबसूरत गानों का सफ़र भी लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा, दिल से दिल तक।

पापा तो बैंड बजाए, होता है ना कई बार पापा मम्मा बैंड मिलके बैंड बजा देते हैं कि भैया ऐसे नहीं करना और ऐसे नहीं करना, लेकिन उनका जो बैंड बजाना होता है ना वो गलत नहीं होता, क्योंकि पापा मम्मा को पता होता है, बड़ों को पता होता है कि जो वो आपको कह रहे हैं वो किस लिए कह रहे हैं। जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे अभी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं ना, सीरियसली कहने की बात ये है कि कई बार मम्मा पापा ना बड़े अजीब से लगने लगते हैं कि जब देखो हमें बोलते हैं, जब देखो हमें रोकते हैं टोकते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो मम्मा पापा कहते हैं या जो बड़े कहते हैं ना वो सीरियसली बहुत हद तक सही कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है आपके लिए क्या अच्छा है और क्या गलत है। और जहाँ तक मोबाइल टीवी और स्क्रीन टाइम की हम बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, बच्चों को जितना एक कहते हैं ना इन चीज़ों से दूर रखना ही बेहतर होता है। दिखाइए लेकिन एक लिमिटेड टाइम उनके लिए सेट कीजिए कि भाई इस टाइम तक, इस टाइम से लेके और ये वाला जो टाइम है आपके लिए परफेक्ट है, आप इस टाइम में ये चीज़ देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम एक्टिविटीज़ की बात करें तो हम कहते हैं ना जो फिज़िकल फिटनेस होती है उसको भला कैसे भूल सकते हैं, वो भी तो ज़रूरी होती है ना। अब इन गर्मियों में कई बार क्या होता है ना, इतनी शिद्दत की गर्मी और फिर बाहर जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता, तो ऐसे में बच्चों को कैसे फिज़िकल फिटनेस सिखाई जाए। तो 10 मिनट का टाइम जो होता है ना वो इनफ होता है। अगर बच्चे घर के बाहर खेलने नहीं जाते हैं रोज़ाना, तो घर में 10 मिनट का जो फिटनेस चैलेंज है ना वो आप उन्हें दे सकते हैं, यानी कि स्किपिंग हो गया, पुशअप हो गया, या सिटअप, या फिर कोई और गेम से ऐसी एक्टिविटीज़ जुड़ी हुई जो बच्चों को कहते हैं ना चैलेंज के तौर पर दी जा सकती है। इस फिटनेस चैलेंज की मदद से बच्चों को किसी भी गेम को खेलने के लिए कहते हैं ना कि पुशअप कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, उनको उत्साहित कर सकते हैं कि भाई अगर ये आप करके दिखाएंगे और इसको करने से उसके फ़ायदे भी आप बच्चों को बता सकते हैं, तो घर ही घर में रहकर भी बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और बच्चों का जो माइंड है ना वो मोबाइल टीवी से डाइवर्ट भी होता है ऐसी एक्टिविटीज़ के साथ, और जब बच्चों को ये एक्टिविटीज़ करने में मज़ा आने लगता है ना तो सीरियसली फिर वो जब उनको मौका मिलता है अपने आप आपस में खेलते हैं, कूदते हैं, या अकेले भी होते हैं तब भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं। फिलहाल बातें होती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर आऊँगी, करूँगी आपसे और बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइए, बने रहिए आकाशवाणी रेनबो पर।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों,

राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है। वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

एक छोटे से ब्रेक के बाद साइमा फिर है आपके साथ और इस वक्त चल रहा है आपका अपना प्रोग्राम आशियाना। फिलहाल वक्त की कमी भी है मेरे पास और उम्मीद करती हूँ जितना भी प्रोग्राम में गप्पे शप्पे मारे ना आपसे और जितनी भी बातें की आप ज़रूर उसको कहीं ना कहीं याद रखेंगे और जो हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ना वो इन छुट्टियों में ज़रूर बहुत सारी चीज़ें इंजॉय करने वाले हैं। और साइमा को अब यहीं दीजिए इजाज़त क्योंकि अगला प्रोग्राम भी आपका इंतज़ार कर रहा है और आप भी ज़रूर अगले प्रोग्राम का इंतज़ार कर रहे होंगे। फिलहाल 4 से 5 फिर रहूँगी आपके साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
2: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
3: पान, तंबाकू, खैनी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, न जाने कितने ही फॉर्म्स में आजकल लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, जबकि जानते हैं कि तंबाकू खाना सेहत के लिए कितना जानलेवा है। जानबूझकर कुएं में गिरने में कितनी समझदारी है, जानेंगे हम आज के रेडियो डॉक्टर में। हमारा आज का विषय है ओरल प्रॉब्लम्स ड्यू टू टोबैको यूज, यानी कि तंबाकू खाने से होने वाली मौखिक समस्याएं। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर विक्रांत मोहंती, जो प्रोफेसर एंड हेड हैं पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री मौलाना आजाद मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज न्यू दिल्ली से। और आपके साथ हूं मैं आरजे रश्मि गुप्ता। डॉक्टर साहब, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में।
4: धन्यवाद रश्मि जी। और आई थिंक मौखिक स्वास्थ्य और तंबाकू सेवन का बहुत ही अटूट रिश्ता है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
3: जी, तो डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हमारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े, एक छोटी सी बात यही कि तंबाकू सेवन से किस तरह से हमारी ओरल प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं।
4: जी रश्मि जी, एक्चुअली ये एक ऐसी चीज है, जैसे मैं आपको डेंटल प्रॉब्लम या जो मौखिक बीमारियां जो तंबाकू सेवन से होती हैं उसके बारे में ज्यादा बोलने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि और सभी श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि तंबाकू सेवन जो है वो एक एडिक्शन है जिसको, और ये क्लासिफाइड बीमारी है, मतलब एक डिसऑर्डर है, मेडिकल कंडीशन है जो क्लासिफाइड है। और इसके सेवन से भी नुकसान होता है, जब आदमी इसको सेवन करके एडिक्टेड होता है तब छोड़ने पे भी विड्रॉल सिम्टम्स होती है। तो जरूरी ये है, पहली बात ये जानना कि तंबाकू सेवन जो लोग सोचते हैं, चाहे वो धूम्रपान के रूप में किसी भी फॉर्म में हो या फिर जो निर्धूम या फिर जो स्मोकलेस टोबैको जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके जैसे मसाला गुटखा, खैनी, पान और अलग अलग मसाले आते हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो भी सब तंबाकू के अंडर ही आते हैं। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले किसी भी तरह का सेवन, एक्सटर्नल जो भी स्टिमुलेंट है अगर हम लोग मुंह में लेते हैं तो उससे ना शुरुआती लक्षण जो होती है वो, खास करके आपके दांत नॉर्मली सफेद होते हैं, शुरुआत में क्या होता है सफेद दांत जो है वो धीरे धीरे करके उनका रंग जो है बदलना शुरू होता है। उसके बाद धीरे एक बार दांतों का रंग जो है नॉर्मली जैसे क्रीमी व्हाइट होता है या फिर सफेद होता है, तो वो रंग जो है वो धीरे धीरे रंग बदलता है पीले से और फिर आगे जाके काला या फिर भूरे रंग का हो जाता है। उसके बाद अगला जो है फिर वो मसूड़ों की बीमारियां शुरू होती हैं, और मसूड़े जो होते हैं वो हमारे दांतों के चारों तरफ जो बाहर दिखने वाला जो क्राउन पोर्शन जो सतह हमें दिखती है अपने दांतों में, तो उस चीज को पकड़ के रखता है और उसको मसूड़े वहां पर जो है सपोर्ट करते हैं, और वो जो है फिर वो इस जो उसके जैसे हम लोग सिगरेट लेते हैं, सिगरेट के धुएं से जो गर्मी पैदा होती है या फिर तंबाकू का सेवन जो गुटखा खैनी के रूप में लेते हैं उससे जो जो जो रस निकलता है वो सब इरिटेट करता है या फिर नुकसान पहुंचाता है हमारे मसूड़ों, और उससे होती है मसूड़ों की बीमारियां। तो ये हैं सब शुरुआती जो बीमारियां जो मुख में जो चेंजेस होते हैं वो इस तरह से दिखना शुरू करते हैं। जैसे जैसे आप तंबाकू के जकड़ में आ जाते हैं पूरी तरह से और कंटिन्यूअसली इसका सेवन करते हैं, क्योंकि इनिशियल जो शुरू करते हैं वो धीरे धीरे करके शुरू करते हैं, बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ टाइम बढ़ा देते हैं लोग, उनको याद ही नहीं आता कि कितने पिए उन्होंने, सिगरेट कितने पिए, बीड़ी कितने मारे या फिर खैनी और गुटखा कितनी बार खाया, क्योंकि उनके मुंह में हमेशा चलता ही रहता है और उसका जो रस निकलता है वो अपने आप में हानिकारक होता है। तो तंबाकू में जैसे मैंने आपको बताया, पहले दांतों का रंग बदलना, उसके बाद मसूड़ों की बीमारियां होना, और धीरे धीरे जब मसूड़े फूल के उसमें से खून निकलना आए तरीके, मतलब आप जस्ट ब्रश करिए उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है, तो ऐसा होता है कि उसके बाद मसूड़ों की जकड़ जो है ना वो कम हो जाती है और दांत भी हिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं, जैसे आप हम आगे बढ़ेंगे मैं इनके बारे में और भी जानकारी देना चाहूंगा आपको।

0: आज हम बात कर रहे हैं ओरल प्रॉब्लम्स ड्यू टू टोबैको यूज। जी हाँ, आज का रेडियो डॉक्टर का विषय यही है, तंबाकू खाने से होने वाली मौखिक समस्याएं। यदि आप भी तंबाकू का सेवन करते हैं तो आपके जान ले, ये केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। और सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि जो तंबाकू सेवन से ये शुरुआती लक्षण जो होते हैं, शुरुआत में ही जो लोग इसे खाना शुरू करते हैं उनके दांतों का रंग बदलना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे मसूड़ों की समस्या शुरू हो जाती है, तो क्या इनके अलावा और भी कुछ सिम्टम्स या लक्षण होते हैं कि जिनसे ये पहचाना जा सकता है कि हाँ, ये तंबाकू उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है?
1: जी जी, बहुत बहुत जरूरी है जानना, बिकॉज क्या है कि ये एक, जैसे मैंने आप शुरुआती लक्षण बताया, इसके आगे कैसे होता है कि तो दांतों के जो हड्डी के अंदर जो होती है, हड्डी का गलना भी शुरू होता है, और उससे पहले जो तंबाकू का सेवन जो करते हैं, जो लोग सेवन ज्यादा करते हैं, उनमें ये दांत के जो हड्डी कमजोर होने से दांत समय से पहले गिर भी सकता है। मतलब उसको वी कैन टूथ लॉस जिसको बोलते हैं, या दांतों का समय से पहले गिर जाना भी संभव है तंबाकू जो सेवन करते हैं।
0: सॉरी सर, आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ, हमारे एक कॉलर लाइन पर आ गए हैं, तो इससे पहले कि हम आगे कुछ बताएं, हम उन्हें लाइन पर ले लेते हैं। जी, कौन बोल रहे हैं? आपका नाम बताइए और आपका सवाल पूछिए।
2: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार,
2: मेरा नाम नीरज चौरसिया है और मैं ब्लाइंड हूँ, संत नगर दिल्ली से बोल रहा हूँ।
0: जी,
2: मेरे दांतों में नीचे ऊपर दोनों साइड दर्द होता है, अजीब सा दर्द होता है, जैसे लगता है मैजिकली थोड़े दिन सही रहता है, थोड़े दिन बाद फिर चालू हो जाता है।
1: जी नीरज जी, मैं समझ रहा हूँ कि आपको दांतों में दर्द है और आपको कभी रात को दर्द होता है, कभी कभी दर्द होता है और कुछ दिन तक रहता है। लेकिन देखिए, सबसे पहले जरूरी बात यह है कि आपको जो निकटतम आपके जो डेंटल प्रोफेशनल, जो दंत चिकित्सक हैं, आपको उनके पास पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी जाँच करने के बाद ही पता लग पाएगा कि इसका कारण क्या है। अगर उसमें दांतों में सड़न हो गई है तो

0: था
1: जी
0: थोड़े दिनों बाद में दिखा के आया था डॉक्टर को, तो उन्होंने दर्द की दवा लिख दी थी और पेस्ट लिख दिया था। मैंने किया, फिर से मेरे दांतों में दर्द चालू हो गया। रोटियां अपने आप खिंचाव से दांतों के बीच में फंस जाती हैं।
1: ठीक है धीरज जी, देखिए दो तीन तरह का से प्रॉब्लम हो सकता है। एक है जैसे मसलों की बीमारी, दांतों के बीच में जगह बन जाने की वजह से खाना फंसना, और उस तरह ये एक रूटीन प्रॉब्लम है जो लोगों में दिखता है। तो सफाई, उसको क्लीन मतलब डेंटिस्ट के द्वारा उसकी सफाई करवाना, और उसके बाद बराबर से आपको ब्रशिंग कैसे करना है वो तरीका आप सीख के जाइए, ताकि आप समय सही तरीके से ब्रश करके उन जगहों को साफ रख सके जहां पर खाने फंसने की संभावना ज्यादा है। और उसके अलावा जो दर्द का है, दोबारा आप जाइए एक बार डेंटल डेंटिस्ट के पास जाइए, जो भी निकटतम है, या फिर हमारे अस्पताल में आके दिखाइए और वहां पर इसका सही से इलाज करवाइए।
2: जी तो मुझे लगता है नीरज जी को बिल्कुल अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और जैसे कि डॉक्टर साहब पहले बता रहे थे कि जो लक्षण आप बता रहे थे कि दांत गिरने भी लगते हैं या जो दांत की हड्डी है वो कमजोर होने लगती है, तो एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर है। चलिए इसे हम मतलब अच्छा लगता है जब हमारे जो लिसनर्स हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं और कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी सॉल्यूशन आपको मिलता है हमारे इस प्रोग्राम के द्वारा, तो सच मानिए हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे कॉलर लाइन पर हैं। जी हेलो
3: जी,
2: कौन बोल रहे हैं आप? सर आपका नाम बताइए।
3: मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ।
2: जी बताइए जी,
3: मेरा ये कहना है कि जो नॉर्थ इंडिया वाले सतोरा साथ में रखते हैं, अपने साथ लेके चलते हैं सुपारी, सूखी सुपारी
2: जी,
3: उसमें चूना और तंबाकू डाल के वो लोग खाते हैं, तो वो कहते हैं कि इससे चूना भी जाता है हमारे को, तंबाकू भी जाता है और दांत हमेशा मजबूत रहते हैं। तो क्या दांतों को कैल्शियम की एक तो बहुत जरूरत होती है, इससे नुकसान होता है फायदा होता है? दूसरा मेरा ये कहना है कि जो बीड़ी है, बच्चा बच्चा बीड़ी पीता है, बड़े लोग बीड़ी पीते हैं, गरीब आदमी बीड़ी पीता है, बड़ा आदमी कहता है सिगरेट पीता है, वो बहुत महंगे सिगरेट पीता है, सिगार पीता है, कहता है उससे तो कभी नुकसान होता ही नहीं
2: जी।
3: तो क्या ये बस सच है या गलत है?
1: जी
3: ये दो बातें मेरी हैं।
1: जी धन्यवाद आपके सवाल के लिए। दोनों सवालों का जवाब मैं तो जल्दी दूंगा। सबसे पहली बात यह है कि देखिए कैल्शियम के सोर्सेज मतलब और भी तरीके हैं कैल्शियम अपने शरीर में लेने के लिए, दूध और उस तरह से बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो आप पनीर है, बाकी सब यू नो बहुत सारे प्रोटीन और फिर नॉन वेजिटेरियन आइटम भी हैं, सब कुछ आप मिला के एक अगर आदमी वेजिटेरियन है तो अलग तरीके से कैल्शियम का सपोर्ट ले सकते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन वो अलग तरीके से ले सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू, जो तंबाकू का सेवन चूना और इसके साथ खाते हैं, देखिए वो किसी भी तरह से सही नहीं है, क्योंकि इसका नुकसान शायद आज उनको पता नहीं लग रहा, लेकिन धीरे धीरे करके दांत सख्त नहीं होंगे, मसूड़े बिल्कुल सख्त नहीं होंगे, अभी उनको वो एहसास हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके उसके उसके जो जो जो उसका जो प्रकोप है वो दिखना शुरू हो जाएगा। सो नंबर वन ये है। नंबर टू ये है, बीड़ी जो है, बीड़ी सिगरेट सिगार आप कुछ भी बोल लीजिए, सारे के सारे सेहत के लिए आज नहीं तो कल हानिकारक हैं। वो आपको आज शायद दिखेगा नहीं, लेकिन कुछ ही सालों में इन सभी व्यक्तियों जो इनका सेवन करते हैं उनमें इसके लक्षण और साथ साथ उसका असर भी दिखना शुरू हो जाएगा।
2: डॉक्टर साहब जैसे कि आपने लक्षण भी बताए और लेकिन साथ साथ ओरल प्रॉब्लम्स मतलब या तंबाकू खाने से और क्या क्या समस्याएं, क्या बीमारियां हो सकती
1: जी, मैं बहुत जल्द बताता हूँ जल्दी। देखिए एक जैसे मैंने अभी तक बता चुका हूँ जो लक्षण हो चुके हैं, उसके अलावा जैसे मुंह में छाले पड़ना, तो वन ऑफ द रीजन एक कारण बहुत इंपॉर्टेंट कारण है ऐसा छाले जो तंबाकू के सेवन से पड़ते हैं, खास करके उन जगहों पे जहां पर तंबाकू किसी तरह से रखा जाता है, चाहे गुटका खैनी रखते हैं उससे भी ये छाले पड़ सकते हैं, और ये छाले ऐसे होते हैं कि वो भरते नहीं है जल्दी भरते नहीं है, और इनका जो इसकी वजह से जलन होती है, खाने खाने में दिक्कत होती है, और साथ में नॉट ओनली दैट उसके बाद जो आपके अंदर के जो मांसपेशियां हैं वो सख्त होना शुरू होते हैं। जब वो सख्त होना शुरू होते हैं तो नॉर्मली हमारी मुंह जो है वो तीन उंगलियों के बराबर खुलता है, धीरे धीरे करके जब वो सख्त उसके जो मांसपेशियां सख्त होना शुरू हो जाती हैं उसकी वजह से मुंह का खुलना भी कम हो जाता है और दिक्कत होती है बोलने में, यहां तक कि खोल के ठीक पानी मुंह साफ करने में या कुल्ला करने में भी दिक्कत होना शुरू हो जाती है, और इसको हम कहते हैं ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस, जो खास करके मसूड़ों के मांसपेशियों के सख्त होने की वजह से होता है। उसके अलावा सफेद धब्बे और लाल धब्बे भी पड़ते हैं जहां पर हम लोग जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया या एरिथ्रोप्लेकिया बोलते हैं, ये कैंसर से पहले के होने वाले लक्षण हैं। और अगर हमने ध्यान नहीं दिया गया, ये सेल्फ एग्जामिनेशन या फिर खुद आईने के शीशे के सामने भी आप जांच कर सकते हैं और देख सकते हैं कोई इस तरह का धब्बा जो हट नहीं रहा हो और काफी 3 हफ्ते से ज्यादा आपके मुंह में हो गया हो, तो आपको तुरंत दंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये कैंसर के शुरुआती लक्षण है। और अगर इसको छोड़ दिया और ऐसे ही तंबाकू का सेवन करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि मौखिक कैंसर या मुख कैंसर जिसको हम लोग ओरल कैंसर बोलते हैं वो होने की संभावना बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तंबाकू सेवन करने वालों में।
2: सर मुंह का कैंसर में मतलब केवल एक कहाँ का एग्जैक्टली हम बोले कि गले में हो जाता है, गाल में हो जाता है, या इसको मतलब कंप्लीट ये सारे ये जो अंग हैं हमारे शरीर के वो सब इससे प्रभावित होते हैं?
1: ज्यादातर तो सभी प्रभावित होते हैं एक तरीके से, लेकिन खास करके उन जगहों पे जहां पर हम गुटखा खैनी बीड़ी की वजह से तो अलग अलग जगहों पे हो सकता है, जैसे गले में भी हो सकता है, लेकिन गुटखा खैनी की वजह से खास करके इस तरह के जो मसाले वाले जो तंबाकू पदार्थ हैं वो उन्हीं जगहों पे होता है जहां पर इसको रखा जाता है खास करके।
2: जी एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो।
4: हाँ जी हेलो।
2: हेलो जी, आपका नाम बताइए और कहाँ से आप बोल रहे हैं बताइए।
4: जी मेरा नाम दिवाकर है और डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार
4: जी सर, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कि आपने बताया कि दांतों में कई प्रकार की तकलीफें हो जाती हैं, हर उम्र में हो रही हैं
1: जी।
4: तो बेसिकली सवाल मेरा ये था सर कि जैसे हम लोग केयर करना चाहते हैं दांतों की, मतलब ऐसे कोई बीमारी जिस चीजें ना आ सके
1: जी,
4: तो अब मतलब एक डॉक्टर एक मेडिकल साइंस क्या कहता है कि हम किस तरह से रोज ब्रश तो कर ही रहे हैं सर, लेकिन कुछ आप थोड़ा हमें वो बताएं जैसे केयर कैसे करें, क्या ध्यान रखना चाहिए जरूरी।
1: जी जी दिवाकर जी
4: सर थोड़ा सा
1: जी जरूर बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहली बात ये, जैसे मैंने अभी बताया तंबाकू का किसी भी तरह से सेवन नहीं करना चाहिए, नंबर एक। नंबर टू, जो ब्रशिंग जो करते हैं सही, मतलब आपको ये याद रखना है कि ब्रश दिन में दो बार करना है, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। और उतना ही नहीं, हर बार जब आप ब्रश करें 2 से 3 मिनट सही तरीके से। कई बार ब्रशिंग तो सब लोग करते हैं लेकिन तरीका गलत होता है, कई बार जोर ज्यादा लगाते हैं, कई बार मंजन का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जरूरी यह है ध्यान रखें कि रेशे जो है ब्रश के मुलायम हो और आप नरम हाथों से अपने हाथों से बहुत ज्यादा दबाव न डालते हुए सही तरीके से ब्रश करें। इसकी सही विधि और प्रणाली होती है जिसको आप अपने दंत चिकित्सक से आप सही तरीके से सीख सकते हैं। तो दिन में 2 बार ब्रश करना है, सुबह और रात को सोने से पहले, और ब्रश जो है टूथब्रश जो है हर 3 महीने में एक बार उसको चेंज करना जरूरी है। और अगर आप समय से पहले आपका टूथब्रश खराब हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आप बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। उसके अलावा एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि आप जब भी खाना खाएं तो खुला जरूर करें और अपने उंगली से, साफ उंगली से आप अपने मसूड़ों को भी थोड़ा मालिश करें। और उसके लास्ट एक और सजेशन ये है, आपका उपाय ये है कि हर 6 महीने से 1 साल के अंदर आपको डेंटल जो दंत चिकित्सक है उनसे जांच, आपके जस्ट एक चेकअप कराना, रूटीन चेकअप कराना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ तरीके नुस्खे हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने मौखिक स्वास्थ्य को सही रखने के लिए।
2: डॉक्टर साहब कुछ एक व्हाट्सएप मैसेजेस भी हम तक पहुंचे हैं। एक लिख रहे हैं जिला लातेहार झारखंड से कॉलेश्वर ठाकुर, कहते हैं तंबाकू पान मसाला जो लोग सेवन करते हैं उन लोगों को खाना खाते समय सब्जी ज्यादा तीखा लगना या भूख कम लगना या हाथ से 4 उंगली मुंह में नहीं जाना है, तो ऐसा मानते हैं कि ये पान तंबाकू खाने से ही हो रहा है।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने सही तरीके के सारे लक्षण जो हैं मेरा काम जो है आसान कर दिया है, सारे सही लक्षण बताए हैं। जो भी तंबाकू का सेवन करता है उनको करारा या फिर तीखा खाना बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज उनके जो अंदर की जो मांसपेशियां हैं वो पतली हो जाती हैं, इसलिए मुंह में छाले बार बार पड़ते हैं। इन लोगों को ज्यादातर पड़ते हैं, उसकी वजह से मुंह में जलन, खाना ना खा पाना, तीखा ना खा पाना और इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं।
2: एक और मैसेज आया है, सुशील ठाकुर लिख रहे हैं, मेरे टूथ में मेरे दांत में सेंसिटिव है।
1: देखिए सुशील जी, ऐसा है कि कई बार ठंडा गर्म लगने के कई कारण हो सकते हैं।
2: ये पान खाते हैं।
1: हाँ, तो पान खाते हैं तो फिर आपको जानना जरूरी ये है कि पान में खुरदरे पदार्थ होते हैं जिसकी वजह से समय से पहले दांत जो है ना घिसना शुरू हो जाते हैं और उसी की वजह से ठंडा गर्म लगता है। सिंपल सी चीज है, जो प्रॉब्लम है उसको अगर हम हटा दें तो ये तकलीफों से हम निजात पा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं हटाएंगे तो इसी तरह से दवाइयों का लेते रहेंगे साथ और फिर बाद में करना उसका भुगतान आप ही को करना पड़ेगा। तो इसीलिए
2: आप सुन रहे हैं रेडियो 102.6 पर और आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर विक्रांत मोहंती जो प्रोफेसर एंड हेड हैं पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री से, मौलाना आजाद मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज न्यू दिल्ली से। सवाल और भी लेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा ट्रैक।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, रेडियो डॉक्टर में एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं आपके साथ और एक और लिसनर हमारे साथ लाइन पर है। हेलो।
2: हेलो
1: जी, आपका नाम बताइए और आपका सवाल पूछिए।
2: नाम मेरा अरुणेश कुमार मिश्रा है मैम।
1: जी,
2: ये बीच बीच में ना मेरे छाले पड़ जाते हैं मसूड़ों में और वो अपने आप फूट जाते हैं, तो डॉक्टर साहब से मतलब क्या कोई टूथपेस्ट वगैरह चेंज करें या फिर कैसे करें?
3: हाँ अरुणेश जी, देखिए अब जो आप कह रहे हैं वो एक बार सही से एक बार जांच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुंह में ऐसे छाले आना या फिर सूजन हो जाना, उसके कई कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले कारण जानना ज़रूरी है, बिकॉज इलाज जो है उसी कारण के हिसाब से ही उसका इलाज होता है। अगर दांत से जुड़ा हुआ तकलीफ है तो फिर हम दांतों का इलाज करेंगे, अगर मसूड़ों में तकलीफ है तो फिर मसूड़ों का अलग से इलाज होगा। अगर ये सूजन और जो ये बन रहा है ये बार बार तंबाकू के खाने के सेवन की वजह से हो रहा है तो फिर उसका इलाज अलग होगा। तो पहले तो कारण जानना जरूरी है, क्योंकि इलाज जो है कारण के हिसाब से ही हम इलाज करते हैं। तो अगर एक ट्रेन्ड सर्टिफाइड दंत चिकित्सक के पास आप जाएंगे तो वो जरूर पहले जांच करेंगे और जांच के साथ साथ सही कारण क्या है उसका कारण के हिसाब से फिर आगे का इलाज करेंगे।
1: जी बिल्कुल सर। उमेश कुमार जी पूछ रहे हैं ख्याला से, ये कहते हैं टीथ में मेरे पेन हो यदि तो उसे निकलवाना चाहिए या फिर नहीं, या दवा से भी वो ठीक हो सकता है?
3: उमेश जी देखिए, ऐसा है कि मैं बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकता। अगेन वापस मैं उसी मुद्दे पे आता हूं कि ऐसी कोई भी चीज मैं रेडियो टॉक शो पे नहीं कहूंगा जो कि मतलब आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले जो निकटतम आपके दंत चिकित्सक हैं उनके पास दिखाएं पहले, बिकॉज मैं यहां से ये नहीं कह दूं कि दांत निकालना है तो नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। दांत निकालना अगर जरूरी है तो निकालना पड़ सकता है, वरना नेचुरल टीथ जो है आपके जो शरीर का जो अंग है वो उसको जितने दिन तक आप बचा के रखेंगे वो आपके काम ही आएगा, चाहे उसका इलाज करवा के, नसों का इलाज करवा के हो ताकि दर्द दूर हो जाए और उसके बाद वो दांत वैसे ही रहेगा, लेकिन वो सारे आपके जो काम जो है जैसे चबाने का हो, मुस्कुराने का हो और ये सब चीजों के लिए वो आपको मदद करेगा।
1: जी, तो जितना ज्यादा आप अपने दांतों को या अपने शरीर को आप स्वस्थ रखना चाहें वो आपके ऊपर है। यदि आप दांतों की या मुंह की सफाई सही तरीके से करते हैं तो आप अपने दांतों को भी बचा सकते हैं और किसी भी तरह की प्रॉब्लम से होने से अपने आप को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं ओरल समस्याओं पर और वो भी तंबाकू खाने की वजह से। तो जैसे कि आपने हमें बताया, लक्षण बहुत सारे बताए आपने, लेकिन इसके अलावा क्या क्या बीमारियां इससे होती है वो भी हम जानना चाहेंगे।
3: जी, ये बहुत जरूरी जानना, बिकॉज तंबाकू एक ऐसा पदार्थ है जिसको खाने से आप मान लीजिए कि आपके सर के बाल से लेके आपके पैर के नाखून तक ऐसा कोई अंग नहीं होगा जो प्रभावित नहीं होगा। जब अगर हम कैंसर की बात करें, शरीर में 10 से ज्यादा किस्मों की कैंसर जो है शरीर में होती है, चाहे वो मुंह का कैंसर तो हमने बात कर ही लिया, चाहे गले का कैंसर आप कहिए, फेफड़ों का कैंसर कहिए, स्टमक कहिए, पैनक्रियास कहिए, आप बस गिनते जाइए, कैंसर की गिनती जो है तंबाकू के सेवन से, मतलब ऐसा कोई अंग नहीं जो बच जाएगा, नंबर वन। तो कैंसर तो एक बहुत मतलब इमीडिएट मैनिफेस्टेशन जो होता है, उसके अलावा फेफड़ों की बीमारी होना, मस्तिष्क में स्ट्रोक होना, दिल की बीमारियां, बिकॉज सिगरेट पीने से दिल की बीमारियों की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो वो होना, फिर किडनी में भी प्रॉब्लम्स होना, तो इस तरह से मतलब शरीर के हर अंग में कहीं ना कहीं तंबाकू का असर पड़ता है, यहां तक कि इम्पोटेंसी भी हो सकती है तंबाकू के सेवन से।
1: जी, तो देखिए आपने तंबाकू, कहते हैं कि तंबाकू बड़ा अच्छा होता है मतलब खाने के लिए, शुरुआत जब करते हैं तो आपको पता नहीं होता लेकिन पहले ये शुरुआत होती है, एक आदत बनती है, फिर जरूरत बन जाती है और उसके बाद आपको लत लग जाती है और आप इसे छोड़ नहीं पाते। लेकिन डॉक्टर साहब, एक डेंटिस्ट किस तरह से इस आदत से निजात दिला सकता है किसी भी पेशेंट को?
3: जी देखिए, सबसे पहले
1: मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लोगों को पता होना चाहिए कि एक डेंटिस्ट भी किस तरह से इसमें मदद कर सकते
3: जी,
1: हैं।
3: जी जी, बहुत जरूरी है कि ये जानना कि देखिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन जनरल आपकी मदद कर सकते हैं और खास करके एक दंत चिकित्सक जो है वो जो है सबसे पहली बात यह है, दंत चिकित्सक जो है छोटे बच्चों से लेके वृद्धावस्था तक सभी को, चाहे वो मेल हो या फीमेल्स हो, वो सभी को वो केटर करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप अपने दंत चिकित्सक को बचपन से लेके बुढ़ापे तक आप मिलते रहते हैं, तो सबसे पहली बात दंत चिकित्सक अपने आप ट्रेंड होते हैं, उनको इन चीजों के बारे में जानकारी होती है और खास करके जब वो चेकअप करते हैं, अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं उनको जरूर बताएं कि आप तंबाकू का सेवन करते हैं और उसी की वजह से आप उनके पास आए, नंबर वन। नंबर टू, एक दंत चिकित्सक आपकी पूरी सब कुछ समझने के बाद वो आपको एक हेल्प कर सकता है, काउंसलिंग और एक डॉक्टर दोनों का मिश्रण है दंत चिकित्सक। वो काउंसिल भी कर सकते हैं, आपको मोटिवेट भी कर सकते हैं और साथ में डेंटल ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं
1: जी।
3: तो उससे डेंटिस्ट जो है ना, दंत चिकित्सक जो है, बहुत कुछ आपको मदद कर सकते हैं जब तंबाकू छुड़ाने की बात आई तो
1: जी। डॉक्टर साहब, इसी बात पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हें लेते हैं हम लाइन पर। हेलो।
2: हेलो
1: जी, कौन बोल रहे हैं सर आप?
2: नमस्कार मैडम, डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम।
3: नमस्कार,
2: रघुविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ, सुभाष नगर नई दिल्ली से।
3: जी जी बताइए
2: डॉक्टर साहब। मेरा सवाल ये है कि मेडिकल साइंस को बहुत एडवांस हो गई है, तो ऐसे में अगर कोई होम रेमेडीज हैं जिससे हमारी ओरल केयर होती रहे और हमारे जो दांत और दाढ़ है वो भी सेफ रहे, कृपया बताने का कष्ट करें।
3: जी जी जी चड्ढा जी, देखिए एडवांसमेंट तो बहुत हुई है लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो आज तक हम वही हैं और उसी के हेल्प लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि ब्रशिंग करने, जब आप टूथब्रश सेलेक्ट करते हैं हर उम्र के लिए अलग अलग, मतलब बच्चों के लिए और बड़ों के लिए अलग अलग टूथब्रशेस आती हैं, तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि अलग किस्म के टूथब्रश खरीदें और टूथब्रश से ही आप उतना जितना मिनिमम चाहिए आप उतना करिए, क्योंकि इतने से ही आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। नंबर वन, दो टाइप के टूथब्रश हैं और पेस्ट भी बच्चों के लिए अलग किस्म के आते हैं और बड़ों के लिए अलग किस्म के आते हैं, ये भी ध्यान रखिए। पेस्ट बहुत जरूरी है, किसी भी व्हाइट कलर का पेस्ट जो भी होता है, प्रेफरेबली जेल ना हो लेकिन आप जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पेस्ट का सिलेक्शन भी बहुत जरूरी है। और तीसरा यह है जो आप जीभ साफ करते हैं, टंग क्लीनर जिसको हम बोलते हैं, इन तीन चीजों से ही आप एक मिनिमम, मतलब एक बहुत स्वस्थ मौखिक स्वास्थ्य का आनंद उठा सकते हैं। साथ में अगर आप इसमें जोड़ दें रेगुलर डेंटल चेकअप, तो इन चार चीजों से, और आप जो हेल्दी खाना खाते हैं, जो बैलेंस डाइट होता है या फिर आप कहिए जो पौष्टिक आहार होता है, इन चार पांच चीजों को लेके आप अपने मौखिक स्वास्थ्य और पूरे शारीरिक स्वास्थ्य को भी आप बरकरार रख सकते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, एक मैसेज हम तक और पहुंचा है, ये लिख रहे हैं केडी त्रिपाठी रांची से, इन्होंने अपनी उम्र बताई है 74 वर्ष। कहते हैं दो दांतों के बीच में जगह हो गई है और वहां पर खाना फंसता है, रबड़ जैसा मटेरियल से इसको भरा गया था लेकिन ये निकल जाता है, क्या करना चाहिए?
3: जी त्रिपाठी जी, ऐसा है, सबसे पहले एक बार फिर देखना पड़ेगा कि कितना जगह बना हुआ है। उम्र के साथ साथ जैसे हमारे पूरे शरीर में चेंजेस आती हैं तो हमारे दांतों के भी

0: होते हैं जो एज रिलेटेड होते हैं, और कई बार कोशिश ये होती है एज ए डेंटल प्रोफेशनल हमारी होती है कि उसको जितना ज्यादा फंक्शनल या फिर जितना जितना दिन तक हम उसको रख सके ताकि वो अपना सारा काम, दांत जो है अपना सारा काम निभा सके। लेकिन अगर आप ऐसा लगता है कि जगह बहुत ज्यादा है और बार बार भरने के बाद भी अगर उसका उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो फिर हमें और कुछ और तरीके ढूंढने पड़ेंगे। तो वो प्रिफरेबली यही होगा कि आप लोकल अपने डेंटिस्ट के पास जाएं जो ट्रेन्ड और स्पेशलिस्ट हों, और उनसे खास करके ये ये जांच करवाना बहुत जरूरी है कि इसका इसके अलावा और क्या इलाज हो सकता है।
1: सर डॉक्टर साहब, ऐसा ही एक सवाल सोनू ने भी पूछा है उत्तर प्रदेश से। इनका इनकी उम्र है 35 साल। इन्होंने भी यही कहा कि खाना फंस जाता है लेकिन ब्रश करने के बाद भी नहीं निकलता, तो क्या ये जो गैप है ये अपने आप फिल हो जाते हैं या इसके लिए मतलब कैसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं?
0: देखिए सोनू जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि हमारे एज पर जो डेटा जो कहता है, जो जो आंकड़े जो कहते हैं, वो कहते हैं ऑलमोस्ट 70 से 80% लोगों में मसूड़ों की बीमारियां होती हैं। ये दांतों में जो गैप आना शुरू होता है ना, ये खास करके मसूड़ों की बीमारियां जो है ना, शुरुआती लक्षण वही होते हैं कि मसूड़ों की बीमारियों से फिर उसकी हड्डी गलना और फिर दो दांतों के बीच में जगह बन जाना, तो उसकी वजह से वहां पर खाना फंसना शुरू हो जाता है। जब एक बार फंसना शुरू होता है उसके बाद अगर नहीं निकलता, तरीका यह है कि डेंटल दंत चिकित्सक के पास जाएं, उसकी सफाई करवाएं। बट उसके अलावा जैसे आप वापस आते हो और रूटीन में आप रहते हो तो कई बार फंसता है, तो आप लोग टूथपिक का इस्तेमाल करते हो, तो जरूरी यह है कि इस तरह के जो उपकरण हैं जैसे टूथपिक रेगुलर, बहुत ज्यादा
1: पिन की भी
0: इस्तेमाल करते हैं, पेंसिल पेन कुछ भी डालते हैं, तो ध्यान रखना है कि इन सब चीजों को यूज ना करें, इस्तेमाल ना करें और अपना डेंटल चेकअप कराते रहें। उसके अलावा जरूरी यह है कि रेगुलर ब्रशिंग और मेंटेनेंस की बहुत जरूरी है ओरल हाइजीन की।
1: जी, एक कॉलर लाइन पर है। हेलो,
2: नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, आपका नाम बताइए।
2: सर को भी नमस्कार
0: जी। नमस्कार नमस्कार
2: जी, मैं यामिन भाई रेडियो वाला सिरोड़ी लोनी भी लगा जो।
1: जी पूछिए आपका सवाल।
2: सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ मैम कि जैसे कि हम पानी नहीं खाते, तंबाकू इस्तेमाल नहीं करते, गुटखा इस्तेमाल नहीं करते, तब भी हमारे दांत पीछे से लाल क्यों रहते हैं?
0: जी लाल रहते हैं। कुछ और आप कुछ खाने पीने में कुछ और ऐसा कुछ करते हैं?
2: नहीं नहीं कुछ नहीं लेते जी।
0: अच्छा ठीक है, फिर वही मेरा सुझाव यही रहेगा आपको कि आसन जी आप ना एक आसपास के जो निकटतम डेंटल चिकित्सक हैं उनसे जरूर जांच कराएं। खाने के पदार्थ में भी हम जो खाना खाते हैं ना उसमें भी रंग होता है और उसकी वजह से भी हमारे दांतों पर रंग चढ़ सकता है, तो जरूरी यह है कि जानना कि अगर कोई कारणवश अगर है और सालों के बाद, जैसे आप अपना उम्र कह रहे हैं, सालों पे हम जितना साल हम खाना खाते हैं उसके ऊपर इस तरह के भी चेंजेस आते हैं, जैसे मैं कह रहा था समय उम्र के साथ जो चेंजेस पूरे शरीर में आते हैं दांतों में भी आते हैं, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि ये एज रिलेटेड या फिर उम्र के साथ चेंजेस है या फिर इसके अलावा कुछ और कारण भी हो सकता है, तो चेकअप के बाद ही पता लगेगा।
1: जी, एक मैसेज आया है आलोका का, 52 ईयर्स की हैं और कह रहे हैं कि ठंडा गर्म दांतों में लगता है, दांतों के ऊपर कुछ कैविटी से भी लगती है, इसके लिए प्लीज सजेस्ट करें कि क्या है।
0: आलोका जी, कई बार ऐसा होता है कि ठंडा गर्म लगने के, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ शो पे, कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसमें एक कारण जो है दांतों में सड़न होना। तो दांतों में सड़न होने की वजह से जैसे आप कह रहे हैं कैविटी हो गया, कैविटी होने की वजह से वहां खाना फंसना शुरू होता है और उसकी वजह से भी ठंडा गर्म लगना शुरू होता है। सबसे पहली बात यह, अगर आपको लगने लग गया है कि खाना फंस रहा है, कैविटी हो गया है, ठंडा गर्म लग रहा है, तो आप जल्द से जल्द जाके उसका इलाज कराइए। क्यों, अगर लेट करेंगे तो ये जो कैविटी है या जो जो जो सड़न की वजह से जो गड्ढा बन गया दांत में वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा और उसकी वजह से दांत शायद पूरा टूट भी सकता है, तो इसलिए जरूरी है समय रहते हुए इसका इलाज कराना जरूरी है।
1: जी सर, एक मैसेज और आया है हम तक, लिखने वाले हैं चैंप सिंह बरमार से। वो पूछ रहे हैं कि मेरे दांतों में मैंने मसाला भरा हुआ है लेकिन कैप नहीं लगाई है, इससे कुछ परेशानी तो नहीं होगी? लेकिन साथ ही ये भी कहना चाह रहे हैं कि दांत का मतलब दाढ़ है और वो एक दांत दाढ़ सही हो गई है लेकिन दूसरे पास के दांत में दिक्कत हो गई है।
0: ओके ओके, देखिए ऐसा हो सकता है कि जो आप वो कह रहे हैं मसाला भरवाया, सबसे पहले जानना जरूरी ये है कि उनमें नसों का इलाज हुआ है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें दांतों के नसों का इलाज होता है और सफाई होके सड़न जब फैल जाती है तो उसकी पूरी सफाई होती है और पूरा मसाला भरा जाता है। और जब ऐसे दांतों में जब हम लोग पूरे दांत को बचाते हैं, ये खास करके दांतों को बचाने के लिए किया जाता है कि दांत अपनी जगह पे रहें लेकिन उसमें कोई जान ना रहे, लेकिन वो सारे फंक्शंस वो कर सकें जो एक नॉर्मल दांतों करना है। लेकिन इस दांत में क्योंकि कोई न्यूट्रिशनल सप्लाई नहीं है तो ये दांत जो है इसमें पानी का प्रभाव भी कम, पानी मतलब यू नो वाटर कंटेंट भी कम हो जाता है ओवर द इयर्स, और ये थोड़े ब्रिटल हो जाते हैं, मतलब टूटने की संभावना ज्यादा होती है।

0: आपका नाम बताइए और आपकी समस्या बताइए।
1: मेरी जगजीत सिंह नाम है, मेरे दांत नकली लगे हुए हैं।
0: ओके
1: हाँ जी, इनसे पूछना है कि रात को लगा के सोएं या कुछ, अब दिक्कत करने लगे, 8 साल हो गए इनको लगे हुए। दांत बिल्कुल ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, साफ सुथरे हैं, मगर खाने में अब दिक्कत होने लगी है, कभी दर्द होने लग जाती है।
2: ओके, तो जगजीत जी आपके क्या पूरे दांत लगे हैं या फिर कुछ ही
1: पूरे?
2: दांत
1: दोनों बिल्कुल, दोनों दांत लगे हैं, 8 साल हो गए, बिल्कुल साफ है दांत, बिल्कुल चमकदार, फर्स्ट क्लास, कोई नुक्स नहीं दांतों में।
2: अच्छा,
1: मगर लगाने में ना डॉक्टर साहब कभी महीने महीने के बाद साइड के जो अकेली दांत होते हैं ना, इनमें दबाने में बड़ा दर्द होने लग जाता है, कोई हड्डी सी आ जाती है, पता नहीं क्या होता है उसके नीचे, बहुत दिक्कत हो जाती है।
2: ठीक है जगजीत जी, इसके इलाज हैं, इसका आप एक बार ना सबसे पहले जिनसे आपने बनवाया है उनके पास आप दोबारा जाएं और उनको दिखाएं। डेंचर के नीचे भी कई बार कुछ चेंजेस, आप मसूड़ों के ऊपर भी जिसके ऊपर आपका डेंचर रहता है, जो नकली दांत रहता है ना, वो वहां पर भी छाला भी पड़ सकता है। तो एक बार उनको चेकअप करने दीजिए, एक बार देखने दीजिए वहां पर कोई हड्डी का टुकड़ा तो नहीं है। अगर वो पूरी तरह से जांच कर लेंगे और अगर उनको लगता है कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तकलीफ नहीं है, तो फिर वो जो नकली दांत है उसमें भी अंदर से रीलाइनिंग जिसको कहते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज जो मैं कह रहा हूं, ये जांच के बाद ही डिसाइड होगा कि क्या तकलीफ, कारण क्या है, उसके हिसाब से आपका इलाज किया जाएगा।
0: जी, तो हमारे सभी लिसनर्स लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए भी और फोन कॉल्स के जरिए भी। आज की हमारा जो विषय है वो है ओरल प्रॉब्लम्स ड्यू टू टोबैको यूज। यदि आपका भी इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे आज के गेस्ट हैं डॉक्टर विक्रांत मोहंती, प्रोफेसर एंड हेड पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। तो अब वक्त हो गया है एक डॉक्टर साहब की पसंद के गीत को सुनने का।

0: मैं सबसे पहले ना वर्ल्ड हेल्थ जो विश्व विश्व स्वास्थ्य परिषद है WHO जो है वो पिछले 1987 से एक मुहिम के उद्देश्य से एक थीम निकालते हैं
1: जी.
0: और इस थीम पे पूरे साल भर काम किया जाता है. जितने भी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं जितने भी संस्थाएं तंबाकू नियंत्रण के लिए काम करती हैं उनके लिए एक एक उनको एक विषय मिलता है जिसपे वो लोग मिलके जुट एकजुट होके इस तरह से काम करते हैं. खास करके देखिए आज हमारे देश में करीब 3,500 से 4,000 लोग हर दिन तंबाकू के सेवन के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रकोप से उनका निधन हो रहा है.
1: बिल्कुल
0: डेथ हो रहा है
1: जी.
0: और जब इतने लोग मर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये टोबैको के यूजर्स हैं जो ये मर रहे हैं.
1: बिल्कुल.
0: और इंडस्ट्री को क्या चाहिए कि उनको नए नए उनको कस्टमर्स मिलने चाहिए
1: जी.
0: उनको और सेवन करने वाले लोगों
1: लोग
0: को
1: मिलने
0: चाहिए. तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि कैच देम यंग. तो प्रिंसिपल है कैच देम. जो बच्चे उनको एक्सपोज करते हैं आए दिन सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं सैंपल्स फ्री सैंपल्स बांटते हैं स्पॉन्सरशिप्स देते हैं स्टेशनरी बिकता है. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बच्चों को रुझाने के लिए किया जाता है. और बच्चे जो हैं पीयर प्रेशर बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और खास करके पीयर प्रेशर एक और चीज है. और साथ में रोल मॉडल्स हैं जिनको वो लोग काफी स्क्रीन्स पे देखते हैं जिनसे काफी इन्फ्लुएंस होते हैं. और वो सारे तरीके से एक एनवायरनमेंट है और खास अपने ही आसपास लोगों को देखते हैं कि वो लोग सिगरेट बीड़ी खैनी खा रहे हैं उससे उनको इन्फ्लुएंस होता है. तो ये इंडस्ट्री जो है खास करके किसी एक रूप में नहीं है कई रूपों में बच्चों के इर्द गिर्द है जो हमें पता भी नहीं लगता कब इनको इन्फ्लुएंस करते हैं. और इसलिए जरूरी यह है कि हम बच्चों को बचाए रखें और उनको समझाएं कि इस तरह की आदतों से आज नहीं पूरे जिंदगी भर दूर रहना है.
1: बिल्कुल रहना है. और लेकिन इस वक्त हम एक कॉल से दूर नहीं रह पा रहे. कॉल बहुत देर से हमारे लिसनर वेट कर रहे हैं. तो हेलो.
2: हेलो नमस्कार.
1: नमस्कार जी.
2: मैं जितेंद्र दोसार से ग्राम तहसील खैर जिला हरिगढ़ यूपी वेस्ट से
1: आपका सवाल
2: पूछिए. तीन सवाल है. पहला सवाल तो मेरा ये है जैसे तम्बाकू का सेवन करते हैं
0: जी
2: आपने देखे होंगे कैंसर का रिजल्ट आते हैं
0: जी
2: चांस अधिकतर बढ़ जाते हैं
0: जी.
2: इस पे क्या कहना चाहेंगे
0: जी.
2: अब यूं तो बोलते हैं कि तम्बाकू एल्कोहल यूज नहीं करें इन पे पाबंदी लगा दी जाए तो फिर यूज कहाँ से करेंगे
0: जी. बहुत बहुत नेक सोच है आपका और बहुत जरूरी सवाल भी है कि देखिए कैंसर तो होना जो है ना संभव तो जो तंबाकू का सेवन करते हैं जो शराब का सेवन करते हैं इन सब में ऑटोमेटिकली कैंसर होने की संभावना या बाकी शारीरिक बीमारियों को होने की संभावना हम कई गुना बढ़ा देते हैं. ठीक है नंबर वन. नंबर टू ये है कि अगर हम कैंसर होने वाला है तो इसको पाबंदी क्यों नहीं करते. क्योंकि ऐसा सवाल है जिसका शायद हम एक डायरेक्ट एक सोल्यूशन नहीं है क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं है. लेकिन इसको जितना ज्यादा हम रोकेंगे उतना बेहतर होगा सभी के लिए आने वाले पीढ़ी के लिए भी.
1: जी बिल्कुल. और ऐसा ही डॉक्टर साहब एक और सवाल हम तक पहुंचा है. कहते हैं खाना खाते समय गाल का अंदरूनी भाग कभी कभी कट जाता है क्या ये दांत या दाढ़ की वजह से होता है और साथ साथ रात को गर्म या ठंडा पानी कौन सा पीना चाहिए कि दांत हमारे स्वस्थ रहें. लिख रहे हैं मनोहर लाल गांधी चाणक्य चौक गाजियाबाद से.
0: जी मनोहर जी थैंक यू. ये धन्यवाद आपके सवाल का. सबसे पहली बात गाल के अंदर अगर बार बार दांतों के बीच में अगर गाल आ रहा है तो कई बार ऐसे दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं और उनकी बनावट ऐसी होती है कि वो बहुत नुकीले भी होते हैं. तो इन नुकीले दांतों की वजह से गाल पे इस तरह से कट या फिर छाला होने की संभावना या चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है. सबसे पहले इसकी जांच कराएं. कई बार दंत चिकित्सक क्या करते हैं कि उन जो दांत बहुत नुकीले हो गए हैं उनको थोड़ा सा उसकी इलाज करके उसको कम नुकीले बना देते हैं. उससे जो है असर पड़ना इस तरह का होने की संभावना कम हो जाती है. और दूसरा सवाल क्या था आपने पूछा था उनका.
1: उन्होंने यही पूछा था कि
0: मतलब पानी किस तरह का पानी रात को किस तरह से पीना चाहिए. जी जी जी. ऐसा देखिए कोई भी चीज एक्सट्रीम में ना करें तो बेहतर होगा. गुनगुना पानी लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक्सट्रीम ठंडा पानी या एक्सट्रीम गर्म पानी ना लें और नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है जो आम तरीके से नॉर्मल टेम्परेचर पे जो पानी है उसका सेवन जरूर करें.
1: जी डॉक्टर साहब आजकल हुक्का पीना या ई सिगरेट या खासतौर पे यूथ में ये वेपिंग बहुत ही आम हो गया है या अभी आम भी नहीं हुआ है लोग समझ भी रहे हैं लेकिन उसके बावजूद बच्चों में बहुत पॉपुलर है
0: जी.
1: तो क्या आपको लगता है कि लोगों के बारे मन में ये मिथ है या ये एक्चुअल में है कि इसमें तंबाकू नहीं होता.
0: जी देखिए, ये सब इंडस्ट्री के टैक्टिक्स हैं। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना चाहूंगा इस पे कि जो वेपिंग जो आपने कहा, ये बेसिकली ई सिगरेट, इसको हम एंड्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम्स। तो ये जो निकोटीन डिलीवरी, निकोटीन क्यों? क्योंकि निकोटीन जो है ना, जो तंबाकू आज हम लोग जो खाते हैं, जो लोग खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं या फिर गुटखा खैनी खाते हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पदार्थ होता है, वैसे तो उसमें से 400 से अधिक ऐसे हानिकारक पदार्थ हैं, बट सबसे ज्यादा एडिक्टिव जो सब्सटेंस इन सब में है, टोबैको में है, वो है निकोटीन। वो इतना एडिक्टिव है कि वो आपका शरीर जो है, जो ब्रेन जो है, वो उस पर डिपेंडेंट हो जाता है, और पूरा जब तक वो नहीं होता तब तक उसकी सर्किट कंप्लीट नहीं होती। तो सबसे पहली बात, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री ने निकोटीन के नए नए तरीके डिलीवर करने के तरीके बनाए, जिसमें से वेपिंग एक चीज है।
1: तो आज की डेट में, आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत जरूरी है कि जो यूथ है हमारा, वो इस बात को समझे कि चाहे वो हुक्का पीना हो या फिर ई सिगरेट हो और या फिर वेप हो, ये कहीं से भी अच्छी चीज नहीं है और आपको बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई सिगरेट्स, वेपिंग, हुक्का, इन सब जो ई हुक्का है, इन सब को बैन कर रखा है 2019 से। और अगर हम ये मिल रहे हैं तो ये इलीगल तरीके से मिल रहे हैं, अदरवाइज दीज हैव बीन बैन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अक्रॉस द होल कंट्री।
1: और मुझे लगता है समय जो यूथ हमें सुन रहा है ना, वो बहुत ही इंस्पायर होगा हमारे डॉक्टर साहब की इस बात से, और साथ में उस गाने से जो अगला हम आपको सुनाने वाले हैं हमारे डॉक्टर साहब की पसंद का।

0: रेडियो डॉक्टर में एक बार फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं ओरल प्रॉब्लम्स ड्यू टू टोबैको यूज। डॉक्टर साहब, 31 मई को नो टोबैको डे मनाया जाता है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए,

0: से ही एक लिसनर हमें याद कर रहे हैं, उनके कॉल लग गई है, तो जानते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो।
1: हाँ नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी।
1: हाँ डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
2: जी नमस्कार।
1: हाँ सर, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ, करमपुरा। उम्र मेरी 48 वर्ष है
2: जी।
1: और सवाल मेरा ये है सर कि मैंने अपनी लाइफ में गुटखे का सेवन किया हुआ है। जो मेरे फ्रेंड्स उन्होंने एडवाइस मुझे यूं किया कि अगर आप गुटखा खाते हो तो एक तो ये माउथ फ्रेश औषधि होती है मेडिसिन, इससे मुंह से बदबू कभी नहीं आएगी, दांतों में कीड़े कभी नहीं लगेंगे, इससे तेजाब होता है तो कभी मुझे इससे कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं। और साथ में माइंड फ्रेश औषधि भी होती है, अगर मैं इसको खाता था तो दिमाग से मेरे सिर दर्द जो होता है वो भी मतलब कुछ गायब हो जाया करता था, और अगर मैं कोई चीज पढ़ता था सुनता था तो एक ही बार में उसको कंठस्थ कर लेता था। पर फिर कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए, मेरे को ये छोड़ना पड़ा, मैंने छोड़ दिए। तो जब वे होते हैं नेगेटिव है तो फिर इसको या तो मार्केट में अगर हम खाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, और अगर हर्ज है तो फिर थोड़ा सा इसे प्रकाश डाले। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो हम ये माउथ वॉश यूज करते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं कि हफ्ते में या 15 दिन में कितने मर्तबा।
0: जी राजेंद्र जी, बिल्कुल आपके दोनों ही सवाल बिल्कुल जायज हैं और डॉक्टर साहब आंसर दे रहे हैं।
2: जी थैंक यू सो मच राजेंद्र जी। देखिए सबसे पहली चीज ये है, गुटखा जो है इंस्टेंट जो आपको लगता है, जो आपको लग रहा था, ये सब चीजें लग सकती हैं शुरुआती में, लेकिन जैसे जैसे हमारा शरीर इसका आदि हो जाता है तो इसको उसके अलावा और कुछ सूझता नहीं है। तो सबसे पहले ही जानना जरूरी है, देखिए गुटखे का सेवन आप जरूर करते हैं लेकिन आप उसका असर किस किस चीजों पर डाल रहे हैं। आप उसको थूकते होंगे तो उसकी वजह से थूकने से एक तो गंदगी भी होती है और दूसरा जो है

0: यहां तक इन्फेक्शन भी फैल सकता है। उसके अलावा आप जो बोल रहे हैं कि इससे आपको बहुत सारी यू नो पॉजिटिविटीज थी, लेकिन वो पॉजिटिविटी थोड़े दिनों की मेहमान है, इसके आगे नेगेटिव हो सकता है। दूसरी चीज आपने पूछा माउथ वॉश के बारे में, तो माउथ वॉश के बारे में बता दूं कि माउथ वॉश रूटीन यूज में हमें डायल्यूशन मतलब पानी मिला के ही करना चाहिए। बहुत लंबे समय तक माउथ वॉश का इस्तेमाल ना करें, डेंटिस्ट के परामर्श के हिसाब से ही माउथ वॉश इस्तेमाल करें, वो आपसे बेहतर होगा और वो उनकी सुपरविजन में रहेगा, तो आप का इलाज और उसका जो असर पड़ता है वो भी बेहतर होगा।
1: बिल्कुल। तो आज हमारे साथ हमारे बहुत सारे लिसनर्स जुड़े हैं जिन्होंने हमें कॉल्स भी की, व्हाट्सएप भी की, लेकिन डॉक्टर साहब एक वक्त बहुत थोड़ा बचा है हमारे पास, लेकिन एक सवाल कुल बुलाकर मेरे सामने आ रहा है। वो पूछ रहा है कि यदि तंबाकू हम छोड़ देते हैं तो छोड़ने के बाद भी क्या कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं या कुछ एक सिम्टम्स होते हैं जो प्रॉब्लम होती हैं?
0: जी जी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, बिकॉज तंबाकू का सेवन जैसे हम समय लेके चढ़ता है शरीर में, उसी तरह से निकलते वक्त भी वो अपना असर इतना आसानी से छोड़ता नहीं है। तो इसको हम लोग एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स कहते हैं, जिसको हम लोग विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। जब तंबाकू का सेवन जब आदमी कोई भी अगर छोड़ता है तो सबसे पहले मिनिमम एटलीस्ट 2-3 weeks तक उसके अंदर कुछ विड्रॉल सिम्टम्स दिखती है। सबसे पहले जैसे क्रेविंग होती है, क्रेविंग का मतलब ये होता है उसके अंदर अर्ज, मतलब उसके अंदर इच्छा होती है कि अब जब छोड़ दिया है, हाँ जरूरत है अभी इमीडिएटली मैं कुछ उठा के या तो बीड़ी पी लूं, सिगरेट पी लूं या गुटखा खा लूं, तो उसको वो अर्ज होती है। तो वो अर्ज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसको दवाइयों से हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। तो काफी सारी दवाइयां हैं जो डेंटल प्रोफेशनल भी दे सकते हैं, अदरवाइज मेडिकल प्रोफेशनल भी दे सकते हैं इन इस क्रेविंग को एड्रेस करने के। इसके अलावा बेचैनी होना, शॉर्ट टेम्पर, गुस्सा आना ना, प्यास लगना बहुत ज्यादा, या फिर गले में कुछ फंसा हुआ लगना, तो इस तरह की जो जितने भी विड्रॉल सिम्टम्स हैं ये सब 3-4 हफ्ते रहती हैं। इसके लिए आपको कुछ बेसिक स्ट्रेटजीज जैसे काउंसलिंग आप ले ही रहे हैं, फैमिली सपोर्ट, क्योंकि अगर आप छोड़ने की कोशिश कर रहे, एक अच्छी आदत है ये, तो आपके फैमिली के और दोस्तों की सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। उसके अलावा दवाइयों का सपोर्ट, और खास करके खुद समझें, आप जब तक इसको अपने आप इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, आप अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई नहीं करेंगे, और ऐसे चीजों का जैसे आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जैसे हम व्यायाम की बात करते हैं, पौष्टिक आहार की बात करते हैं, अच्छे नींद मतलब स्लीप प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, सही से सोना, 7-8 घंटे सोना, और एक्सरसाइज करना, और बहुत जरूरी एक्सरसाइज करना, इन सब 4-5 चीजों की तरफ अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो शरीर तो तंबाकू के सेवन से खराब होना ही है। तो आप ये देखें, ये लेके चलिए कि एक डेंटल प्रोफेशनल, एक दंत चिकित्सक जो है आपकी मदद कर सकता है, आप उनसे अपने प्रॉब्लम जो तकलीफ है उसको शेयर करिए और वो सही तरीके से आपको गाइड करेंगे इस चीज से निजात पाने के लिए।
1: जी, तो आज का हमारा जो विषय था वो था ओरल प्रॉब्लम्स ड्यू टू टोबैको यूज, और हमारे बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर विक्रांत मोहंती, प्रोफेसर एंड हेड मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज से हमारे साथ जुड़े और उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया। तो आज डॉक्टर साहब आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका भी।
1: जी थैंक यू सो मच। और इसी के साथ रश्मि लेती है आपसे इजाजत रेडियो डॉक्टर से। यदि आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे ईमेल आईडी के जरिए। हमारी ईमेल आईडी है healthairdelhi, यानि कि healthairdelhi@gmail.com पर आप अपना फीडबैक देख सकते हैं, और किस विषय पर आप रेडियो डॉक्टर सुनना चाहते हैं आप वो विषय भी हमें लिखकर भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू, धन्यवाद।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो, जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
6: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर

0: सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: तेरी बोली तेरी तेरी ची नजर में है जादू।
6: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
5: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
6: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बालार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में तेजी आएगी। उन्होंने आज कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि सशस्त्र सेनाएं राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमता से लैस किया जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांव तक पहुंचाना है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर में अमरीकी कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे पैट हैरिगन के साथ बातचीत की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि इस बातचीत ने भारत अमरीका रक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा सहयोग विस्तार और हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार शानदार श्रोताओं, नए प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका आरजे चेतन और आज हम एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, हर परिवार का हृदय, सकारात्मक माता पिता, बच्चे का संचार। अरे चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, घर के कामकाज निपटा रहे हो या बस फुर्सत में हो, आइए बात करें कि कैसे संचार आपके परिवार में चीजों को पूरी तरह से बदल सकता है। दोस्तों आइए अब छोटों के साथ अपने संबंधों में प्रभावी संचार के जादू की खोज के लिए एक यात्रा शुरू करें। इसकी कल्पना करें एक ऐसी दुनिया जहां आपके बच्चों के साथ आपकी बातचीत एक अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया नृत्य की तरह होती है, जो कि एक सकारात्मक और मजबूत संबंध बनाती है। इस एपिसोड में हम ये विश्लेषण करने जा रहे हैं कि माता पिता बच्चों के बीच संचार क्लिक को क्या गतिशील बनाता है। ये सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है, ये समझ, विश्वास और प्यार का ताना बाना बुनने के बारे में है। सकारात्मक माता पिता बच्चों के संचार के रहस्यों का उजागर करेंगे, ये पता लगाएंगे कि यह पूरे परिवार के लिए कैसे माहौल तैयार करता है। एक ऐसे घर की कल्पना करें जहां हर कोई सुना, महत्व और जुड़ाव महसूस करता हो। जैसे ही हम पारिवारिक गतिशील पर संचार के प्रभाव को देखते हैं, हमें पता चलेगा कि कैसे हमारे बात करने के तरीके में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों हम यही नहीं रुक रहे हैं, यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है। हम आपको आपकी दैनिक बातचीत में कनेक्शन के उस अतिरिक्त स्पर्श को शामिल करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों से लैस करेंगे। इस आरामदायक माहौल की कल्पना करें जहां आपके बच्चे जानते हैं कि उनके विचार मायने रखते हैं और उनकी आवाज परिवार के मिश्रण में गूंजती है। ये सिर्फ उन पर बात करने के बारे में नहीं है, ये समझ और समर्थन की इस गर्माहट को बुनने के बारे में है। सबसे अच्छे समय में पालन पोषण करना एक कठिन काम है, यह समय लेने वाला भी है। पालन पोषण में कई जिम्मेदारियां शामिल होती है, जैसे बच्चों की देखभाल करना, उन्हें वह सिखाना जो उन्हें जानना आवश्यक हो और जीवन भर उनका मार्गदर्शन करना। माता पिता बच्चे का रिश्ता एक अनोखा बंधन है जो एक वयस्क और उनके बच्चे के बीच मौजूद होता है। जहां एक वयस्क अपने बच्चे की जरूरत की देखभाल करने और उनके वयस्क होने पर मार्गदर्शन प्रदान करने की जिम्मेदारी लेता है। एक अच्छा माता पिता बच्चे के रिश्ते या जहां बच्चा प्यार, स्वीकार्य और सुरक्षित महसूस करता है। एक अच्छे माता पिता वो होता है जो बच्चों की भावनाओं को सुनता है, अपने बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहता है और शारीरिक दंड भी भयानात्मक शोषण नहीं करता है। आदर्श रूप से वो बच्चे को तलाशने की विकसित होने के लिए एक सुरक्षित आश्रम प्रदान करते हैं। वे माता पिता को बिना शर्त समर्थन, मार्गदर्शन, अनुशासन और प्रोत्साहन के माध्यम से सिखाने और प्यार दिखाने का अवसर भी प्रदान करता है। माता पिता बच्चे के रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वह प्यार और विश्वास है जो माता पिता का अपने बच्चों के लिए होता है। यही चीजें उन्हें जिम्मेदार वयस्कों के रूप में विकसित होने में मदद करती है जो बड़े होकर अच्छे नागरिक बनेंगे। बदलते दौर में पारिवारिक रिश्ते काफी कमजोर होने लगे हैं। अमूमन लोग इसके पीछे तरह तरह की वजह बताते हैं, लेकिन रिश्ते के कमजोर होने के पीछे एक मुख्य कारण होता है आपसी कम्युनिकेशन की कमी। दरअसल आज के समय में हर कोई अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए, अपने सबसे करीबी रिश्तों को समय दे नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण न तो वह एक दूसरे की समस्याएं व मन में चल रही

परेशानियों को समझ पाते हैं और ना ही साथ में वक्त बिताने से मिलने वाली खुशी का एहसास हो पाता है। इतना ही नहीं, आपसी कम्युनिकेशन की कमी के कारण आपस में गलतफहमियां पैदा होती है और इससे भी रिश्ते कमजोर होकर बिखरने लग जाते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि फैमिली कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि जब हर कोई अपने काम में इतना व्यस्त है तो ऐसे में फैमिली कम्युनिकेशन को बेहतर किस तरह बनाया जाए। इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप कुछ छोटे छोटे टिप्स बनाकर ऐसे बेहद आसानी से कर सकते हैं। हो सकता है घर के हर सदस्यों के काम करने का समय अलग है, ऐसे में हर किसी के लिए एक साथ समय निकाल पाना काफी मुश्किल होता है। इसीलिए आप अपने घर में एक नियम तय कर सकते हैं जिसमें दिन के 3 मील से कम एक मील साथ खाएं। इससे आप सभी कुछ वक्त साथ बिताने और फैमिली कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगा। बच्चे की देखरेख करते हुए माता पिता भी काफी कुछ सीखते हैं। भले ही आप अपने बच्चे को कितना भी प्यार करते हो या फिर अपने उसे सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश की हो, लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन के दौरान गलतियां करते हैं तो इससे बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स किसी भी रिश्ते को बेहतर बनाने में एक ब्रिज की तरह काम करती है। अगर ब्रिज कमजोर होता है ऐसे में रिश्ते अधूरे ही रह जाते हैं। इसीलिए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि माता पिता अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर लगातार काम करें। आप भले ही कितने अच्छे या मॉडर्न पेरेंट हो, लेकिन अगर आप कुछ कम्युनिकेशन मिस्टेक्स करते हैं तो इसका इफेक्ट बच्चों को भुगतना पड़ सकता है। वन साइडेड कम्युनिकेशन इज अ मिस्टेक जिसे अधिकतर पेरेंट्स बार बार दोहराते हैं। अमूमन पेरेंट्स अपनी बात तो बच्चे से कह देते हैं, लेकिन अगर बच्चा कुछ कहना चाहता है तो उसकी सुनते ही नहीं। कई बार हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं या फिर इसे डांट कर चुप कर देते हैं। ऐसा करने से बच्चों को अपने ही घर में काफी अकेला महसूस करने लगता है। कई बार पेरेंट्स जब बच्चे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत अजीब जजमेंटल हो जाते हैं। टिप्पणियों से बच्चे आलोचना महसूस करेंगे, ऐसे में वो प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और इससे बहस शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, कभी कभी बच्चा ये भी सोचने लगता है कि पेरेंट्स उसके बारे में गलत ही सोचते हैं। ऐसे में वो और भी ज्यादा गलत हरकत करना शुरू कर देगा। एक पेरेंट्स के रूप में आपको कभी भी अपने बच्चे से या फिर बच्चे के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये देखा जाता है कि जब कभी बच्चा जिद करता है तो पेरेंट्स उसे शांत करने के लिए झूठा वादा करते हैं, बाद में मुकर जाते हैं जिससे बच्चे को काफी बुरा लगता है। इतना ही नहीं, इस तरह आप बच्चे के सामने एक गलत उदाहरण भी पेश कर रहे हैं। इससे बच्चे को लगता है कि किसी भी मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने के लिए झूठ बोलना सही है। धीरे धीरे बच्चा हर छोटी छोटी बात पर झूठ बोलना शुरू कर देता है। अक्सर अपने पेरेंट्स से वह बॉन्डिंग नहीं बन पाती है जो वास्तव में उसके बीच होना चाहिए। लगातार बच्चे को ब्लेम करने से उसके मन में अपने पेरेंट्स के लिए एक नेगेटिव इमेज बनती है। कई बार जब पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ समझाना चाहते हैं तो वो वास्तव में उन्हें एक लंबा लेक्चर देते हैं जिसमें कई बातों को एक साथ शामिल करते हैं। आप यकीनन बच्चों को कुछ ऐसा समझाना चाह रहे हो, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि बच्चा अभी इतना मैच्योर नहीं है, वह आपकी गहराई समझ नहीं पा सकता है। इसीलिए आपको घुमा फिरा के बात करने से बचना चाहिए। बेहतर होगा कि आप उससे एक बारे में एक ही विषय पर बात करें। अगर आप इसे सीधे तौर पर अपनी बात नहीं समझा सकते हैं तो ऐसे में आप उसे एक कहानी के जरिए अपनी बात सिखा सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा कम्युनिकेशन मिस्टेक है जिसे हर पेरेंट को बचना चाहिए। स्पष्ट वशिष्ठ रहे और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करें। दयालु भाषा का प्रयोग आपके बच्चों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करने में मदद करता है। याद रखें, बातचीत से आपके नन्हे मुन्ने को सम्मान और प्यार का एहसास होना चाहिए। इसी के साथ ही आज का लम्हे प्रोग्राम यही खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपने आरजे चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।
हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com।

हाय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। मैं हूँ सैम आपके साथ। और जैसा कि कहते हैं ना कि आपके साथ करनी है बहुत सारी बात। फिलहाल अभी प्रोग्राम है आपके लिए अल्फा जैन, और अल्फा जैन में आज हम क्विज़, रेनबो क्विज़ लेकर आए हैं आपके लिए। और क्या कुछ है आज रेनबो क्विज़ में, वो बातें आपसे होंगी। खूबसूरत गानों का सिलसिला भी चलता रहेगा, आपके फ़ोन्स का रहेगा बड़ी शिद्दत से इंतज़ार। और क्या कुछ है ख़ास बताएंगे आपको, लेकिन ये प्यारा सा साउंड ट्रैक आपके लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए आकाशवाणी रेनबो पर।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जैन, मैं हूं सैम आपके साथ और यहां पर रेनबो क्विज़। कौन बनेगा आज का विनर? बिल्कुल शिद्दत से इंतज़ार है आपके फ़ोन्स का, लेकिन हमारे साथ अभी एक कॉलर हैं और देखते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार मैडम
0: जी। नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: जी। मैं बढ़िया हूँ।
0: पहले आप हमें थोड़ा सा अपना इंट्रो दीजिए, आप कहाँ से और कौन?
1: जी, मैं उमेश बात कर रहा हूँ,
0: जी
1: हरियाणा से।
0: ओके उमेश, क्या करते हैं आप?
1: मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, हरियाणा पुलिस में एज ए कॉन्स्टेबल जॉब करता हूँ
0: ओके तो आप तैयार हैं क्विज के लिए?
1: जी। कोशिश करता हूँ।
0: जी बिल्कुल। मेरा पहला सवाल कि भारत में कुल कितने राज्य हैं
1: 28 राज्य है
0: और भारत में कितने जो केंद्र शासित राज्य हैं?
1: 8।
0: बिल्कुल ठीक, दोनों सवाल बिल्कुल ठीक। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन रहे?
1: पंडित जवाहरलाल नेहरू।
0: जी बिल्कुल सही जवाब आपका। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
1: क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है और जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश है।
0: बिल्कुल ठीक जवाब। और आज 31 मई है, 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा?
1: विश्व
0: जी
1: तंबाकू निषेध दिवस।
0: क्या बात है, आपने सारे सवाल बिल्कुल सही दिए और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे सभी सवालों के सही जवाब देते हैं। थैंक यू सो
1: एक
0: मच।
1: एक क्वेश्चन तो अभी बाकी है ना मैडम, 4 ही हुए हैं।
0: नहीं, 5 हुए ना?
1: चार ही हुए हैं मेरे हिसाब से तो।
0: आपके हिसाब से 4 नहीं हुए, मेरे हिसाब से तो 5 हुए हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे और कुछ पूछ लूं तो चलिए मुझे ये बता दीजिए कि 1 मार्च से 31 मई तक कौन सी ऋतु मनाई जाती है, कौन सी ऋतु कही जाती है?
1: वर्षा ऋतु,
0: जी
1: सॉरी वो बसंत ऋतु।
0: जी वसंत ऋतु जिसे कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब। अभी भी आपके जवाब बिल्कुल सही हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के सही जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच।
1: जी धन्यवाद।
0: थैंक यू। कहते हैं ना दोस्तों कि जब आप चाहते हैं कुछ करना, कुछ बताना और जो हमारे सवालों के सही जवाब मिलते हैं तो वाकई में खुशी होती है। लगता है कि ऐसा नहीं है कि लोगों को कुछ नहीं पता, बहुत कुछ पता है। और जब विनर्स बनते हैं ना तो वाकई में मज़ा आ जाता है। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी और एक और खूबसूरत सा गाना आपके लिए।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जैन और यहाँ चल रहा है अभी क्विज टाइम। और हमारे साथ देखते हैं कौन से हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमसे बात कर रहे हैं, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। हेलो,
1: हेलो
0: आप कौन?
1: हेलो।
0: हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
1: जी मैम,
0: आप कौन, अपना नाम बताएं।
1: यज्ञ
0: यज्ञ, आपकी एज क्या है?
1: चिकन या जोल
0: 16 years। ओके, कहाँ रहते हैं आप, कहाँ से हैं?
1: सुहाना सुहाना मोहाली पंजाब से।
0: ओके, आप पंजाब से हैं। तो यज्ञ, आप तैयार हैं हमारे सवालों के जवाब देने के लिए?
1: जी मैम, कोशिश करेंगे।
0: चलिए। अच्छा, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है?
1: इंडिया का नेचुरल गेम हॉकी है मैम।
0: वेरी गुड। अच्छा, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं?
1: अच्छा, चक्र में
0: जी
1: मैम जी ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा, दूसरों दूसरे चौथा भी मतलब कि कॉल पे होंगे, नहीं आता मैम।
0: कोई बात नहीं, आपको नहीं आता, आपने हमें कॉल किया और हमें अच्छा लगा आपने ट्राई किया फिलहाल, क्योंकि आप बहुत प्यारे से लगे मुझे, बहुत क्यूट से लगे आप, हमसे जुड़े, हमसे बात की। और चलिए एक सवाल और पूछ लेती हूँ आपसे। मिकी माउस के डॉग का क्या नाम है?
1: प्लूटो।
0: क्या बात है, प्लूटो। देखिए यक, आपने हमारे जो सवाल है ना उनका जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। और आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमसे बात की और आप इतने प्यारे से हैं ना, सीरियसली, तो वैसे ही आप जीनियस हैं, इसमें नो।
1: जी मैम, कभी कभी आंखों के अलावा बुद्धि काम आती है, क्योंकि
0: आपकी बातें भी बहुत प्यारी
1: क्योंकि
0: हैं।
1: मैं ब्लाइंड हूं ना मैम,
0: हाँ?
1: क्योंकि मैं ब्लाइंड हूं ना मैम, तो
0: ओके ओके, बट आप जी
1: पर लोग कहते हैं कि मैं बातें अच्छी करता हूँ, इसलिए मैंने आपको फोन किया।
0: नहीं, वाकई आप बहुत प्यारी बातें करते हैं, आपकी बातें बहुत प्यारी हैं। और देखिए यज्ञ, जब इंसान कोशिश करता है ना तो वो वैसे ही जीनियस होता है, तभी तो कोशिश करता है ना।
1: हाँ जी मैम, इसलिए तो ये रेनबो जीनियस है।
0: जी, इसीलिए ये रेनबो जीनियस है और वाकई आप जीनियस हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमसे बात की और आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू मैम।
0: और आपके लिए एक प्यारा सा साउंड ट्रैक। ओके यक, बाय बाय, टेक केयर, बाय।
1: बाय।

0: सीरियसली कुछ कुछ लोग ना ज़िंदगी में वाकई कमाल होते हैं, बात करके मज़ा आ जाता है। और अभी कुछ देर पहले हमने यज्ञ से बात करी, बहुत अच्छा लगा यज्ञ आपसे बात करके। फिलहाल अगले कॉल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। हेलो,
1: नमस्कार।

0: बिना देरी करे आपसे मेरा ये है कि भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य से निकलता है?
1: अरुणाचल
0: बिल्कुल सही। दूसरा मेरा सवाल आपसे है, आंवले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंवला होता है ना, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं?
1: आमला को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
0: जी
1: आमला को तो आमला को हिंदी और ये बोलते हैं। हेलो,
0: जी क्या कहते हैं?
1: इंग्लिश में आमला को क्या बोलते हैं? आमला ही बोलते हैं मैडम।
0: इंग्लिश में आंवले को इंडियन गूसबेरी कहते हैं। जी, और जी अगला सवाल और पूछ लेती हूँ आपसे।
1: पूछ लीजिए।
0: इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है?
1: NH 44 है मैडम।
0: जी बिल्कुल सही। ये कहाँ से कहाँ तक है?
1: ये कहाँ से कहाँ? कन्याकुमारी तक है मैडम।
0: कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक है?
1: ये जो है चंडीगढ़ से या दिल्ली से स्टार्टिंग होता है
0: जी, ये श्रीनगर से स्टार्ट होता है और
1: और
0: कन्याकुमारी तक
1: श्रीनगर से
0: फैला है।
1: कन्याकुमारी तक। जी मैडम।
0: जी, फिलहाल आपने हमें जवाब दिए, कोशिश करी, हमारे साथ जुड़े और हमारे क्विज में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ठीक है मैडम, धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो
1: थैंक
0: मच,
1: यू
0: बाय
1: थैंक
0: बाय।
1: यू।

0: एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर है सैम आपके साथ, और यहाँ प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना एल्फा चैन। और हमारे साथ यहाँ पर आज क्विज के जो सही जवाब देने के लिए तैयार हैं कौन कौन है, ये तो हमारे लिसनर्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन अपनी अगले लिसनर की बात करें तो चलते हैं और देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: जी, कौन आपका नाम बताएं?
1: गुड इवनिंग मैम। मैं जिया,
0: जी, गुड
1: दिल्ली से।
0: इवनिंग।
1: यस
0: क्या
1: मैम।
0: करती हैं?
1: मैम अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ।
0: ग्रेजुएशन कर रही हैं।
1: यस
0: ओके, कहाँ से हैं आप?
1: दिल्ली से।
0: दिल्ली से। ओके, बिना देर किए चलिए आपसे जो मेरे सवाल है ना वो पूछ लेते हैं, ठीक है?
1: यस मैम। गंगा
0: भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
1: नदी।
0: वेरी गुड। दूसरा हमारा जो सवाल रहेगा वो ये कि IIFA का फुल फॉर्म क्या है?
1: मैम सॉरी, आप थोड़ी आवाज समा रही है। आई
0: IIFA का फुल फॉर्म क्या है? आईफा का फुल फॉर्म क्या है?
1: मैम नहीं पता।
0: कोई बात नहीं, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स।
1: ओके मैम।
0: अगला मेरा सवाल आपसे है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा?
1: रविंद्रनाथ टैगोर।
0: बिल्कुल सही जवाब। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमसे बात की और हमारे इस क्विज का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच मैम, मुझे भी
0: थैंक
1: अच्छा
0: यू।
1: लगा। थैंक
0: जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।
1: यू मैम।
0: बाय बाय, टेक केयर। आपके जो सवाल जो मेरे सवाल हैं उसके जो जवाब आप हमें दे रहे हैं ना वो वाकई में कहते हैं ना इस प्रोग्राम को करने में मज़ा बहुत आता है। आपके प्यारे प्यारे से जब आप बातें करते हैं ना और जो सवालों के जवाब आप देते हैं सीरियसली, और जब कोई विनर बनता है ना तो कहना ही क्या उस वक्त में। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी, प्रोग्राम का सिलसिला लगातार चलता रहेगा और खूबसूरत गानों का सफर भी लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा, दिल से दिल तक।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जान, मैं हुसैम आपके साथ। और वक्त की कमी भी है हमारे पास, कोशिश यही है कि जितने भी कॉल्स हम ले सकें और हमारी क्विज़ में जो दोस्त हैं वो शामिल हो सकें। फ़िलहाल बिना देरी करे देखते हैं कौन है हमारे साथ और कहाँ से हैं। हेलो
1: हेलो, मैं गुड आफ्टरनून।
0: जी
1: पहले
0: कैसे हैं?
1: मैं केशव चक्रवर्ती त्रिपुरा से।
0: जी जी केशव, क्या करते हैं आप?
1: मैं तो थोड़ा ट्यूशन कर रहा है, आई एम ए प्राइवेट ट्यूटर।
0: ओके, तो आई होप आप ट्यूशन्स लेते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, तो काफ़ी सारी शायद सही जवाब हमें मिल जाए। फिलहाल बिना देरी करे आपसे जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि भारत में गन्ने का सबसे ज़्यादा पैदावार जो उत्पाद है वो कौन से प्रदेश में होता है?
1: सबसे ऊंची बात
0: जी
1: मैडम,
0: जी जी जी
1: ये तो भाकरनांगल बात पंजाब से।
0: मैं आपसे एक बार फिर सवाल पूछ रहा हूँ।
1: सबसे लॉन्गेस्ट तो डैम है या हीराकुद बात इन उड़ीसा में।
0: मैंने आपसे एक सवाल पूछा, मेरा सवाल ये है आपसे कि भारत में जो गन्ने होते हैं ना, गन्ने, मीठे गन्ने, उनका सबसे ज्यादा पैदावार यानी कि उनकी सबसे ज्यादा उत्पाद कौन से प्रदेश में की जाती है?
1: हाँ, ये जमशेदपुर झारखंड।
0: नहीं, ये जो पैदावार है ये यूपी के उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है गन्ने की।
1: ठीक है मैडम, थैंक यू।
0: जी फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन जाते जाते आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि फिल्म सितारे जमीन पर में किस एक्टर ने मेल लीड रोल प्ले किया था?
1: ओह मैडम, इट इज आउट ऑफ माय नॉलेज, दिस आई सो वेरी फ्यू थिंग्स। ओके,
0: थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।
0: कहते हैं ना दोस्तों, कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे किसी चीज के लिए, किसी चीज का जवाब देने के लिए, तब तक कैसे पता चलेगा। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी और एक और प्यारा सा साउंड ट्रैक आपके लिए।
2: You already know, baby. सोनू टुकराल।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेब आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बालार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण

0: खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती है।
0: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुँचाना है। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन में जनरल सुब्रमणि को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे पैट हैरिगन के साथ बातचीत की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस बातचीत ने भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा सहयोग विस्तार और हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैनिक कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के लॉन्गव्यू शहर में पिछले मंगलवार को एक रासायनिक टैंक में विस्फोट से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। अभी तक 9 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों के मरने की आशंका है। इनमें छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुराह उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर हुई, जब एक कार खाई में गिर गई। दुर्घटना के बाद से वाहन में सवार सभी लोग लापता हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी दिल्ली के चैनल रेनबो पर। और आज प्रोग्राम सिटी लाइट्स लेकर मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त विनीता बेदी। दिल्ली हमारी, शहर हमारा, मुस्कुराहटें हमारी, इसका मौसम भी हमारा, और फिर घूम फिर के बात वही कि झिलमिलाती रोशनी और मुस्कुराते चेहरों वाले शहर दिल्ली में स्वागत आप सभी का प्रोग्राम सिटी लाइट्स में। मैं हूं विनीता बेदी।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स में दिल्ली की धड़कनों से सीधा संवाद विनीता बेदी के साथ। दोस्तों, दिल्ली आज फिर कई महत्वपूर्ण मुद्दों के बीच खड़ी है। कहीं भीषण गर्मी से राहत की खबरें हैं तो कहीं पानी और बिजली की चुनौतियां, शिक्षा, पर्यावरण और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो सीधे आपके जीवन को प्रभावित करती हैं ना हमें भी करती हैं। तो आपसे अनुरोध, जुड़े रहिए, बने रहिए आकाशवाणी रेनबो पर सिटी लाइट्स प्रोग्राम के साथ, क्योंकि इन सभी मुद्दों को हम जरूर से जरूर एड्रेस करेंगे। दिल लगाओ है ना, दिल से दिल तक जुड़े।

नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी एट 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। '80 में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रामचरितमानस की रिकॉर्डिंग आरंभ की गई। ये परियोजना भोपाल केंद्र के तत्कालीन स्टेशन डायरेक्टर समर बहादुर सिंह के कुशल मार्गदर्शन में शुरू की गई थी। गोस्वामी तुलसीदास के इस महान महाकाव्य के सातों कांडों को रिकॉर्ड करने के लिए 14 लोक कलाकारों की एक विशेष टीम बनाई गई, जिसमें बृजभूषण बसु, सुरेखा केलकर, जयश्री थत्ते और रामकिशन चंदेसरी जैसे नाम शामिल थे। रिकॉर्डिंग की ये लंबी प्रक्रिया 1980 से 1992 तक चली, जिसके परिणाम स्वरूप 62 घंटे से अधिक समय का एक विशाल और सुरीला संकलन तैयार हुआ। अपनी प्रामाणिकता और मधुर प्रस्तुति के कारण ये संस्करण हिंदी भाषी क्षेत्रों में बेहद लोकप्रिय हुआ और इसे आकाशवाणी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे डिजिटल सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में जारी किया गया। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा के बारे में और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एट 90 में। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

जय दोस्तों, आकाशवाणी रेनबो पर पुनः स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम सिटी लाइट्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त विनीता। दोस्तों, दिल्ली वासियों के लिए एक सप्ताह की सबसे बड़ी खबर रही मौसम में अचानक बदलाव। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली भीषण गर्मी का सामना कर रही थी, बल्कि दिल्ली क्यों, पूरा उत्तर भारत गर्मी में झुलस रहा था। तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया था, लेकिन शनिवार शाम तेज आंधी और बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी है। वैसे आपको पता है, आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं, बिजली चमकने और गरज के साथ बारिश का अलर्ट अभी भी जारी किया है। दिल्ली के कई नागरिकों के मोबाइल पर एक्सट्रीमली सीवियर अलर्ट भी प्राप्त हुआ है, जिसने लोगों को मौसम की गंभीरता के प्रति सचेत किया है। एंड आई पर्सनली फील कि ये जो मोबाइल पर मैसेज आने शुरू हो गए हैं ना, ये बड़ा सकारात्मक कदम है। रीजन बीइंग, बहुत कुछ हमें फ्रॉड मैसेजेस आते रहते हैं ना, जिससे हम काफ़ी परेशान रहते हैं। उन सब की भीड़ में जब ऐसे अलर्ट करने वाले जेन्युइन मैसेज आए तो थोड़ी सी हमें भी राहत मिलती है, वही राहत जो बारिश की चंद बूंदें ही हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट के रूप में आ जाती हैं, राइट।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी

0: गया है बबल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स, मेरे यानी कि विनीता बेरी के साथ। दोस्तों, दिल्ली का पर्यावरण हमेशा ही चर्चा में रहता है। हाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर अभी भी सुरक्षित मानकों से काफी अधिक है। विशेष रूप से फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा चिंता का विषय बनी हुई है। वैसे आपको मैं बताऊं कि इस बीच सरकार ने हरित क्षेत्र बढ़ाने और नए पार्क विकसित करने की योजनाओं की घोषणा भी की है। एक बात कहूं आपसे, हमारे भी तो कुछ सकारात्मक कदम राहत, उम्मीद और सकारात्मक दिल्ली को एक नया रूप दे सकते हैं ना। जैसे एक पेड़ लगाना, प्लास्टिक कम करना या फिर सार्वजनिक परिवहन अपनाना। काम बहुत तरीके से हो सकते हैं, बस एक नियत और एक जज्बा चाहिए। आप में है वो जज्बा? क्योंकि जिसके मन में भी ये एक इच्छा जाग जाएगी, अपने आप ही दिल्ली सुरक्षित हाथों में चली जाएगी। सिटी लाइट्स में आप हैं विनीता बेदी के साथ।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

सिटी लाइट सुन रहे हैं आप विनीता बेदी के साथ और दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भविष्य बदलने वाली खबर है। दिल्ली सरकार ने मेट्रो फेज 5 के तहत राजधानी में 97 किलोमीटर लंबे नए मेट्रो नेटवर्क और 65 नए स्टेशन की योजना की घोषणा की है। दोस्तों, इसके अंतर्गत 7 नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे जिनका उद्देश्य बाहरी और तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देना है। इतना ही नहीं, दक्षिण दिल्ली के संगम विहार, खानपुर, साकेत और बदरपुर जैसे बहुत ज्यादा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में एलिवेटेड कॉरिडोर और अंडरपास निर्माण की योजना पर भी काम शुरू हो चुका है। इज़न्ट इट रियली गुड? सार्वजनिक परिवहन की दिशा में ये एक मुझे लगता है बहुत ही ठोस कदम है। और सार्वजनिक परिवहन से याद आया, आपको याद है ना, कल है मंडे यानी सार्वजनिक परिवहन दिवस। पॉल्यूशन को दूर करने के लिए, एनर्जी और फ्यूल सेव करने के लिए सरकार की बेहतरीन योजना है ना, आप इसमें भी हमारे साथ।

और उसी के साथ अब विनीता बेदी को दीजिए इजाजत आज का सैटेलाइट यही समाप्त करने की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, आकाशवाणी के 90 वर्ष। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें

0: बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति दी है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इस मामले में 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार 13 पीड़ितों को इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से 5 को अस्पताल पहुंचने पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 5 की हालत गंभीर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, गुड इवनिंग। मैसेज मसाला मिक्स लेकर एक बार फिर आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त भगवती। और ये इवनिंग ना गुड है, बहुत गुड है। मई महीने की आखिरी शाम है हमारे साथ ये, और इसलिए नहीं कि मई मंथ की जो है ये लास्ट इवनिंग है, बल्कि इसलिए कि हवाओं में कुछ ठंडक घुली है, मौसम में कुछ तो सुधार हुआ है ना। कल अच्छी सी बारिश हुई और फिर चली एकदम मस्त ठंडी ठंडी हवा, बस मज़ा ही आ गया। हालांकि आज दिन में धूप छा गई, पर हवाओं में जो कुछ ठंडक है वो तो बरकरार है, और मतलब अच्छी लग रही है शाम, जो है सुहानी है ऐसे में। वैसे एक बात है कि हम लोग देखते हैं ये सब ना, कि हम लोग बड़े लोग देखते हैं कि गर्मी है, अब ठंड है, बच्चे तो बस खुश हैं कि गर्मियों की छुट्टियां हैं उनकी। ये चीज़ जो है ना, ये बात जेन एक्स, जी, अल्फ़ा, बीटा, मिलेनियल्स, बूमर्स सब में कॉमन रही है। यहाँ कोई मतलब जनरेशन गैप नहीं है।

नहीं मानते हैं ना तो फिर बताइए, गर्मियों की छुट्टियों का आपका सबसे फेवरेट काम क्या था, क्या करना जो है आपको गर्मी की छुट्टियों में सबसे ज़्यादा भाता था, बताइए हमें। 9868107070 है नंबर, 9868107070 इज़ द नंबर फॉर व्हाट्सएप मैसेजेस। भगवती इंतज़ार कर रही है आपके जवाब का। आपको बताना है कि गर्मियों की छुट्टियों में क्या करना आपको सबसे अच्छा लगता था। यादों की उस गली में जहां हर दोपहर में मस्ती थी, हर शाम में खेल था और हर दिन एक नया रोमांच था, वहां घुमाते हैं, वहां का चक्कर लगाते हैं ज़रा सा और याद करते हैं कि क्या था जो बहुत बहुत अच्छा लगता था गर्मियों की छुट्टियों में करना।

मोहम्मद सरफराज आलम जो कि हर दर्शना बाजार अररिया बिहार से कहते हैं कि गर्मी की छुट्टी का नाम सुनते ही बचपन याद आ जाता है। सुबह सुबह दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना, दोपहर में आम के पेड़ की छांव में बैठकर कच्चे आम और नमक मिर्च का स्वाद लेना और शाम को दादी नानी से कहानियां सुनना सबसे ज़्यादा भाता था। रात में छत पर चारपाई बिछाकर तारों को निहारते हुए सो जाना, वही छुट्टियाँ असली छुट्टियाँ थी, असली खुशी थी। और आज भी उन दिनों की याद जो है चेहरे पर मुस्कान ले आती है। बहुत सारे लोग मैसेज टाइप कर रहे हैं, उसके बाद फिर कुछ दोबारा टाइप करने लग जा रहे हैं। तो मैसेज जो है ना, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो मैसेज जिस ऑर्डर में आते रहते हैं ना, मैं उसी ऑर्डर में उन्हें लेते रहती हूँ। लेकिन अगर आप एक बार कुछ टाइप करते हैं और उसे पढ़े जाने का मतलब कि इंतज़ार नहीं करते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं और फिर से कुछ टाइप कर डालते हैं, तो वो मैसेज आपका आगे खिसक जाता है और उसकी बारी फिर बाद में आती है, फिर आप शिकायत करते हैं। सारा मैनेजर गाज़ियाबाद से कह रहे हैं वेलकम बैक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शो में। नरेंद्र सोनी देवगढ़ पटियाला से कहते हैं गुड इवनिंग शुभ संध्या जी, गुड इवनिंग। कह रहे हैं हमें गर्मियों की छुट्टियों में अपने चाचा की फर्नीचर की दुकान पर जाकर के कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था और वो कहते थे कि इसकी चिड़िया बनाई, इसका इधर से इधर भेज दो, और ऐसे कर जो है बहुत कुछ जो है वो सिखाते रहते थे हमें लकड़ी के काम। तो गर्मी की छुट्टियों में इन्होंने सीखे हैं लकड़ी के काम। बचपन की गर्मियों की छुट्टियों के वो दिन जब न सुबह जल्दी उठने की चिंता होती थी, न स्कूल जाने की, कभी नानी के घर की रौनक, कभी आम के बगीचे, कभी गली क्रिकेट, तो कभी दोस्तों के साथ घंटों तक खेलना। आपका फेवरेट काम क्या था?

बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और प्रवीण चौहान करगांव मध्य प्रदेश से कह रहे हैं, ड्राइंग करना, लूडो, सांप सीढ़ी, व्यापार, सार, साइकिल चलाना, क्रिकेट खेलना, छुपा छुपाई और भी बहुत सारे खेल हैं जो कि इनको पसंद थे गर्मी की छुट्टियों में खेलना, कहना चाह रहे हैं। अनिल शर्मा सहिता बिहार से कह रहे हैं, शुभ संध्या, मई का आखिरी दिन शुभ हो जी, आपके लिए भी बहुत बहुत शुभ हो ये संध्या। बचपन गर्मियों की छुट्टी में जो है पतंगबाजी करते थे और कॉलोनी में होती थी पतंगबाजी, बड़ा खुला मैदान था जिसमें गिल्ली डंडा भी खेला करते थे और कहते हैं कि अब ऐसे खेल जो है बच्चे जो है खेल जो भी हैं डिजिटली खेलते हैं और इस तरह के खुले मैदान में बच्चे खेल खेलते कहाँ हैं अब, कह रहे हैं। कहते हैं जोगिंदर सिंह जम्मू कश्मीर से हैं, कह रहे हैं कि पिकनिक पे जाना जो है सबसे अच्छा लगता था और आनंद आ जाता था उसका और वो चीज़ जो है इन्हें आज भी याद है। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से कह रहे हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। कहते हैं गर्मी की छुट्टी में मुझे जो है सबसे पहले मेरे मामा के घर जाना अच्छा लगता था और गांव के दोस्त के साथ जो है गांव की नदी में नहाने जाना भी बहुत अच्छा लगता था और अपने खेत में से आम के पेड़ जो थे उसमें से आम तोड़कर खाना बहुत पसंद था और शादी ब्याह में जाने पर तो मतलब बहुत ही खुश हो जाता था मन।

यह है आपका अपना आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। प्रोग्राम है मैसेज मसाला मिक्स और मैं हूँ भगवती। जोया मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से कह रही हैं कि आई वॉज डीपली इन लव विद माई बुक्स। कहती हैं कि समर वेकेशंस में पहले दिन से ही जो है मैं अपना हॉलीडे होमवर्क करना शुरू कर देती थी और इंश्योर करती थी कि जो है छुट्टियाँ के साथ जो छुट्टियाँ ख़त्म होने के पहले होमवर्क ज़रूर मेरा पूरा हो जाए। कहती हैं कि मेरी कोई मैटरनल फैमिली नहीं थी तो नानी के यहाँ जाना तो कभी भी लिस्ट में रहा ही नहीं। मैं अपनी सिस्टर और अपनी मम्मा के साथ जो है छुट्टियों में लूडो खेला करती थी। मौला हलवाईयान शेरकोट ज़िला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी कहते हैं कि गर्मियों की छुट्टी में बहुत मज़ा आता था अपनी खाला के यहाँ, नानी बुआ के यहाँ, सब जगह जो है घूमने जाते थे, बहुत मज़ा आता था। कहते हैं कि कहाँ गए वो दिन। आप सभी शेयर कर रहे हैं कि बचपन के छुट्टियों में आप क्या करते थे, कौन सा काम आपको जो है गर्मियों की छुट्टियों में करना जो है बचपन में छुट्टियों में करना पसंद था, और जो अभी जो बच्चे हैं वो भी बता सकते हैं कि वो आजकल क्या कर रहे हैं, क्या करना उन्हें हर साल जो है गर्मियों की छुट्टियों में अच्छा लगता है। हेलो जी, आप कौन बताइए, आप कौन जो पूछ रहे हैं ये। मैं हूँ भगवती, प्रोग्राम है मैसेज मसाला मिक्स। अब आप भी बता दीजिए ना, आप कौन हैं, कहाँ से हैं, बस इतना सा मैसेज टाइप कर दिया आपने कि आप कौन। इन्होंने गर्मियों की छुट्टियों पर जो है कुछ तुकबंदी कर डाली है। मोहम्मद सरफराज आलम जो कि हरदर्शना बाज़ार ज़िला अररिया बिहार से कहते हैं, गर्मियों की छुट्टियां आती थी, खुशियों की सौगातें लाती थी। सुबह सुबह मैदान में जाना, दोस्तों के संग खेल जमाना, पेड़ों की ठंडी ठंडी छाया, आमों ने मन को खूब लुभाया, दादा दादी नानी की मीठी बातें सुनते सुनते करती रातें, नदी किनारे मस्ती करना, हंसना गाना, दौड़ना फिरना, छत पर बिस्तर जब बिछता था तारों से मन बातें करता था। अब भी जब वो पल याद आते बचपन के दिन बहुत भाते, क्या बात है। मोहम्मद सहजाद सूरत गुजरात से कहते हैं कि गर्मी की छुट्टियों में नीचे खेलने में, कहाँ लिख रहे हैं कि कहीं शायद कहीं पर कह रहे हैं कि खेलने जाने में बहुत मज़ा आता था, पानी में लिखा है कि क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा है। अपना मैसेज दोबारा टाइप करके भेजिए ना, हमें पढ़िए अपना मैसेज आप खुद भी एक बार और फिर देखिए क्या है। पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिलू नायक, मधु नायक कह रहे हैं, गर्मी की छुट्टी में अक्सर हमारे चाचा जी हमें हरिद्वार ले जाया करते थे क्योंकि चाचा जी की ससुराल हरिद्वार में थी। हालांकि चाचा जी एवं चाची जी कह रहे हैं कि जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन हर बार गर्मी का मौसम आते ही वो सुहानी यादों का दौर फिर से याद आने पर हमारी आँखों को नम कर जाता है, जाहिर सी बात है। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से कह रहे हैं कि अच्छा, इन्होंने कोई गाने की फरमाइश भेजी है। जी फरमाइश तो हम नहीं ले सकते गाने की अभी। कहते हैं कि सुबह लेट उठना और दोपहर को स्कूल का होमवर्क और शाम को आउटडोर गेम्स खेलना, ये जो है इन्हें खुशी देता था गर्मियों की छुट्टियों में। आज आप हमें बता रहे हैं बचपन की गर्मी की छुट्टियों में आपका सबसे

0: मनोहरलाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से कह रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी में नानी दादी के घर जाना बहुत ही भाता था और नानी दादी का प्यार साथ में तरह तरह के व्यंजन आज भी याद आते हैं। कहते हैं कि वो दिन कितने सुहाने थे। ये कहाँ से लिख रहे हैं अब, अपने जगह का नाम नहीं लिखा है। जिया अचलिया हैं दिल्ली से, कह रही हैं कि गर्मी की छुट्टियों में मुझे इस बात का इंतज़ार रहता है कि हम कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे। तो बताइए कहीं जा रहे हैं आप घूमने इस बार, और जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, शेयर कीजिए हमारे साथ वो भी।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: हिमालय की गोद से लेकर
6: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
5: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
6: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
5: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
6: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
5: तो सुनना ना भूलें
6: रेनबो डेस्टिनेशंस
5: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

एक बार फिर से स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स में. गुड इवनिंग है जी, मैं हूँ भगवती और अगला मैसेज जो मैं लेने जा रही हूँ है भुवनेश का. अशोक विहार दिल्ली से कहते हैं कि ऑन टुडेज टॉपिक आई वुड लाइक टू से दैट माई फेवरेट थिंग्स टू डू इन द समर हॉलीडेज वर वॉचिंग टेलीविजन. कहना चाह रहे हैं कि इन्हें टीवी देखना बहुत पसंद था और कंप्यूटर पर गेम्स खेलना बहुत पसंद है, और अगर इनको चांस मिलता, मौका मिलता, तो ये अपने कज़न्स के साथ भी कज़न्स के पास जाते और उनके साथ भी खेलते थे. ये सब चीज़ें ये बहुत इन्जॉय करते थे गर्मियों की छुट्टियों में करना. कस्बा गुनौर यूपी से फारूक अली खान कहते हैं कि बचपन की बेशुमार यादों को ताज़ा कर दिया. आज के बच्चों के बचपन को देखकर हमारा बचपन का दिन के दिन लगता है कि बहुत ही खूबसूरत थे. हो सकता है उन्हें भी अपने ये दिन बहुत खूबसूरत लगते हों. गर्मी की छुट्टी में हम छुट्टियां मनाने के बजाय और भी जी जान से अपने काम में लग जाते थे. भेरूलाल वागतरिया ढाकर उन्हेल ज़िला उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं ये. नीता अमरावती से कह रही हैं कि मुझे तो गर्मियों की छुट्टियां कब लगती थी और कब मामा के घर जाते ऐसा लगता था कि, मतलब कहना चाह रही हैं गर्मी की छुट्टियां कब आएँ और अब कब हम मामा के घर चले जाएं. चोर पुलिस लुका छुपी और भी बहुत सारे गेम्स थे जो कि हम खेलते थे और बहुत मज़ा आता था. हम लोग 8-10 लोग थे जो कि मिलकर ये सारे गेम्स खेलते थे. शाम को कुएं पे पानी भरने जाते और वहाँ नहाने का मज़ा ही कुछ और था.

0: चकरक चीचाचो चकलोरम गंडो वंडो लकरक टम अक्को टक्को इडिगिडिगिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकिचकचो गिलिगिलिमल सुलुसुलुमल मकनक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलिसिलिसिलिगो बगरदुम चकरदुम चिकिचकचो
1: Shh.

मिसबा शमसी नगीना डिस्ट्रिक्ट बिजनौर यूपी से हैं। कहते हैं गर्मियों की छुट्टियाँ आते ही बचपन के वो दिन याद आ जाते हैं जब हम नानी के घर जाते थे, जाने का जो है बेसब्री से इंतज़ार करते थे, दोस्तों के साथ खेलना, ढेर सारे आम खाना और दोपहर में धूप से छुपकर मज़े करना सबसे अच्छा लगता था। आज भी ये जो छुट्टियां हैं हमें बिजी लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेने और अपनों के साथ सुकून से वक्त बिताने का मौका देती हैं, बिल्कुल देती हैं। गर्मी की छुट्टियों में अक्सर हम कॉमिक्स, नॉवल, तरह तरह की बुक्स, कहानियाँ जो है वो किराए पर लेकर पढ़ते थे। लोटपोट, नंदन, चंपक, चाचा चौधरी, ऐसी कॉमिक्स बार बार लाकर पढ़ते थे और अपने चाचा जी से, बड़े भैया से पैसे लेते थे और वो कहते थे बेकार में पैसे खर्च करते हो, लेकिन वो भी ना छुप छुप के इन बुक्स का आनंद उठाते थे। कहते हैं नमस्कार जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, मनोहरलाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाज़ियाबाद से हैं ये। और ये मैसेज

कहते हैं नवलू वर्ग फ्रॉम मलबार गोवा से, कहते हैं समर ब्रेक में मैं मेरी मौसी और मामा के यहाँ जाया करता था। और वहां जाकर क्या करना आपको अच्छा लगता था वो भी बताइए हमें। आपके प्यारे प्यारे से मैसेजेस मिल रहे हैं हमें और हम फिर से जी रहे हैं बचपन की उन सुनहरी छुट्टियों को। यादों का स्वाद मुस्कानों के साथ है ना।

गंजनवारा से शमशुल कंवर राही कहते हैं कि गर्मी की छुट्टियों में हम अपनी नानी के यहाँ जाते थे, वहाँ खेतों में घूमते, कभी मूंगफली खोल खोल कर होले बनाते। मुझे नहीं समझ में आया क्या होता है ये, समझाइएगा ज़रूर। थोड़ी नॉलेज भी तो बढ़े ना। और कहते हैं कभी बाग में आम तोड़ते तो कभी पेड़ से कूदते तो कभी तितलियों के पीछे दौड़ते, बहुत मस्ती करते थे। खेतों की हरियाली और ठंडी ठंडी हवा जिसमें शामिल जंगली फूलों की महक मन मोह लेती थी। काश वो लम्हे फिर से जी सकते, ये काश तो सबके मन में होगा। कस्बा गुनौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा कहते हैं कि हमारे यहाँ 30 मिनट से तेज बारिश हुई, गर्मी से काफ़ी राहत मिली है और अब हम आकाशवाणी रेनबो के जो है शो सुन रहे हैं, मैसेज में वाला मिक्स सुन रहे हैं। जानकर कितना अच्छा लग रहा है ना, आपके यहाँ बारिश हुई, मतलब जहाँ भी बारिश हो रही है सुनकर अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ से जो हवाओं में जो चलकर आएंगी ना हवाएं यहाँ तक, वो ठंडक हम तक भी तो पहुँचेगी ना, भले ही हमारे यहाँ बारिश हो ना हो। सुनीता शर्मा शालीमार बाग से कहती हैं कि गर्मी की छुट्टी में हम सब दोस्त बहुत से गेम्स खेलते थे और सबसे पहले अपना छुट्टियों का जो होमवर्क होता था उससे पूरा कर लेते थे। राजकुमार के संतानी अंकोला महाराष्ट्र से कह रहे हैं, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, आप कैसी हैं जी? मैं बहुत अच्छी हूँ जी। कह रहे हैं कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, बातचीत अच्छी लग रही है इन्हें जो है, लेकिन जो हमने सवाल पूछा है क्या वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, उसका भी तो जवाब भेजिए ना हमें जल्दी से। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर आप सभी को ढेरों सारी जो है बधाइयाँ, शुभकामनाएं जी। आपको भी बहुत बहुत बधाई। कहते मैं बचपन से सुन रहा हूँ, दिल को बहुत सुकून मिलता है। सुनील कुमार है नोएडा यूपी से, थैंक यू जी। ये कह रहे हैं कौन है, कहाँ से हैं, राजेश भल्ला कंकड़खेड़ा मेरठ से हैं, कह रहे हैं कि इन्हें गाने पसंद आ रहे हैं, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है और टॉपिक पसंद आ रहा है। टॉपिक जब इतना पसंद आ रहा है तो उस टॉपिक पर भी बताइए, उस टॉपिक पर कुछ तो कहिए। जिनसे हमने पूछा था कि कौन है कहाँ से हैं, वीवा हैं गोवा से, और अभी भी बचपन की कोई बात तो उन्होंने नहीं लिखी, पर एक कटोरे में एक आम हमारे लिए भेजा है, थैंक यू जी। यह आपका अपना आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक प्रोग्राम है मैसेज मसाला मिक्स, और मैं हूं भगवती।

की याद जो है इस बचपन की याद दिला दी मुझे, कहना चाह रही हैं, कह रहे हैं कि छुट्टियों में हम तो अपनी नानी के घर जाते थे, ना कोई उठने की टेंशन, ना किसी काम की टेंशन, ना पढ़ाई की टेंशन। जब लास्ट के कुछ दिन बच जाते थे ना, तो उसमें पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते थे, होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। उससे पहले तो मज़े ही मज़े होते थे, आम खाते थे और नानी के घर घूमते थे, मौसी के घर जाते थे और बड़े मज़े करते थे। और जहाँ नहीं घूमने के लिए बोला जाता, नहीं घूम सकते थे, वहाँ भी खेतों में जाते थे घूमने के लिए, और बड़ी मज़ेदार होती थी हमारी गर्मी की छुट्टियाँ। अच्छा जी रोहित दिल्ली से कह रहे हैं कि बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में मेरा फेवरेट काम था सुबह सुबह क्रिकेट खेलना। जब तक मम्मी घर बुलाकर डांट ना दे तब तक मैच चलता रहता था। यस रोहित, और हर गली में ना मतलब एक सचिन एक धोनी ज़रूर होता है। समर वेकेशंस और क्रिकेट का कॉम्बो एवरग्रीन्स है। अमन चंडीगढ़ से कह रहे, मेरा फेवरेट काम था वीडियो गेम्स खेलना और मम्मी से छुपकर टीवी देखना। क्या बात है। पूजा इंदौर से, बहुत सारे बच्चे करते होंगे ना, अभी भी करते हैं। पूजा इंदौर से कह रही हैं, हम सब कजिन्स मिलकर अंताक्षरी खेलते थे और हर रात फैमिली कंपटीशन होता था। मतलब फैमिली अंताक्षरी तो ये भी एक बहुत कॉमन सा गेम है, फीचर है, और स्पेशली जब ना लाइट चली जाती है उस टाइम पर जो है ज़्यादातर लोग इसी का सहारा लेते हैं, मतलब गर्मी से बचने के लिए, बोरियत से बचने के लिए। यू आर ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी रेनबो, सो स्टे ट्यून्ड।

हर्षवर्धन मध्य प्रदेश से कह रहे हैं कि इन्होंने जो भी सारा लिखा है उसके बाद जो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, अब हर शब्द के बाद एक फुल स्टॉप एक डॉट क्यों लगाते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था ऐसा करते हैं ना तो मैसेजेस पढ़ने में जो है बहुत थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है, बहुत नहीं तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि कहते हैं कि बचपन की छुट्टियों में हम अपने मामा जी के घर जाते थे, महीने भर की छुट्टियां मारते, खूब दूध मलाई खाते थे। हम उस समय कक्षा 2 में पढ़ते थे और बहुत ही यादगार समय था वो। समय कम रह गया अब हमारे पास, तो जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम मैसेजेस जो भी रह गए हैं उनके ले पाए। करण भोपाल से कहते हैं कि फेवरेट काम था पूरे दिन एसी के सामने बैठना और होमवर्क को लास्ट वीक तक इग्नोर करना। मॉन्टी दिल्ली से कह रहे हैं कि मेरी गर्मियों की छुट्टियों का फेवरेट काम था मम्मी को बोलना कि होमवर्क कर रहा हूँ और अंदर से कॉमिक्स पढ़ना, होमवर्क की नोटबुक तो बस डेकोरेशन के लिए खुलती थी। मॉन्टी, जो आप जैसे बच्चे हैं ना उनकी वजह से ही पेरेंट्स को जो है फ्लाइंग स्क्वाड का जैसा काम करना पड़ता है। नेहा जयपुर से कह रही हैं कि मैं हर समर वेकेशन में सोचती थी कि इस बार साइकिलिंग और स्विमिंग सीखूंगी, छुट्टियां ख़त्म हो जाती थी और मैं सिर्फ आम खाने में एक्सपर्ट बन पाती थी। होता है नेहा, होता है, गोल्स अलग और अचीवमेंट्स अलग हो जाती हैं कई बार। खुद ही आ जाएगी फिर बहार। और अब समय है आपके दोस्त भगवती आपसे ले अनुमति, घंटे भर बाद फिर मुलाकात होगी आपसे, तो तब तक नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि भारत तेजी से

वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति प्रदान की है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गाँव तक पहुँचाना है। विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत मतदाताओं की पहचान कल से ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। और गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की रात मजा, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, गुड इवनिंग। म्यूजिक मस्ती लेकर पूरी मस्ती के साथ आपके साथ है भगवती।

2008 में आई फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर का ये गाना आपने सुना। इसका म्यूजिक कंपोज किया गया था एआर रहमान द्वारा और लिरिसिस्ट गुलजार हैं। आवाजें आप जानते हैं सुखविंदर सिंह, तन्वी शाह, महालक्ष्मी अय्यर और विजय प्रकाश की। और इस सॉन्ग के लिए जो है, इस सॉन्ग को जो है दो अवार्ड्स भी मिले हैं, एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एंड ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट सॉन्ग रिटन फॉर विजुअल मीडिया। एक और बड़ा ही प्यारा सा ट्रैक आपके लिए प्ले कर दिया है यहाँ से, एंजॉय कीजिए इसे पूरी मस्ती के साथ।

2001 की कल्ट क्लासिक दिल चाहता है फिल्म का ये गाना जो कि पिक्चराइज्ड था आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना पर, आपने सुना? आवाजें शंकर महादेवन, शान और केके की, म्यूजिक बाय शंकर एहसान लॉय एंड लिरिक्स बाय जावेद अख्तर साहब। पिछला ट्रैक मैंने प्ले किया था और उसके लिरिक्स थे गुलजार साहब के लिखे हुए और इसके जावेद अख्तर साहब के, बोथ ऑफ देम आर माय फेवरेट्स। आई एम श्योर आप में से भी बहुतों के होंगे। You are tuned into Akashwani Rainbow, so stay tuned. सुन रहे म्यूजिक मस्ती भगवती के साथ और पूरी पूरी मस्ती के साथ।

इज द टाइम टू डिस्को एनर्जेटिक डांस एंथम बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर कल होना होगा। पिक्चराइज किया गया था शाहरुख खान, सैफ अली और प्रीति जिंटा पर, और कोरियोग्राफ किया गया था फराह खान के द्वारा। आवाजें शान के और वसुंधरा दास की, म्यूजिक बाय शंकर एहसान लॉय एंड लिरिक्स वंस अगेन बाय जावेद अख्तर साहब। यह है आपका अपना आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। प्रोग्राम है म्यूजिक मस्ती और मैं हूं भगवती।

एक बार फिर से के और वसुंधरा दास की आवाजें और जावेद अख्तर साहब के बोल। मैं हुना फिल्म का ये ट्रैक है, ये तो आप जानते ही हैं, और म्यूजिक है अनु मलिक साहब। और कहते हैं कि पूरा गाना एक ही शॉट में शूट किया गया। That's amazing.

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती भगवती के साथ। और अब कुछ देर का ही हमारा साथ है, उसके जाने के पहले बता दें आपको कि अब से कुछ समय बाद से 9 बजे से आप सुनेंगे प्रोग्राम आपकी याद आती रही। खुर्शीद आलम रहेंगे आपके साथ इस शो में। 10:05 से आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम संडे रिक्वेस्ट शिवांगी वाशनेही के साथ। और 11:05 से एक बार फिर खुर्शीद आलम आपके साथ होंगे लेकर प्रोग्राम रंगे महफिल। म्यूजिक मस्ती का लास्ट ट्रैक प्ले कर रही हूँ आपके लिए और इस ट्रैक के साथ ही आपसे कहती हूँ शब खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ साहब, आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 एफएम पर। मैं हूँ आपके साथ आपका अपना रेडियो दोस्त खुर्शीद। प्रोग्राम लेकर आ चुका हूँ, प्रोग्राम का नाम है आपकी याद आती रही। और यकीन मानिए हमें भी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी आपकी, और यही वजह है कि बहुत दिन बाद फिर आपसे मुलाकात करने आ गए। और साहब, प्रोग्राम आपकी याद आती रही में जहाँ यादों का सिलसिला शुरू होता है, और आज हम बात करेंगे उस मोहब्बत की, उस प्यार की जो जुदाई में भी दिल से दिल तक पहुंचती है। वो तड़प, वो बेचैनी जब अपना कोई हमसे दूर होता है ना, लेकिन उसकी याद हर सांस में बसी होती है। चलिए आगाज़ करते हैं इस प्रोग्राम का, लेकिन फ़िलहाल ये खूबसूरत गीत आप तक पहुंचाने की कोशिश है। और यकीन ये है कि जो पहला गीत मैं आपको सुना रहा हूँ, प्ले कर रहा हूँ, आपको पसंद आएगा। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल। मैं हूँ आपके साथ आपका अपना रेडियो दोस्त खुर्शीद।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: जिजाबागर रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 एफएम पर। मैं हूं आपके साथ खुर्शीद और प्रोग्राम शुरू हो चुका है आपकी याद आती रही। और साहब अभी आपने जो गाना सुना वो कहें कि उस मोहब्बत की याद दिलाता है जब एक नज़र मिलते ही दिल बेचैन हो जाता है। वो छुपा हुआ सा प्यार जब उसका नाम लिखकर डायरी में छिपाते थे, पर जुदाई का दर्द भी वही सिखाता था। क्या आपका भी कोई ऐसा प्यार है जिसकी याद आज भी दिल को दिल में एक तड़प पैदा कर देती है? बहरहाल अब उस मोहब्बत का एहसास इस गीत में है जो दूर रहकर भी हर पल करीब महसूस होता है। ये अगला गीत वो है जो हम जुबान से नहीं कह पाते हैं लेकिन महसूस जरूर करते हैं।

है। और सही बात तो यह है कि यहाँ हर इंसान की अपनी एक सोच है, अपना नज़रिया है, और हर किसी के पास दूसरों के बारे में कोई ना कोई राय ज़रूर होती है। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहें तो लोग बातें करेंगे, अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तब भी जो है लोग वो बातें करते हैं। और अगर आप अपनी सही राह चुन भी लेते हैं तो यकीन मानिए बातों का सिलसिला और भी ज़्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि ज़िंदगी का एक बड़ा सबक यही है कि हर किसी को खुश करना मुमकिन बिल्कुल नहीं है। और कुछ लोग अपनी कामयाबी से, आपकी कामयाबी से खुश होंगे, पर कुछ आपकी नाकामियों पर चर्चा भी करेंगे और बातें भी करेंगे, और कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिन्हें हर हाल में शिकायत आपसे रहेगी। लेकिन समझदारी इसी में है कि हम लोगों की बातों में उलझने के बजाय अपने काम और अपने सपनों और अपनी खुशियों पर ध्यान दें तो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। बहरहाल ये खूबसूरत गीत आपके लिए बहुत प्यारा सा गीत है।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: जवाब छोड़ने का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया 102.6 FM पर। मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद। प्रोग्राम है आपकी याद आती रही, और साहब कुछ यादें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती बल्कि और ज़्यादा गहरी हो जाती हैं, और कुछ चेहरे, कुछ बातें, कुछ मुलाकातें दिल के किसी कोने में हमेशा के लिए बस जाती हैं। वैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है, लोग बदल जाते हैं, मौसम बदल जाते हैं, लेकिन कुछ एहसास हमेशा ऐसे होते हैं कि जो कभी बदलते ही नहीं। कभी किसी खामोश शाम में, कभी किसी बरसती हुई रात में, तो कभी यूं ही किसी पुराने गीत को सुनकर अचानक किसी की याद दिल के दरवाजे पर दस्तक दे देती है। पर एक पल ऐसा भी लगता है जैसे गुजरा वो वक्त फिर से लौट आया हो। कुछ लोग हमारे साथ नहीं होते, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारी तन्हाइयों की हमसफर बनी होती हैं।

दिल भी कितना अजीब होता है ना, जब ये किसी की किसी खिताब के नियम नहीं मानता, किसी तर्क की भाषा नहीं समझता ये दिल, और इसे बस एक एहसास चाहिए, एक नाम चाहिए, एक ऐसी आवाज़ चाहिए जो इसकी धड़कनों में उतर जाए। और जब दिल किसी का हो जाता है ना, तो फिर दुनिया भी भीड़ में भी वो सिर्फ उसी एक शख्स को तलाशता रहता है। मोहब्बत का रंग भी बड़ा निराला है, कभी ये चेहरे पर मुस्कान बनकर खिलता है, तो कभी किसी की याद बनकर आंखों में ठहर भी जाता है। कभी कभी एक दिल ऐसा भी होता है जो अपनी दीवानगी को छुपा नहीं पाता, उसकी हर बात में, हर ख्वाब में और हर धड़कन में किसी का जिक्र शामिल होता है। वो किसी की एक मुस्कान पर खुश हो जाता है और एक खामोशी पर बेचैन भी हो जाता है। बहरहाल, अब मोहब्बत की इसी मीठी दीवानगी, इसी मासूम तड़प और दिल के खूबसूरत जज्बातों को महसूस करते हैं अगले गीत में, और सुनते हैं प्यारा सा गीत।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: दोस्तों, जिंदगी के सफर में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग बस राहों में मिलकर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारी जिंदगी का हिस्सा

0: जाते हैं।
1: उनकी मौजूदगी से दिन आसान लगने लगते हैं और उनकी बातों से दिल को सुकून मिलने लगता है। हम सफ़र सिर्फ वो नहीं होता जो हमारे साथ चलता है, बल्कि वो होता है जो हमारे सुख, हमारे दुख, हमारी खामोशी और हमारे कहें कि अनकहे जज्बातों को समझ लेता है। कभी कभी एक नज़र, कभी एक मुस्कान और कभी एक छोटी सी बात भी दिल में ऐसी जगह बना लेती है कि फिर सारी दुनिया जो है वो हमें फीकी लगने लगती है। यादों का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है, कुछ दूर होकर भी दिल के करीब रहता है और उनकी यादें दिल के नगर में बिल्कुल चुपचाप बस जाती हैं। जब रात की तन्हाई गहराती है तब कोई कहे, कोई पुराना लम्हा जो है वो दस्तक देता है, तो वो चेहरा, वो आवाज़, वो एहसास दिल की गलियों में फिर से जाग उठते हैं। आकाशवाणी का रेनबो चैनल आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ खुर्शीद। प्रोग्राम चल रहा है, आपकी याद आती रही।

मोहब्बत जब मुकम्मल होती है तो ज़िंदगी को नई रोशनी दे देती है, लेकिन जब वही मोहब्बत बिछड़ जाए तो दिल पर ऐसे निशान छोड़ती है तो जो बरसों तक नहीं मिटते। कुछ दर्द ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिन्हें हम दुनिया से छिपा लेते हैं मगर अपने दिल से बिल्कुल भी छिपा नहीं पाते। और कभी कभी किसी की जुदाई जो है वो सिर्फ एक इंसान का दूर होना नहीं बल्कि हमारे कई ख्वाबों, कई उम्मीदों और कई खूबसूरत लम्हों का हमसे बिछड़ जाना भी होता है। हम मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, अपने काम में खुद को मसरूफ़ रखते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन हमेशा मौजूद रहता है। बहरहाल साहब, इस प्रोग्राम से अब इजाज़त चाहूँगा, लेकिन 11 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी प्रोग्राम रंग महफिल में। फिलहाल इस प्रोग्राम से इजाज़त, लेकिन सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल, क्योंकि ये है आपके साथ 24 घंटे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के साजी वाला शेरिल के बारे में बात की। ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के जारी प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड्स की हाल की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह के दौरान चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा है कि वे अपने सेवा प्रदाता के ऑन मार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार में के गया में पहुंचे थे। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रित में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियान

और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: जो सब आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 FM की लहरों पर। मैं हूं आपके साथ आपका अपना रेडियो दोस्त खुर्शीद। रात का आलम है, सन्नाटा बिखरा है, चांद की चांदनी में कुछ सपने सजे हैं, हर साए में छुपा है एक अनकहा किस्सा, जैसे दिल की गहराई में बसता है कोई ये हिस्सा। अजाब रात अपनी रंगत में डूब चुकी है और वक्त है उस प्रोग्राम का जिसके लिए आपकी धड़कनें बेताब रहती हैं। ये है रंग महफिल। आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 FM की लहरों पर और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: जब जिंदगी जो है वो एक किताब है और हर पन्ने पर लिखा है एक नया रिश्ता। कहते हैं कि कभी दोस्ती का रंग होता है, कभी मोहब्बत का जादू और कभी खामोश वादियों में बिखरी हुई यादें हैं। मोहब्बत का रिश्ता तो वो है जो दिल की हर धड़कन में बसता है, उसकी एक मुस्कान, वो नज़रों का मिलना मानो सारी कायनात थम सी जाए। और साहब जब मोहब्बत होती है और प्यार होता है तो हर गली हर चौराहा उसकी बातें करता है। और आज हम बात करेंगे उन रिश्तों की जो हमें जीने का मकसद देते हैं। तो चलिए इस रात को और ज़्यादा रंगीन बनाते हैं और ख़ूबसूरत गज़ल के साथ।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: और जहाँ आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 FM की लहरों पर, और इस वक्त मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

अभी छोड़ने का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 एफएम पर, मैं हूं आपके साथ खुर्शीद, प्रोग्राम रंगे महफिल। रात की इस खामोशी में जब सितारे चुपके से बातें करते हैं तब दिल में एक तड़प जगती है। वो तड़प आपने किसी खास की, जिसके बिना ये रात अधूरी सी लगती है। और साहब रिश्तों की मिठास तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब दो दिल एक दूसरे के लिए बेकरार हो जाएं। वो चांद जो मेरे आंगन से दिखता है, क्या वो भी तुम्हारी खिड़की से झांकता है? और अगर हाँ तो क्या तुम भी उस चांद में मुझे ढूंढते हो? इस सवाल का जवाब तो आपके दिल में है। और हम तो बस इतना ही कहेंगे कि रिश्ते वही खूबसूरत हैं जो हर रात को एक मुलाकात में बदल दें।

जिगर मुरादाबादी साहब कहते हैं कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। औजार प्यार की राहों में कांटे भी हैं, मगर उन कांटों में भी एक सुकून है। जब दिल में दर्द मिलता है तो हर दर्द हर गम एक गीत बन जाता है। और आज की इस महफिल में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी गज़लें जो सुकून भी दे रही हैं और आपके जज्बातों को भी छेड़ने की कोशिश कर रही हैं। बहरहाल सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

रात का आलम कुछ यूं है जैसे कोई पुरानी किताब खुली हो और हर पन्ने से कोई याद बिखर रही हो। और वो यादें वो ख़जाना है जो कभी पुरानी नहीं होती, कभी किसी की हंसी, कभी किसी की बात और कभी कोई लम्हा जो बस दिल में बसा है। और जब ऐसी यादें गज़लों के साथ जुड़ जाएं तो फिर महफिल हलक बन जाती है।

रंगी मैं फिलिक्स गु शरीय शेफिम क्लियर पर सवार हैं आप और साहब, अब वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन जाते जाते हमेशा की तरह एक अल्तजा आपसे है कि अपना ख्याल रखें, उनका भी ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। खुदा हाफिज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास।

0: इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
0: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के जारी प्रयासों पर भी बात की। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। इस चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि आज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा कर लगातार दूसरा IPL खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 2 ओवर शेष रहते मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बिल्कुल, बाहर भी जाग चुकी है और हम भी जाग चुके हैं, इसलिए नहीं क्योंकि ये रात है, बल्कि रात तो सोने के लिए है, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर, दिल्ली में ही नहीं, एनसीआर में भी, जो हैं अपने काम में लगे हुए हैं। किसी ने अभी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी इंजॉय की होगी कुछ देर पहले, कोई साइकिलिंग करके आया होगा। बहुत लोग हैं जो हमारा साथ बनते हैं, हमारे संगी बनते हैं इस पहर में, जब 31 मई को छोड़कर अब 1 जून दे चुका है दस्तक हम सभी की ज़िंदगी में, हमारे कैलेंडर्स पे और हमारे रूटीन, हमारे शेड्यूल पे भी। अब आने वाले जो दिन हैं लगभग 30 दिन, उनका पूरा खाका भी हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग तो मुकम्मल कर भी चुके होंगे कि भाई अब फर्स्ट के बाद क्या करना है, सेकंड के बाद क्या करना है, किसी का अपना बिजनेस है तो किस तरह से उसे रोटेट करना है चीज़ों को। तो ये बहुत सारे जमावड़े हैं, बहुत सारी घटनाओं और किस्से कहानियों के गहवारे हैं जिन्हें हम अक्सर अपने ख्यालों में बुनते हैं, और ऐसा करने में उन जो स्ट्रेस आपको घेर सकती है उससे बचाव करने का मौका देते हैं हम आपको अपने साथ जोड़कर। इसीलिए हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो साथी हैं पूरी दुनिया में जहाँ पर भी हैं, हिंदी बेल्ट के लोग हैं, वो हमेशा हमारे असली साथी होते हैं और हम उनका दोस्त, उनका हमकदम बनने की भरसक कोशिश करते हैं। जैसे कि अब प्रोग्राम है ज़ीरो आवर शो, क्योंकि कैलेंडर बदल चुका है, टाइमिंग्स बदल चुके हैं, अब ज़ीरो आवर के साथ साथ लगभग 14 सेकेंड भी हो चुके हैं, तो वक्त हो चला है ज़ीरो आवर शो का। और इसकी पहल भी हम कर चुके हैं, इसका आगाज़ भी हम कर चुके हैं, शुरुआत हो चुकी है पूरी तरह से प्रोग्राम की, फिल्म हीरो से अभी आपने लता जी को सुना। इसके बाद भी बहुत खूबसूरत गाने हम लाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि अगर आप रात भर जागने वाले हैं तो इस रात को रंगीन करने में, इसे और हसीन और सुरमई करने में हम आपकी मदद करें, हम आपके सच्चे दोस्त साबित हों। तो स्वागत आप सभी का, और कुछ कहना चाहते हैं तो भी कह सकते हैं 9868107070 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। मैं हूं आपका दोस्त रजत, प्रोग्राम है जीरो आवर शो, आप सभी का तहे दिल स्वागत एक बार फिर से।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है,
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
10: आकाशवाणी @90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: रे गा मा, तुम भी गाओ।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वला शेरिल के बारे में बात की। ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कॉम्पिटिशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने

0: अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए, मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के जारी प्रयासों पर भी बात की। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UPT 4, शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। इस चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि आज है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्म संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी मधुर गायकी के लिए जानी जाती हैं। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार और तुमने पुकारा और हम चले आए शामिल हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा IPL खिताब जीत लिया है। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जी हाँ, हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में हम आपको समय बताए देते हैं, रात्रि का 1:06:19। और लीजिए, ये समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम सुहानी रात का। तो अब इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी साथी अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यारा सा नमस्कार। नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा से ये खूबसूरत से गीत। आनंद लीजिए इन गीतों का।
1: वो हैं सावन है, सुहानी

नाम है, वो है सावन है, सुहानी शाम है, अब भला इनकार का क्या काम है।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
8: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

करो दिल तोड़ तोड़ तोड़ मजा लूटा ना करो वो जाने जाना ये तो है रुसवाई प्यार की इन बातों से बढ़ जाएगी महंगाई प्यार की ढूंढे नहीं पाओगी तुम बाजार में आशिक दौड़ेंगे 50-60 की रफ्तार में आशिक फिर नाम लेके प्यार का तुम

जाग उठेगी। हो जाए ऐसा हाल तो कर लेना मुझको याद, सर के बल चल कर आऊंगा सुनकर तेरी फरियाद। दिल से मेरे खेले हो अब तुम सर से भी खेलो, ये दिल जिगर गुर्दा तुम्हारा है तुम ही ले लो। उस्ताद हूँ मजनू का मैं फरहाद का चेला, हर हाल में हारेगा जो दिल से मेरे खेला।

तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना। वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क ना जाने, दिलदार को और यार को बिल्कुल ना पहचाने। मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़ निज़ालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

श्रोता आनंद ले रहे थे इन खूबसूरत से गीतों का कार्यक्रम था ये जीरो आज, माफ कीजिएगा सुहानी रात। साथियों स्टूडियो की घड़ी में रात्रि का 2 बजने जा रहा है, कुछ ही पलों में अब आप समाचार सुनेंगे। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वाला शेरिल के बारे में बात की। ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देवमीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के जारी प्रयासों पर भी बात की। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन के साथ बातचीत करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों

विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीटों पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। इस चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि आज है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्म संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी मधुर गायकी के लिए जानी जाती हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 2 ओवर शेष रहते मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, तहे दिल स्वागत आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके अलावा आप जुड़े हैं हमारे साथ हमारी ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर भी। करना ये है कि इस ऐप को ढूंढ निकालना है प्ले स्टोर से, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, और इस पे सर्च करना है आकाशवाणी रेनबो दिल्ली और जुड़ जाना है हमसे फ़ौरन से पेश तर। जहाँ तक भी आप सुन सकते हैं हमें, आप सुन रहे हैं, और लगभग पूरी दुनिया में इस वक्त हमारी ऐप के ज़रिए हमारे श्रोता हैं। काफ़ी जगहों से हमारे मैसेजेस नियमित रूप से मिल भी रहे हैं, और अच्छा लगता है जब दूर दूर से हमारे श्रोता हमारे साथी हमारे साथ स्नेह मोहब्बत प्रेम बनाए रखते हैं। इसी प्यार, इसी दुलार की खातिर, इसी मोहब्बत की खातिर हमारा पूरा जुड़ाव है आपके साथ, अपने दोस्तों के साथ, आकाशवाणी रेनबो के हमारे नियमित श्रोताओं के साथ, जो बहुत अरसे से, काफ़ी अरसे से इस चैनल से जुड़े हैं, हमारे हर एक शो से, हमारे एक हर एक प्रोग्राम से उनकी वाकफियत है, और वो चाहते हैं कि आकाशवाणी रेनबो का जो जुड़ाव है उनके जीवन से हमेशा जुड़ा रहे, और हम भी यही चाहते हैं। हमें अपने श्रोताओं की कमी कभी भी ना खले, और वो हमेशा हमारे साथ रहें, हर शो में हमारे साथ रहें, उनकी बातें हम तक पहुँचे हैं, उनके मन की जो इच्छा है वो हम तक पहुँचे, मन की बात जो आप कहीं ना कर पाएँ वो हमसे कर सकें, वो गाने जो आप कभी सुनते थे लेकिन आज कम कमोबेश सुनाई देते हैं वो आप हमारे ज़रिए सुन सकें।

0: ये हमारी कोशिश रहती है और इसी कोशिश को और नायाब किए हुए है हमारा ये चैनल, हमारा ये प्रोग्राम। और फिलहाल इसी शो की अगर बात करें तो इसका नाम हमने और आपने मिलकर रखा है भुलाए ना बने। तो ऐसी बातें, ऐसे गीत आप तक पहुंचाने का प्रयास हमारा रहेगा जो वाकई अभी तक आपके दिल से, जहन से, दिमाग से, ध्यान से नहीं हटे हैं इतने साल गुजर जाने के बाद भी। और वाकई वो इस कदर आ चुके हैं आपके जहन में, दिल में जगह बना चुके हैं इस कदर कि भुलाए ना बने। भुलाए ना बने में मैं आपके साथ आपका स्वागत करता हूँ, आपका श्रोता, अपने सभी श्रोता मित्रों का। मैं आपका दोस्त रजत, बहुत अभिनंदन, बहुत मोहब्बत मिले आपको, बहुत शुभकामनाएं आने वाले दिन की। और फिलहाल इस प्रोग्राम के साथ आप जुड़ चुके हैं, इस प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल पुरखनूस अभिनंदन, स्वागत, एहतराम।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी

की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
4: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
5: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
7: आज की रात मजा,
6: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
5: म्यूजिक मस्ती।
8: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
9: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
5: म्यूजिक मस्ती।

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। वे निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देवमीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के जारी प्रयासों पर भी बात की। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।

इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पुष्टि की है कि उनकी सेना ने दक्षिणी लबनान में रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ब्यूफोर्ड किले पर कब्जा कर लिया है। इसराइल की सेना ने कहा कि ब्यूफोर्ड रिज और वादी अल सलूकी क्षेत्रों में प्रवेश के बाद इस स्थल पर कब्जा किया गया। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना और हिजबुल्ला की क्षमताओं को कमजोर करना है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लबनान के जहरानी नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्रों को खाली करने को कहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 2 ओवर शेष रहते मैच जीत लिया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, केरल, माही, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है रात्रि के 3:06:15 और ये है समय आपके पसंदीदा कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज़ का। तो लीजिए आनंद लेते हैं इन खूबसूरत से गीतों का।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

मिडनाइट मेलोडीज के अंतर्गत श्रोता सुन रहे थे ये नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में सुबह का 4 बजने जा रहा है। कुछ ही पलों में अब आप समाचार सुनेंगे, बने रहिए हमारे साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे लोकभवन में होगा। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीटों पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। इस चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि आज है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा IPL खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल

चैलेंजर्स बेंगलुरु को 155 रन का लक्ष्य दिया, 156 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने दो ओवर शेष रहते मैच जीत लिया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, केरल, माही, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुबह के 4:16 आप जुड़ चुके हैं प्रोग्राम सारे गामा से हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी आप जुड़े हैं इसी शो को सुनने के लिए। सारे गामा का आज का अंक मैं लेकर उपस्थित हूँ, आपका दोस्त रजत। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आप जुड़े हैं, नए पुराने गीतों का संगम ये प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को आप अक्सर इन मीटर्स पर, इस फ्रीक्वेंसी पर इसी समय सुना करते हैं जब भोर होने में बस कुछ ही लम्हा शेष है। ऐसे नपे तुले गानों को लेकर हम आते हैं जो खूबसूरत हैं, सारे गामा के धुनों से सुसज्जित हैं और नए दिन का आगमन करने में, उसका स्वागत करने में सक्षम है। एक खूबसूरत स्मूथ मेलोडी के साथ हम आगाज़ करते हैं आज के दिन का, जो कि तकरीबन हम 4 घंटे पहले कर चुके हैं, लेकिन सारे गामा में हम नए पुराने कुछ गीतों को ही शुमारी रखते हैं जो आपको पसंद आते हैं और पसंद आएंगे, ऐसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। स्वीकार कीजिए मेरा यानी रजत का नमस्कार, अभिवादन, स्वागतम प्रोग्राम सारे गामा में आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: आए हाय,
1: तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो, अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल। दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा, संपर्क व्यवस्था और द्विपक्षीय सहयोग सहित आपसी संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने भी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति के रूप में श्री लाइन की यह पहली यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति मुंबई भी जाएंगे, जहां वे उद्योग तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वला शेरिल के बारे में बात की। ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं, जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी। श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के जारी प्रयासों पर भी बात की। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 11 बजे लोक भवन में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई को 5 कैबिनेट मंत्रियों की टीम के साथ कार्यभार संभाला था। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद राज्य सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी। ये संख्या 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए निर्धारित संवैधानिक सीमा के भीतर होगी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक चलेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और उचित उपयोग बढ़ाना, मौसम संबंधी चुनौतियों के बीच किसानों को समय पर सलाह देना तथा पंचायत स्तर पर जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लबनान में रणनीतिक महत्व वाले ब्यूफोर्ड किले पर कब्जा कर लिया है। IPL के फाइनल मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा IPL खिताब जीत लिया। गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 2 ओवर शेष रहते मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। समय हो रहा है स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:06:19। और लीजिए श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अलमास रजा का नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन।

0: दिल के तराने, गाने नए पाने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।